नमस्कार, FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज रविवार है, सक संवत 1948 के आश्विन माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 11 अक्टूबर सन 2026। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 8:57 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे आज के शेष और विशेष कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय।

श्रोताओं, आप से कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 9 बजे आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद दोपहर 1 बजे और शाम 6:30 बजे 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। नौ बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा।

0: 9:20 पर, और 9:40 पर आप सुनेंगे जल की गुड़ और तेल। ठीक 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के, और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। साथियों, कार्यक्रम खेतीबाड़ी का समय रहेगा 4:30 पर, और कार्यक्रम युववाणी आप सुन पाएंगे 5:00 और 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बालवाड़ी। जयपुर केंद्र, माफ कीजिएगा, दिल्ली से आप सुनेंगे 6:00 हिंदी में समाचार, और 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, 6:20 का समय रहेगा कार्यक्रम माटी के स्वर का, शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती, प्रायोजक शस्त्रों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। शाम 7:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और 8:00 का समय रहेगा लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। तो साथियों, ये थे हमारे आज के शेष और विशेष कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, 9:00 है प्रस्तुति जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: के विशेष वकीलों का समर्पित दल गठित करने का आग्रह किया। प्रदेश में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 67 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। शारदीय नवरात्र आज से शुरू, 9 दिन तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से बेटियों को समान अधिकार देने का संकल्प लेने की अपील की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कानूनी सेवा संस्थानों से बच्चों के लिए बचाव पक्ष के विशेष वकीलों का समर्पित दल गठित करने का आग्रह किया है। इस दल को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी से लेकर अंतिम आदेश और पुनर्वास तक लगातार काम करना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कल नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। ये कार्यक्रम किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम का दृष्टिकोण दंडात्मक के बजाय सबल बनाने पर होना चाहिए, साथ ही संस्थागत कारावास को अंतिम उपाय के रूप में ही माना जाना चाहिए। प्रदेश में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 67 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में 205 तथा जयपुर पीठ में 408 प्रकरण आपसी राजीनामे

0: की अपेक्षा रखने वाले हर व्यक्ति को राहत, संतोष और विश्वास देना है। उन्होंने विधिक सेवा संस्थाओं और वकीलों से लोक अदालत को औपचारिक आयोजन तक सीमित नहीं रखकर जनसेवा के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में लेने का आह्वान किया। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद 9 और 10 अक्टूबर को कई ट्रेनों को रद्द और कई के समय में बदलाव किया गया था। उन्होंने बताया कि आज नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से बहाल किया गया है।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्र योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है, ताकि हर जिले की कृषि संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप काम किया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कामना की कि ये त्योहार राष्ट्रीय एकता की भावना और देश की प्रगति के संकल्प को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का संचार होने तथा हर परिवार में मंगल और खुशहाली बनी रहने की प्रार्थना की है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रदेश भर के प्रसिद्ध शक्तिपीठों, देवी मंदिरों और घरों में घट स्थापना की जा रही है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। मां शैलपुत्री स्थिर, शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है।

0: प्रदेश के सभी छोटे बड़े देवी मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा और बाड़मेर जिले में वीरात्रा स्थित वांकल माता मंदिर में आज से नवरात्र मेला भर रहा है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी का शारदीय नवरात्र मेला आज से शुरू हो गया है। 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। यहां राजस्थान सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु माता को चुनरी चढ़ाने पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
1: माता के दर्शन के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर परिसर में लांगुरिया गीतों और माता के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। मेले में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 300 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, जबकि 250 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज की अतिरिक्त बसें भी लगाई गई हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल मेले की व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पंडाल बनाए गए हैं, जहां गरबा और डांडिया का आयोजन होगा। इससे पहले कल पितृ अमावस्या पर विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया गया। लोगों ने जरूरतमंदों को दान पुण्य भी किया। नवरात्र में महिलाओं की

0: सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस शक्ति सुरक्षा अभियान चलाएगी। एडीजी लता मनोज कुमार ने बताया कि अभियान के तहत गरबा डांडिया कार्यक्रमों के दौरान और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए प्रमुख आयोजन स्थलों को चिन्हित कर सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था की कार्य योजना तैयार की गई है। इस अभियान के तहत गरबा डांडिया स्थलों पर कालिका पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती, सादे वस्त्रों में निगरानी और डिकॉय ऑपरेशन से मंचलों पर कार्रवाई होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिन बालिकाओं के लिए लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष की थीम बाल विवाह समाप्त करें और बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करें रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों को बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटियां समाज की प्रगति और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। उन्होंने बेटियों के सपनों को पंख देने और उन्हें आगे बढ़ाने के समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लेने की अपील की। इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने और खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लगभग 150 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कानूनी सेवा संस्थानों से बच्चों के लिए बचाव पक्ष के विशेष वकीलों का समर्पित दल गठित करने का आग्रह किया। प्रदेश में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 67 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से बेटियों को समान अधिकार देने का संकल्प लेने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: सुबह के 9:10 में ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

मुनि अगस्त्य के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण, जिनकी श्री राम चरणों में अथोर प्रीति थी। वन में विचरण करते हुए जब उन्होंने अपने आराध्य के आगमन का समाचार सुना तो प्रेम और भक्ति भरे पुलक से उनका शरीर कंटकित हो गया। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे प्रभु के दर्शन पाएंगे। प्रेम में मग्न सुतीक्ष्ण प्रभु का गुणगान करते राह में नाचने गाने लगे। उनके पग आगे पड़ते हैं या पीछे, इसकी भी सुधि नहीं रही। श्री राम एक पेड़ की आड़ लेकर उनकी उन्मत्त दशा देख रहे थे। भक्तों का उद्धार प्रभु की बान है। वे सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हुए। मुनि प्रेमोन्मत्त होकर बीच राह में अचल समाधि सी स्थिति में स्थिर बैठ गए। अपने आराध्य के निकट आ जाने के बाद भी जब उनका ध्यान नहीं टूटा तो प्रभु ने उनके हृदय में अपना राजसी रूप छोड़ चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और उस रूप के अंतर ध्यान होते ही सुतीक्ष्ण को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। वे दंड की भांति श्री राम के चरणों में गिरे ही थे कि प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

साथियों, अभी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। सुबह के 9:20 में अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप आज सुनेंगे चंद्रु आत्मा और हरिओम शरण को। तो आइए सुनते हैं पहले चंद्रु आत्मा को।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल सीपी ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है
1: और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीपी ग्राम्स, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉगिन करें सीपी ग्राम्स।
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, हूँ अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आपने सुना चंद्रु आत्मा और हरिओम शरण को। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:40 में अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जल की, जिसमें हम आपको सुनाएंगे जल की गुड़ तेल।

0: गुड़ ले लो
1: शुद्ध गाने का ताजा तेल।
0: अरे वे, तू चुपचाप रह।
1: मैं क्यों चुपचाप रहूं, मेरी भी दुकान है।
0: अरे काहे की दुकान है, कोई ग्राहक तो आ नहीं रहा।
1: तो मैं क्या करूं, तेल वाला तेल।
0: जब से इस आदमी ने मेरे सामने दुकान खोली है तब से मेरे ग्राहक आने बंद हो गए।
1: अरे मैंने क्या दुकान खोली है, मेरी तो पहले से दुकान थी यहाँ। दुकान तो तूने खोली है बाद में।
0: अरे तो मुझे क्या पता था कि यहाँ दुकान खोलूंगा तो ग्राहक नहीं आएंगे।
1: मुझे भी क्या पता था, जब से तू दुकान खोलेगा तो ग्राहक ही नहीं आएंगे। तेल वाला तेल तेल तेल तेल
0: गुड़ वाला गुड़ गुड़ गुड़ गुड़
2: वो ग्राहक आ रहा, देख
0: अरे
2: ग्राहक है ना।
0: अरे आओ आओ भाई साहब, नमस्कार नमस्कार
3: नमस्कार।
0: गुड़ ले जाओ भाई साहब, मीठा गुड़ गुड़ गुड़ ले जाओ।
3: मैं तो पीपा ले आता हूँ, साल भर चलता है।
1: भाई साहब तेल ले लो, शुद्ध घानी का ताजा तेल।
3: मैं तो बोरी ले आता हूँ, साल भर चलता है।
1: अरे यार, ये मेरे तेल की बोरी कैसे लाता है
0: यार, जैसे गुड़ का पीपा लाता है।
1: अजीब अजीब लोग हैं, अब क्या करें
3: यार।
1: अरे तेल ले लो
0: यार।
1: क्या चुप रहा,
0: कोई नहीं आ रहा, क्या करें, टाइम पास कैसे होगा।
4: जय शिव शंकर।
0: पंडित जी आ गए, पंडित जी।
4: जय जय जय शिव शंकर।
0: पंडित जी राम राम राम राम।
4: जीते रहो भाई, जीते रहो।
0: पंडित जी गुड़ ले जाओ, गुड़ गुड़ बहुत मीठा गुड़ है, गुड़
4: बहुत मीठा है क्या। ला दे तेरे सा।
0: लो पंडित जी लो।
4: वाह बहुत मीठा है, वाह जय जय शंकर जय शिव शंकर।
1: पंडित जी महाराज तेल ले लो ना, शुद्ध घानी का ताजा तेल।
4: शुद्ध घानी का है क्या।
1: शुद्ध घानी का
4: हजरा दिखाए एक दफे।
1: ये लो
4: तुम दे दे। ला भाई ला। अरे वाह, जय शनि देवता जय
1: शनि देवता।
0: अरे क्या हो रहा है,
1: अरे क्या नाटक है, कोई आता है तो पैसे नहीं देता और वैसे कोई आता ही नहीं है।
0: क्या करें यार, एक काम करते हैं, एक काम करना, अपना शेर शायरी करते हैं।
1: शेर शायरी,
0: हाँ।
1: इससे क्या ग्राहकी होगी क्या।
0: अरे क्या पता हो जाए यार,
1: शेर शायरी से ग्राहकी
0: हो जाएगी।
1: तो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे शेर आते हैं।
0: तेरे को आते हैं।
1: हाँ।
4: मिर्चा गालिब
0: है ना, मिर्चा गालिब के।
1: हाँ।

0: सुना आया।
1: हाँ, बहुत जोरदार शेर है, देख स्टार्ट करता हूँ मैं।
0: हाँ सुना।
1: आज की रात,
0: हाँ
1: आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
0: आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
1: अरे ऐसे नहीं यार, बीच में मत बोल। आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
0: कैसे चमक रहे हैं?
1: जैसे कल चमक रहे थे।
0: हैं?
1: है ना, देख जोरदार।
0: हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: है ना,
0: ऐसे शेर तो मेरे को भी आते हैं।
1: आते हैं क्या?
0: हाँ
1: सुना तो है।
0: सुनाओ।
1: हाँ
0: सुन देख।
1: हाँ।
0: तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
1: तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
0: तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
1: क्या?
0: केले ले लो, केले ले लो, केले ले लो।
1: अरे केले बेच रहा है ठेले वाला है, आवाज आई दूर
0: तो
1: से।
0: तन्हाई को चीर दी ना आवाज ने।
1: अरे क्या आवाज चीर दी? इससे बड़ा शेर मेरे पास है।
0: ओ तेरे पास शेर।
1: सुनाओ।
0: देख वो ग्राह करा।
1: कौन था
0: वो ग्राह करा? भाई साहब राम राम।
2: राम राम।
0: गुड़ ले लो भाई साहब, गुड़।
2: गुड़ ले लो गुड़।
0: हाँ
2: कहाँ तक पढ़ा लिखा है?
0: मैं तो आठवीं फेल हूँ भाई साहब।
2: आठवीं फेल हूँ तभी गुड़ बेच रहा है? गुड़ी
0: भाई साहब।
1: भाई साहब तेल ले लो।
2: तेल ले लो, ये देखो उधर गुड़ ले लो, इधर तेल ले लो। तू कहाँ तक पढ़ा लिखा है?
1: मैं आठवीं में तीन बार फेल।
2: आठवीं में तीन बार फेल तभी तेल बेच रहा है? तेली।
0: अरे भाई साहब आप कहाँ तक पढ़ लिए जो बताना जरा।
2: मैं तो बीए पास हूँ।
0: अच्छा बीए पास हूँ। क्या करते हो भाई साहब?
2: मेरी दुकान है, खुद की शॉप है, स्टेशन के सामने है।
0: काहे की है?
2: भीख मांगने की।
0: जी बात भी।
1: अरे क्या है जी, अरे लोग आ रहे हैं यार।
0: तो टाइम ही पास नहीं हो रहा यार,
1: तो क्या करें अब?
0: यार ऐसा करना, एक शेर और सुना यार।
1: एक शेर और सुनाओ। मैं सुनाता हूँ, है ना।
0: मैंने तुझे प्यार किया।
1: वाह
0: ध्यान से सुनना।
1: हाँ सुन रहा हूँ।
0: मैंने तुझे प्यार किया, तेरे बाप ने मुझे पीटा।
1: ओहो
0: मैंने तुझे प्यार किया और तेरे बाप ने मुझे पीटा।
1: हाँ
0: मैंने तुझे प्यार किया, तेरे बाप ने मुझे पीटा।
1: वाह।
0: और साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा।
1: वाह वाह वाह।
0: और तन की शक्ति मन की शक्ति।
1: तेरा गुड़ मीठा,
0: तेरा गुड़ मीठा, मीठा। यार एक शेर और सुनाता
1: हूँ। सुना सुना।
0: मेरे को अभी याद आया।
1: सुना।
0: बहुत बढ़िया शेर है।
1: सुना।
0: सुन कि चश्मा लगाता हूँ।
1: हाँ
0: चश्मा लगाता हूँ तो कोई लड़की देखती नहीं।
1: वाह वाह।
0: चश्मा लगाता हूँ तो कोई लड़की देखती नहीं।
1: हाँ।
0: और चश्मा हटाता हूँ तो दिखती नहीं।
1: तेरे को चश्मा लगाता है तब भी नहीं दिखती, लगाता है तब भी नहीं दिखती।
0: ग्राहक आया, ग्राहक आया, ग्राहक आ गया, ग्राहक आ गया। अब तो मेरा गुड़ बिकेगा ही, बिकेगा भाई, बिकेगा। भाई साहब गुड़ लोगे क्या? गुड़, गुड़ ले लो, गुड़।
3: गुड़। अरे क्यों ले लूं भाई तेरा गुड़?
0: अरे ले लो भाई साहब, गुड़ ले लो।
3: जा पढ़ाई कर, पढ़ाई
0: पढ़ाई। भाई साहब तेल तो ले लो।
3: तेल लो, तेल ले लो। अरे भाई क्यों ले लूं तेरा तेल?
0: तो क्या?
3: अरे जाकर अपनी पढ़ाई कर, पढ़ाई
0: पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। लगता है इसका बेटा फेल हो गया होगा, पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है।
1: अजीब आदमी है
0: यार। एक शेर और सुनाऊं मैं?
1: अरे सुना यार,
0: बहुत जोरदार,
1: बढ़िया शेर
0: है ना। सुनाऊं?
1: हाँ सुना।
0: मैं तेरा चांद तो तू मेरी चकोरी।
1: वाह वाह।
0: मैं तेरा चांद तो तू मेरी चकोरी।
1: मैं तेरा चांद और तू मेरी चकोरी।
0: हाँ,
1: और मैं तेरा समोसा तो तू मेरी कचोरी।
0: वो देखो आ रहा पतला सा ग्राहक, ये तो गुड़ जरूर खाएगा। गुड़ खा के मोटा होगा। आजा आजा आजा आजा आजा। अबे आ रहे हैं? हाँ आ रहा ग्राहक, आ रहा। वो
1: आ रहा
0: तो लेगा ही गुड़। आओ भाई साहब, आओ आजा आजा। क्या चाहिए भाई साहब?
3: नमक दे दो। नमक?
0: नमक?
3: हाँ नमक।
0: नमक तो नहीं है भाई साहब हमारे पास, हमारे तो गुड़ की दुकान है। गुड़ ले जाओ, मीठा गुड़।
3: सब्जी के अंदर गुड़ नहीं डलता, नहीं तो लपटा बन जाता है वो।
0: अच्छा
3: नमक ही डलता है? नमक चाहिए मुझे
0: तो। नमक हमारे यहाँ नहीं मिलता, गुड़ की दुकान है तो।
3: मैं क्या करूँ, मेरे को तो नमक चाहिए ना।
0: अरे तो नमक नहीं है हमारे पास।
3: अरे तो आपने तो बुलाया, आवाज देखे वैसा, इधर आओ इधर आओ।
0: तो हम तो गुड़ बेचते हैं यार, गुड़ के लिए बुलाया।
3: तो गुड़ ही बेचते हो?
0: हाँ।
3: नमक नहीं बेचते?
0: अरे नहीं बेचते यार।
3: अच्छा एक काम करो फिर।
0: हाँ
3: साबुन दे दो। साबुन?
0: साबुन नहीं है यार, खाली गुड़ है मेरी दुकान में। गुड़ गुड़ गुड़।
3: साबुन भी नहीं है?
0: अरे नहीं है यार।
3: चलो दो किलो आटा दो।
0: फिर से कह दिया ना, नहीं है कुछ भी, खाली गुड़ है मेरे पास।
3: एक काम करो आप।
0: क्या है?
3: ताला लगा दो दुकान पे।
0: हाँ क्यों?
3: नमक नहीं, आटा नहीं है, बेसन नहीं है।
0: क्या आदमी है?
3: यहाँ पे कोई है क्या?
0: हाँ मैं हूँ ना। आओ भाई साहब आओ।
3: वो नमक दे दो भाई साहब।
0: नमक? अजी भाई साहब मेरी दुकान में तेल मिलता है।
3: तेल नहीं मिलता है?
0: हाँ तेल मिलता है।
3: कौन सा तेल देते हो आप?
0: वो शुद्ध घाणी का ताजा तेल।
3: ये घाणी क्या होती है?
0: वो होती है ना लकड़ी की, जिसमें कोलू घूमता है, तेल निकलता है फिर।
3: अच्छा तेल निकलता है?
0: हाँ,
3: नमक नहीं आता?
0: नमक नहीं निकलता भाई साहब, तेल ही निकलता है।
3: पर मेरे को तो भाई साहब नमक चाहिए था ना।
0: मेरी दुकान में नहीं है भाई साहब नमक।
3: अच्छा नमक नहीं है तो साबुन दे दो।
0: अरे साबुन नहीं है यार, तेल है दुकान में सिर्फ। लिख रखा तेली।
4: अच्छा अच्छा नहीं मैं तो तेल से थोड़ी नहाऊंगा, मतलब साबुन से नहाता हूँ।
1: तो साबुन से नहाता है तो तेल मिलता है ना दुकान में, साबुन की दुकान में जा भैया यार।
4: अच्छा समझ गया, साबुन नहीं है, लाओ फिर 2 किलो आटा दे दो।
1: क्या दे दू?
4: आटा दे दो।
1: आटा दू?
4: हाँ
1: ये ले आटा।
4: कितने पैसे हुए?
1: अजीब अजीब लोग बाग आते हैं।
0: वही तो यार, परेशान कर दिया यार।
1: अब क्या करें यार,
0: कह रहे हैं गुड़ की दुकान है, नमक दे दो आटा दो, क्या करें यार, ग्राहक करनी पड़ेगी, इसमें तो बोनी भी नहीं हुई।
1: अरे लेकिन अब क्या करें?
0: और यार एक आइडिया है।
1: आइडिया?
0: हाँ।
1: क्या?
0: एक काम करते हैं।
1: हाँ
0: है ना, देख तू ऐसा कर, तू मेरे पास है ना गुड़ खरीदने आ, उसके बाद मैं तेरे पास तेल खरीदने आऊंगा, कम से कम बोनी तो होगी यार।
1: मैं तेरे पास गुड़ खरीदने
0: आऊं? हाँ तू मेरे पास गुड़ खरीदने आ,
1: और फिर तू मेरे पास तेल खरीदने आ।
0: हाँ मैं तेरे पास तेल खरीदने आऊंगा।
1: हाँ यार ये आइडिया ठीक है यार,
0: बिल्कुल ठीक है ना।
1: मैं आता हूँ ना, देख
0: आ जा,
1: मैं आता हूँ।
0: हाँ आ जा।
1: आ जाओ
0: आ जाओ
1: आ जाओ
0: आ जाओ
1: आ जाओ
0: चुप आ जा
1: भाई साहब।
0: हाँ
1: 1 लीटर गुड़ दे दो।
0: हैं? अबे अबे गुड़ किलो में आता है, लीटर में नहीं आता
1: है?
0: लीटर में नहीं आता गुड़?
1: अच्छा किलो में आता है।
0: हाँ किलो में आता है, यूँ बोल 1 किलो गुड़ दे दो।
1: 1 किलो गुड़ दे दो।
0: हाँ
1: मैं दोबारा आता हूँ।
0: हाँ दोबारा। हाँ,
1: दोबारा आ रहा हूँ, है ना।
0: हाँ
1: आ जाओ
0: आ जाओ
1: आ जाओ।
0: अबे आ जा
1: भाई साहब।
0: हाँ
1: 1 किलो गुड़ दे दो। हाँ, बोतल में।
0: हाँ अबे तेरे से कितनी बार कहा पे गुड़ बोतल में आएगा क्या?
1: तो फिर काम
0: है, गुड़ ठोस होता है यार, गुड़ थैली में देते हैं। तू तू यूं बोल 1 किलो गुड़ दे दो केवल, बस बोतल बोतल मत बोल।
1: मेरे को नहीं आता है कुछ।
0: अरे यार तू अजीब आदमी, तू देख मेरी दुकान में बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ कि गुड़ कैसे मांगते हैं।
1: हाँ, मैं तेरी दुकान में।
0: हाँ, तू मेरी दुकान में।
1: हाँ, तू आ,
0: है ना।
1: हाँ,
0: मैं
1: तू आ
0: आ रहा हूँ मैं।
1: हाँ, आ
0: है ना।
1: आ जाओ
0: आ जाओ
1: आ जाओ।
0: हाँ भाई साहब।
1: हाँ
0: 1 किलो गुड़ देना।
1: बोतल लाया है?
0: हैं? हैं?

साथियों, अभी आपने सुनी जल की गुड़ तेल, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गैर फिल्मी गजलें, जिसमें आप सुनेंगे आरजू बानो को।

साथियों, अभी आप सुने गैर फिल्मी गज़लें, जिसमें आपने सुना आरजू बानो को। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की ओर और सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने ज़माने के। श्रोताओं, शुरुआत करते हैं फिल्म शबनम से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की, संगीत उषा खन्ना का है और गीत लिखा है जावेद अनवर ने।

0: CP Grams, Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System.
1: ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल. CP Grams एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है
0: और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है. CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह. आज ही लॉगिन करें CP Grams.
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
5: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नींद हमारी ख्वाब हमारे. संगीत मदन मोहन का और गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म संगम से। संगीत शंकर जयकिशन का और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कालीचरण से। आवाज़ आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी और साथियों की है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म कन्यादान से। संगीत शंकर जयकिशन का और गीत लिखा है नीरज ने।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म जूली से। गीत आनंद बख्शी का और संगीत राजेश रोशन का।

श्रोता हूँ, अभी आपने सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 में अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मीका सिंह और प्रकृति कक्कड़ की आवाज़ में फिल्म मुबारका से। संगीत गौरव और रोशन का है, गीत लिखा है कुमार ने।

0: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
1: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
0: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं करण सैम्बी की आवाज में फिल्म लुका छुपी से। संगीत गोल्ड बॉय का है और गीत लिखा है निर्माण ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए जमाने के। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ब्लैकमेल से। आवाज़ गुरु रंधावा की है, संगीत और गीत गुरु रंधावा का।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुंडे से। आवाज़ विशाल ददलानी, के नीति मोहन और बपी लेरी की है। संगीत सोहेल सेन का और गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुना रहे हैं फिल्म दबंग 2 से। आवाज़ वाजिद और ममता शर्मा की है, संगीत साजिद वाजिद का और गीत लिखा है साजिद वाजिद ने।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डियर जिंदगी से। आवाज़ जसलीन कौर रॉयल और अमित त्रिवेदी की है, संगीत कौशल अमित त्रिवेदी का और गीत लिखा है कौशल मुनीर ने।

कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़, कनिका कपूर की आवाज़ में, फिल्म दिलवाले से।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफ़र यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजे अब हम आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: कुछ श्रोता और बहुत सारे कवि भी शामिल थे और शामिल थे विविध भारती परिवार के सदस्य। आपको बता दें कि विविध भारती के स्टूडियो में आयोजित इस काव्य तरंग में शामिल कवि सुभाष कावरा, देवमणि पांडे, आस्करण अटल और दमयंती दीपा, और इस कवि गोष्ठी का संचालन किया रेडियो सखी ममता सिंह ने। तो चलिए इसके संपादित अंश आपको सुनवाते हैं आज के विविधा कार्यक्रम में।
5: आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज के इस सृजन भारती के आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो गणमान्य कवि पधारे हैं, आपका स्वागत, और जो प्रोफेसर रविंद्र जी आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, आपका स्वागत, और सभी जो दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत। अब कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं। दरअसल आज एक कवि सम्मेलन का आयोजन है इस सृजन भारती के इस आयोजन में। शब्द जब भावों से मिलते हैं तो कविता जन्म लेती है, और जब कविता स्वर पाती है तो वो सीधे दिल में उतर जाती है। कविता महज शब्दों की सजावट नहीं, ये मन के उस कोने की आवाज है जहां भाव चुपचाप चलते रहते हैं। कभी ये प्रेम बनकर मुस्कुराती है, कभी समय के सवाल से रूबरू कराती है, और कभी जीवन की छोटी सी बात में कोई बड़ी सच्चाई कह जाती है। आज की सृजन भारती कुछ ऐसे ही शब्दों, संवेदनाओं और एहसासात के नाम है, जहां शेर व शायरी है, गीत है, गजल है, व्यंग्य, हंसी की फुहार पड़ेगी और भी बहुत कुछ। कहीं कहीं दिल को छू जाने वाली ये खामोशी भी होगी जो सुंदर कविता सुनने के बाद देर तक हमारे भीतर, हमारे दिल में बसी रहती है, उतरती है। दरअसल ये जो कवि हैं, शब्दों से दुनिया रचते हैं और अपनी कविता से हमारे मन में जगह बनाते हैं। तो हम अब शुरुआत करते हैं उन कवित्री से जो गीत भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा। एक प्रतिष्ठित कवित्री के रूप में जानी जाती हैं, एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और अनुवादक भी हैं। उनकी लेखनी कविता से लेकर बाल साहित्य, शोध और राजभाषा तक विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी है। भीड़ तो जिंदा है प्रसिद्ध और चर्चित काव्य संग्रह है, और इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं, और कुमाऊनी भाषा और लोक संस्कृति के संरक्षण में भी उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य और शिक्षण के क्षेत्र में उन्हें बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। इसके अलावा फिल्म खानदानी शफा खान

वाड़े के अंतर्गत बहुत ही शानदार आयोजन है, उसमें मुझे आमंत्रित किया है और मैं मंच में सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ मुंबई जैसे महानगर में और वो भी विविध भारती मुंबई के प्रांगण में परिसर में इतना शानदार आयोजन करना, मुबारकबाद मैं इसके लिए इन सबको देती हूँ, क्योंकि हिंदी जो है वो केवल भाषा नहीं है, वो संस्कृति है, वो हमारा गौरव है, सम्मान है। और आप सभी जानते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में वो प्रेम का एक सेतु है जो कि हम सब की भावनाओं को, हमारे शब्दों को एक साथ बांधता है और पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है वह सेतु। तो हिंदी को हम सब अपने व्यवहार में लाएं, और जो कि जैसा मैं देख रही हूँ आज उसी उपलक्ष में यह आयोजन है, हिंदी को समर्पित है। तो मैं आप सभी को भी मुबारकबाद देती हूँ हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की। और दो माहिया मैं समर्पित करना चाहूंगी, सबसे पहले माँ हिंदी को।

तो ये तो थी हिंदी भाषा को समर्पित दो माइयाँ, और मैं एक दो मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ, उसके बाद मैं अपने गीत पर आऊंगी।

और एक मुक्तक, बहुत धन्यवाद, एक मुक्तक समर्पित करती हूँ इस देश की मिट्टी के नाम। जो हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे भारतवासी हैं, क्या कहते हैं कि कश्मीर

हम हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे यदि हम आंतरिक भेदभाव मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे शांति के साथ, तो उस पर भी एक संदेश मुक्तक के द्वारा मैं देना चाहूंगी कि सब नफरतें भुला दो तुम अमन के वास्ते, सब नफरतें भुला

तुम बचा लो इस वतन के वास्ते। तो एक ये थे कुछ माही और मुक्तक, एक गीत आपकी सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। तुम री चाहों से हमारे मन में हो

0: धन्यवाद, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद।
1: अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, जरा उनका स्वागत करते हैं कुछ उनकी ही पंक्तियों से। महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे बिन हमें ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। भले मिल जाए दौलत शोहरत हमको दुनिया में, भले मिल जाए दौलत और शोहरत हमको दुनिया में, मगर दिल को मोहब्बत की कमी अच्छी नहीं लगती। जरा सी ठेस लगने से छलक पड़ते हैं क्यों आंसू, हमेशा आंख में इतनी नमी अच्छी नहीं लगती। एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, हर सपने को सच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ। ये जो पंक्तियां हैं जाने माने कवि, मंच संचालक और राइटर देवमणि पांडे जी की। देवमणि पांडे जी का हम स्वागत कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, फिल्म पिंजर, हासिल और कहां हो तुम के अलावा कई सीरियल में इन्होंने गीत लिखे। फिल्म पिंजर के गीत चरखा चलाती माँ, जो हम विविध भारती के अनेक प्रोग्राम में बजाते हैं, उसके गीतकार ये हैं। फिल्म पिंजर में तकरीबन 6 गाने या 5 गाने गुलजार साहब ने लिखे हैं, एक गाना इनका है चरखा चलाती माँ। जब आप सुनेंगे तो देवमणि जी को याद करेंगे। इसके अलावा कुछ संग्रह है, दिल की बातें, खुशबू की लकीरें, अपना तो मिले कोई, जो इनकी कामयाबी में शामिल है। उन्होंने सिने गीतकार जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं, जो भारतीय फिल्म जगत के गीतकारों पर आधारित है। ये भी बता दें कि बड़े अच्छे मंच संचालक भी हैं और बड़े अच्छे कवि और गजलकार। तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत। आइए देवमणि जी,
2: आप लोग अनुमति दें तो मैं शुरू करूं। अनुमति देने का मतलब है ममता जी ने गीत के बारे में बताया, 2003 में इस गीत को बेस्ट लिरिक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो गुलजार साहब के सामने अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। तो गीत था कि चरखा चलाती माँ धागा बनाती माँ, बुनती है सपनों की खेसरी, समझ न पाऊं मैं किसको बताऊं मैं, मैया छुड़ाती क्यों देसरी, बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी।

जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो सोचना पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत वहाँ से करते हैं जिसने मुझे शायर बनाया। दो मुक्तक, मुक्तक काव्य की वो बुधा है जिसको सुनाने के बाद कवि और सुनने के बाद श्रोता मुक्त हो जाते हैं। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। जब देखिए उन्हें वो लगते कमाल के हैं। उसी के लिए जिसने मुझे शायर बनाया। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। जब देखिए उन्हें वो लगते कमाल के हैं। हर जन्म दिन पे उनको देते हैं हम बधाई, फिर भी ये कैसे पूछें कितने साल के हैं। तो एक मुक्तक और उनके लिए, तितली गुलाब अब्र का नक्शा बना दिया। तितली गुलाब अब्र का नक्शा बना दिया, इस बेखुदी ने देखिए क्या क्या बना दिया। पूछा किसी ने चांद वो दिखता है किस तरह, कागज पे हमने आपका चेहरा बना दिया। देखिए हमारे यहाँ जो प्रेम की परंपरा है, या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो सबसे उदात्त माना जाता है और सदियों से आप सब जानते हैं। तो चाहे राधे श्याम बोलिए, चाहे राधे कृष्ण बोलिए, राधा जी का नाम पहले आता है। क्यों आता है? चार लाइनों में आप समझेंगे कि किशन की बांसुरी पर रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा। किशन की बांसुरी पे रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा। तो हंसकर कह दिया कान्हा ने, इस जग में हमेशा अब हमारे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। डगर पे प्रेम की चलना तो मुश्किल काम होता है, किसी से डोर जुड़ जाए तो दिल बदनाम होता है। अगर है प्यार सच्चा तो सराहेगी उसे दुनिया, जिसे राधा कोई चाहे वही घनश्याम होता है। तो घनश्याम यानी श्याम घन, काला मेघ। तो काले मेघों के बीच से, यानी काले बादलों के बीच से जब कोहरा चांद दिखाई

0: पढ़ता है तो कैसा लगता है। तो एक दिन मैंने देखा और फिर चार लाइनें इस पे लिखी कि जुड़ गया है मन का धागा जब से नटखट श्याम से, दिल को मेरे मिल गए हैं कुछ नए आयाम से, और बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से। बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से। इतने अच्छे मुक्तक पे ताली बजनी चाहिए। एक गजल के चंद शेर आपके सामने। हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, गुलाबों की महक आने लगी है रात रानी से। हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, गुलाबों की महक आने लगी है रात रानी से। किशन की जिंदगी में राधिका है रुक्मणी भी है, किशन की जिंदगी में राधिका है रुक्मणी भी है, मिली है प्रेम को एक दिव्यता मीरा दीवानी से। मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बजता है, मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बजता है, मिला है जब से एक पैगाम लहरों की रवानी से। मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बजता है, मिला है जब से एक पैगाम लहरों की रवानी से। कभी आंसू कभी सपने कभी कांटे कभी खुशबू, मिला है देखिए क्या क्या बशर को जिंदगानी से। और मुंबई महानगर के निवासियों को ये शेर मैं भेंट कर रहा हूँ कि शहर की इस भीड़ से घबरा के इस दिल ने कहा अब मुझे एक झोपड़ी गंगा किनारे चाहिए, ये बताओ क्या तुम्हें भी चांद तारे चाहिए, या कि दिल के वास्ते दिलकश नजारे चाहिए। एक सीधी सादी गजल है कि हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं। हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं, किसी के साथ कभी इश्क वो नहीं करते, किसी के साथ कभी इश्क वो नहीं करते, किसी के दिल पे हुकूमत जरूर करते हैं, किसी भी हाल में कुछ लोग खुश नहीं रहते, किसी भी हाल में कुछ लोग खुश नहीं रहते, वो हर किसी की शिकायत जरूर करते हैं, जिन्हें पता है बदी क्या अजाब ढाती है वो नेकियों की हिफाजत जरूर करते हैं। एक इंटरनेशनल शेर है, जिन्हें है फिक्र कि दुनिया में अमन हो कायम, वो कुछ नहीं तो इबादत जरूर करते हैं। एक शब्द है निजामत यानी संचालन, किसी का एक भी मिसरा जबानी याद नहीं, पर ऐसे लोग निजामत जरूर करते हैं, हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं महिलाओं का कितना सम्मान करता हूं। तो इस कविता का शीर्षक यह है गृह स्वामिनी, कमर में खोंस कर पल्लू किचन में व्यस्त हो, लेकिन मधुर आवाज में नगमा को ही तुम गुनगुनाती हो।
1: वाह वाह वाह।
0: कमर में खोंस कर पल्लू किचन में व्यस्त हो, लेकिन मधुर आवाज में नगमा को ही तुम गुनगुनाती हो, छलक आए हैं माथे पर पसीने के कई मोती, तुम इससे बेखबर चूल्हे पे कोई डिश पकाती हो। सुबह उठकर थमा देती हो सबको चाय का प्याला, सुबह उठकर थमा देती हो सबको चाय का प्याला, सुहाना लगता है हर पल तुम्हारा घर में यूं होना, सजा कर थाल पूजा का दिखो तुम लक्ष्मी जैसी, जला कर दीप कर देती हो रोशन घर का हर कोना, सुबह से शाम तक घर को तुम ही गुलजार करती हो, बड़ों का मान रखती हो सभी का करती हो तुम आदर, तुम अपने पद से बच्चों से बहुत ही प्यार करती हो। देखिए आखिरी पंक्तियाँ, किचन में रोटी कैसे जलती है, कोई तारीफ करता है तो झट से फूल जाती हो, कोई तारीफ करता है तो झट से फूल जाती हो, तवे पे रख के तुम रोटी पलटना भूल जाती हो, मोहब्बत से लगन से आशियां तुमने सजाया है, यही सच है हमारे घर को घर तुमने बनाया है, यही सच है, यही सच है हमारे घर को घर तुमने बनाया है। हम लोग जो कॉलेज लाइफ में थे तब से लिख रहे हैं, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ 35 साल पहले की बात है। है ना, एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, हर सपने को

0: सच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, और पाल पोस कर बड़ा किया था फिर भी एक दिन बिछड़ गए, पाल पोस कर बड़ा किया था फिर भी एक दिन बिछड़ गए, ख्वाबों को एक बच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, और कांटे से खुद मेरी शोहरत मेरे दिल में चुभती है, कांटे से खुद मेरी शोहरत मेरे दिल में चुभती है, फन को खेल तमाशा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, तन पर तो उजले कपड़े थे पर जो मन के काले थे, उन लोगों को अच्छा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ। बिछड़ने पर दिल रेगिस्तान की तरह जलता है, और जब मिलन होता है तो दिल किसी हिल स्टेशन की तरह ठंडा हो जाता है। शायर इस कंटेंट को कैसे ले आता है गजल में, तो आप ध्यान दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। समझ में आ गया ना कि एक रेगिस्तान है एक हिल स्टेशन है। दिलों की राह में ऐसा कोई मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। दिल्ली के आखिरी बादशाह को सलाम करते हुए शेर पढ़ रहा हूं। सभी को चाहिए दिल्ली का तख्तो ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। ऐतिहासिक शेर है ना, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, आखिरी बादशाह को रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, कि सभी को चाहिए दिल्ली का तख्तो ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, बताने के लिए दुनिया में अफलातून आ जाए। मोहब्बत में कोई बंदिश नहीं है बेवफाई पर, यह लाजिम है कि अब इस पर नया कानून आ जाए। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं तो देहरादून आ जाए। देखिए गजल में
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: वगैरह पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर, राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी धर्मान वगैरह। रोजी रोटी के चक्कर में हमने खुद को गंवा दिया है, कहाँ गया अपना वो तेवर, खुददारी पहचान वगैरह। दूर दूर तक आदर्शों से रिश्ता नहीं सियासत का, जब इनमें कहाँ नजर आएंगे सच्चाई ईमान वगैरह। दौलत शोहरत और प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल है, फिर भी किसे पता क्या ढूंढ रहे हैं ये अमीर धनवान वगैरह। ये बहुत बढ़िया शेर है, आपको अच्छा लगेगा। कि फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, काट रहे हैं हर दिन चांदी अक्षय और सलमान वगैरह। कम से कम इतवार के दिन तो अपने घर पे रहा करो, बिना बताए आ जाते हैं यार दोस्त मेहमान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर, राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जो बड़ी संजीदगी से बोलते हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं माइक पर। उनकी बातें उनके शब्द आपके हृदय में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं छोटी छोटी बातों को अपनी कविता में ढाल लेते हैं, अपने गद्य में ढाल लेते हैं। और आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है, स्ट्रेस दबाव से लोग परेशान हैं, ऐसे में आपको मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ला देते हैं, आपको हंसाते हैं गुदगुदाते हैं, ये बहुत बड़ी दौलत है उनके पास। प्रसिद्ध हास्य कवि लोकप्रिय मंच संचालक धारावाहिक लेखक और प्रतिष्ठित व्यंग्यकार सुभाष काबरा, इसी बात से उनका परिचय मिल जाता है कि उन्होंने मंचों पर अपने सतत 50 वर्षों और 4000 आयोजनों की पारी पूरी कर ली है और अभी भी किसी नौजवान से ज्यादा वो सक्रिय हैं। 6 किताबों के लेखक हैं और बहुत

0: सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता हैं। सुभाष जी आज भी आयोजनों में आयोजकों की पहली पसंद होते हैं, फिर चाहे आयोजन साहित्यिक हो या शुद्ध मनोरंजन वाले, लेकिन वो पहली पसंद होते हैं। सुभाष काबरा जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं बड़े सम्मान के साथ। वो गद्य भी लिखते हैं, पद्य भी लिखते हैं, हंसाते भी हैं और संजीदगी से बहुत प्रहार भी करते हैं समाज पर, व्यवस्था पर, कई बातों पर, जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं पर। आइए सुभाष जी, तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत।
1: जो प्रणाम करने लायक है उन्हें प्रणाम करता हूँ और जो मुझसे छोटे हैं उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया है, मैं मान के चलता हूँ। ममता सिंह बहुत अच्छा बोलती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परिचय मेरा दिया, लेकिन मैं अपने परिचय में चार पंक्तियां अक्सर कहा करता हूँ। हम चहकती महफिलों के दूत हैं, हमसे मनहूसी न झेली जाएगी और बांटती है जो उदासी और तनाव, हमसे वो पारी न खेली जाएगी, हमसे वो पारी। इसका एक मतलब ये भी है कि बजाते रहिएगा, मैं शायर साहब की तरह बार बार फरमाइश नहीं करूंगा कि बजाओ, आपको खुद ही समझना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो नई पीढ़ी है इसे कुछ पंक्तियां देना चाहूंगा कि हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के, हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के, अनपढ़ होते जाते पोथी बांच बांच के, अनपढ़ होते जाते पोथी बांच बांच के, हिंदी की खाने वाले विदेशी गाते हैं, हिंदी की खाने वाले विदेशी गाते हैं, बेटे ये नादान माँ को भूल जाते हैं, कंप्यूटर का युग है आगे बढ़ते जाइए, लेकिन हमको मेमोरी से मत मिटाइए, पिज्जा खाने वाली पीढ़ी पैदा होती है लेकिन मक्के की रोटी है। कुदरत के सब कानूनों को शैदा करना है, लेखक का लिखना तो बच्चा पैदा करना है, जिस बचपन की खातिर मैया पल पल रोती है, क्योंकि मक्के की रोटी है। ये तो नई पीढ़ी की बात थी।
2: आपने व्यंग लेख का जिक्र किया था तो मैं आपको एक छोटा सा व्यंग लेख सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है एक बंगला मिले न्यारा। वो मुझे एक साहित्यिक कार्यक्रम में मिली थी, प्रेमचंद के कार्यक्रम में। मैंने अपना परिचय दिया, उनका नाम पूछा तो बोली आधुनिका। उन्होंने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर फीड कर दिया और मुस्कुराकर चली गई। पर एक दिन दोबारा वो एक सिग्नल पे मिल गई। गाड़ी इतनी बड़ी थी कि मुझे किस्तों में देखनी पड़ी। वो बोली हे घर पर आओ ना, यही फर्स्ट टाइप में है बंगलो नंबर 19। वो चली गई। बंगले मुझे बचपन से ही आकर्षित करते थे, कितनी जगह होती है उनमें। सोचा आज ये अंतिम इच्छा पूरी कर लूं, बंगला देख ही लूं। सो मैं बंगले की ओर बढ़ गया। पहुंचा तो लगा शायद किसी गलत जगह पर आ गया हूं। वो तो किसी कार का शोरूम लग रहा था। झोले से एक किताब निकाली और वॉचमैन को ये कहकर कि मुझे आधुनिका जी से मिलना है भीतर चला गया। डोरबेल बजाई तो एक काम वाली आई। उसने पहले तो मुझे कुरियर वाला समझा, लेकिन मुझे बाद में हॉल में बिठाकर बेबी को बुलाने चली गई। मैं हॉल की भव्यता देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो बाई आई तो उसके साथ दो बच्चे भी थे। बोले इनको संभालो, बेबी अभी आता है। बच्चे मुझे संभला कर वो बाहर चली गई, लेकिन बच्चे बड़े शरारती थे, दोनों मुझसे खेलने लगे। एक ने चश्मा खींचा तो दूसरे ने मोबाइल। मेरा जी जानता था कि वो 10 मिनट मैंने कैसे निकाले। बच्चे बाकायदा मेरी छाती पर सवार थे। तभी एक नौकर आकर उन दोनों को ले गया। मैंने चैन की सांस ली ही थी कि तभी शेर से कुछ छोटा शेरू नाम का एक कुत्ता आ गया। वो मुझ पर झपटना चाह ही रहा था कि आधुनिका की आवाज आई, चलो अपने कमरे में जाओ। शेरू मुझे घूरता हुआ चला गया। आधुनिका बोली ये आपको जानता नहीं है ना, इसलिए जान पहचान होगी तो अच्छे से पेश आएगा। तभी कोई आया। आधुनिका बोली माई हनी। मैं समझा मिस्टर आधुनिक होंगे। वो आए और आधुनिका से गले मिले, मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करके भीतर चले गए। बोली हनी के लिए भी सॉरी, ये थोड़े रिजर्व हैं, आप पर ध्यान नहीं दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे आदत है इस तरह इग्नोर किए जाने की। आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? अब वो मुद्दे की बात पर आई कि प्रेमचंद की पोएट्री वाला प्रोग्राम सुनकर मैं इम्प्रेस हूँ। हमारी सोसाइटी में मिसेज चड्डा ने अपना गजल का बुक छपवाया है, मिसेज शाह ने भी कुछ रिलीजन पे छपवाया है, मुझे भी कुछ छपवाना है, इसमें आप मेरी हेल्प करो। मैंने कहा देखिए मैं गजल और धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। तो बोली जिस पे जानते हो उसी पे लिखेंगे, कौन सी बड़ी बात है, कोशिश करूंगा कि आपके काम आ सकूं। बोले हाँ, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तभी एक रौबदार बुजुर्ग टी शर्ट में आए। ये कौन है बेबी? आधुनिका ने बताया कि मैं राइटर हूँ। तो वो खुश हुए, बोले वेरी गुड, तो तुम्हें राइटर मिल ही गया। बुक जैसी भी हो कवर पेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। वे मुझे धमकी देकर चले गए, मैं जवाब भी नहीं दे सका। आधुनिका बोली मेरे पापा है, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। मैंने कहा वो तो दिख ही रहा है, आपकी किताब की बहुत चिंता है इन्हें, इनकी बात भी

0: की कोशिश करूंगा। वो बोली, बिल्कुल, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे मैंने अंग्रेजी में कुछ लिखा है, ढूंढकर आपको दे दूंगी, आप उसकी एक बुक बना सकते हो। मैंने फिर कहा, मैं कोशिश करूंगा। उसने कहा, मैं दुआ करूंगी कि आप अपनी कोशिश में कामयाब हो और काम मेरा हो जाए। वैसे इंसान को कोशिश कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालने की कोशिश की और बाहर आया। दिमाग इतना घूम रहा था कि रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वॉचमैन से पूछा, भाई ये स्टेशन जाने वाली बस कहाँ मिलेगी? वो बोला, मैं यहीं रहता हूँ साहब, मुझे पता नहीं, आप चौक पर जाकर किसी से पूछ लो, कोशिश करोगे तो कोई ना कोई बता ही देगा। इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये भी आधुनिका जी से प्रभावित ही था। मैंने चौक ढूंढने की कोशिश की, फिर वहां से स्टेशन की बस। एक बात बताऊं आपसे, आप में से यदि किसी की किसी बंगले में जाने की इच्छा हो तो 19 नंबर वाला वो बंगला छोड़कर किसी भी बंगले में जाने की कोशिश जरूर करना। इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये जरूरी तो नहीं कि आपको भी वही भाई, वही बच्चे, वही शेरू, वही मिस्टर आधुनिक और वही पापा जी मिले, और आधुनिका भी वैसे ही मिले जैसी मुझे मिली थी। वैसे भी आधुनिका जी का कहना है कि इंसान को कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप भी चाहें तो मेरी तरह किसी बंगले में घुसने की अपनी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं और कोशिश भी। मैंने तो कसम खा ली साहब कि अब वहां कभी नहीं जाऊंगा।
1: दोस्तों, हम हास्य से व्यंग, जैसा कि बताया ममता जी ने कि व्यंग लेखन के लिए भी जाना जाता हूँ। शरद जोशी जी मेरे आदर्श भी रहे और गुरु भी रहे। अब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि अंतर क्या है, हास्य क्या है, व्यंग क्या है। मैं आपको बहुत सरल सा गणित बताता हूँ कि हास्य वो है कि आपने एक बटन दबाया और आपके घर में बल्ब तुरंत जल गया, हल्का पीला सा लाइट, पीली सी रोशनी के साथ। ये होता है हास्य। अब आपने बटन दबाया दूसरा, कुछ सेकंड लगे, 15, 20, 25, और ट्यूबलाइट जली, लेकिन उसकी रोशनी ज्यादा साफ थी। वो कहीं ना कहीं देर तक और दूर तक असर करती है। तो हास्य और व्यंग में यही फर्क है। ये जो हम कहते हैं कि इधर स्तर गिर गया, मानवता ऐसी हो रही है, लोग वैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ। परमार्थ से स्वार्थ की यात्रा जब आती है तो उसे कलयुग का नाम दिया जाता है। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक व्यंग करना चाहता हूँ। शीर्षक है दूरदर्शी। दूरदर्शी जो आने वाले समय को, आगे की बातों को भांप लेता है। यदि मैं चाहता तो अपनी बेहिसाब दौलत का एक छोटा सा हिस्सा जाया करता और तुम्हें तुम्हारी जानलेवा बीमारी से बचा लेता। ऐसा होता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं। ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है। अलावा इसके तुम्हारा एक संगमरमरी बुत, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। आजकल तुम्हारी बीमारी से प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार। कवि हूँ तो कवियों पर ही एक रचना। शीर्षक है कवि का इलाज, एक छोटी सी रचना। लोग अक्सर अपने आप पर नहीं लिखते, लेकिन हम कवि लोग हैं, आपस में तो जानते हैं कि हम क्या हैं, बाहर से जितनी भी पब्लिसिटी करवा लें। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद बीमार पड़े। उनकी तबीयत देखने के लिए बुलाए गए डॉक्टर बड़े बड़े, और देखकर सभी ने एक स्वर में ये कहा कि इतने वर्षों तक हम सबको बड़ा धोखा रहा, लेकिन अब हमको तलवार की धार पे चलना होगा। जिंदा रखना है तो हरिश्चंद का दिल बदलना होगा। अतिरिक्त दिल की तलाश में फौरन एक आदमी दौड़ाया गया और संयोग से पड़ोस के मोहल्ले में ही एक कवि का दिल स्पेयर में पाया गया। जल्दबाजी में वही हरिश्चंद को लगाया गया। ऑपरेशन के बाद जैसे ही हरिश्चंद को होश आया, वो बेड पर खड़ा हो गया और ग्लूकोज की बोतल को माइक समझकर उसके मुंह में बोला डॉक्टर भाइयों और नर्स बहनों, टेरिकॉट के वस्त्र त्यागो, खादी के कपड़े पहनो। मैं अब ठीक हूँ, इसलिए अपने घर जा रहा हूँ। फिक्र मत करना, अस्पताल का बिल जल्दी ही आकर चुका रहा हूँ। कवि को हरिश्चंद समझकर अस्पताल के लोग धोखा खा गए। कवि जी सही सलामत अस्पताल से बाहर आ गए। पिछले 6 महीनों से अस्पताल के प्रांगण में अजीब से नजारे नजर आ रहे हैं। कवि जी नियमित रूप से अस्पताल आ रहे हैं और पेमेंट के रूप में अस्पताल के पूरे स्टाफ को रोज अपनी नई नई कविताएं सुना रहे हैं, रोज रोज नई सुना रहे हैं। कवि अंतर मन से बड़ा शुद्ध प्राणी होता है। वो किसी भी विधा में लिखे, चाहे वो शायरी करे, चाहे गीत कहे, गजल कहे, व्यंग कहे, अपनी बात आप तक पहुंचाता है। तो कई बार हमारे इंटरव्यू जो होते हैं उससे बड़े अजीब सवाल हो जाते हैं कि आपको कौन सी चीज प्रभावित करती है, आप कैसी दुनिया चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा एक गीत है जो आपको सुनाता हूँ। शीर्षक है सुंदर चेहरे अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं।

0: सुंदर चेहरे, अच्छे लोग, जिनकी बोली में मिठास हो और चाल में एक रिदम, जो खुशियों के भी साथी हों और गमों के भी हमदम, ऐसे लोगों से मिलने का बनता रहे सदा संजोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे, अच्छे लोग। अंधभक्त ना जो यंत्रों के और न भागी षड्यंत्रों के, जिनके कानों में संचित हैं बोल अभी तक कुछ मंत्रों के, खुद से पहले अर्पित करते मंदिर में जो पहला भोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे, अच्छे लोग। और अंतिम है, जो न बदलते रंग कभी भी, भेड़ चाल में है भी नहीं भी, मानवता के रिश्तों को जो भूल न पाते कभी कहीं भी, जिनको विचलित कर देते हैं अपनों के साधारण रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे, अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे, अच्छे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस हौसला अफजाई के लिए, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक ऐसे वरिष्ठ कवि को मैं यहाँ पर माइक पर आमंत्रित कर रही हूँ, जो शब्दों के जादूगर तो है ही, साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी अपना नाम रोशन किया है। फिल्म विवाह और प्रेम रतन धन पायो के संवाद उन्होंने लिखे हैं और नमूना टेलीफिल्म का निर्देशन किया है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म शर्मा गए सिनेमा का भी निर्देशन किया है। और उनके कुछ सीरियल्स हैं, मूवर्स एंड शेकर्स, नहले पे दहला, जिसे लिखा है उन्होंने, और उनकी किताबें हैं जिनका नाम हम आपको बता दें, जब कभी आपको मौका लगे तो जरूर पढ़िए, हम क्या समझते नहीं है काव्य संग्रह है, ढाई आखिर हास्य के काव्य संग्रह है, और फिल्म पुराण सिनेमा पर हास्य व्यंग्य है, और साहब बाथरूम में ये भी हास्य व्यंग्य है। तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं इसे। और कविता क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, और इसके अलावा उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, और महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और आपने अमेरिका, रूस, हांगकांग, थाईलैंड और भी कई विदेशी यात्रा की है, और जहां पर इन्होंने मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत की है और लोगों को अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध किया है, वो है आशकरण अटल जी। तो आशकरण अटल जी के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं, उनका हम स्वागत करते हैं। आइए आशकरण जी,
2: एक गीत सुनिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों पर। इस गीत को शहीदों की आरती मानकर सुनिए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो दिन थे गीत गाने के, संवरने और निखरने के, मोहल्ले की किसी कली से पुस्तकें बदलने के, वो इनकलाब की डगर के कैसे राहगीर थे, जो कोई चीज के लिए हुए नहीं अधीर थे, वो फांसियों के तख्त देख पाने को मचल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो धन्य थे सपूत उनकी धन्य थी जवानियां, के कायरों में प्राण फूंक जाएं वो कहानियां, न जाने उनको मां ने घुट्टियों में क्या पिला दिया, कि जब हुए जवान तो जहान को हिला दिया, वो कोख धन्य हो गई जिस कोख में वो पल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, बड़े उदार थे कि शीश काट के भी दे दिया, उपकार हम पे करके अपना नाम भी छुपा लिया, किसी की प्रेयसी सदा बुहारती रही डगर, किसी की माँ दुलार से पुकारती रही मगर, वो मौत की दुल्हन भगा के जिंदगी को छल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, बने थे कौन चीज से ए हिंद तेरे लाडले, कि जितनी यातना सही वो उतने ही निखर चले, कि गोलियां जहां चली वहां खड़े मिले सदा, वो आहुति के वक्त पहली पांत में रहे सदा, फिर आरती के वक्त बावरे कहीं निकल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वतन के शहीदों को हमने गर भुला दिया, अभी तो माए ना जनेंगी देश भक्त लाल फिर कभी, तो इनकलाब सीखने लगेगा दुनियादारियां, तो पूछेंगी इतिहास से ये आने वाली पीढ़ियां, चलन कहां बसंती चोलों वाले।

0: आजकल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग जिए, तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग।
1: क्या बात, क्या बात, अद्भुत अद्भुत, क्या बात।
2: अब कार्यक्रम समापन की ओर है, यूं कहें कि समाप्त हो रहा है, और मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविंद्र कात्यायन जी उपस्थित हैं, और हम प्रोफेसर रविंद्र कात्यायन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। वो पहले सैनिक रह चुके हैं, उसके बाद प्रोफेसर रहे, कथाकार पटकथा लेखक हैं, वो कथाकार के रूप में पूरे मुंबई में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान है, और थोड़ी जानकारी दे दें उनकी कृतियों के बारे में। उनकी कृतियां हैं कोर्ट मार्शल, फिर से प्यार में लड़की, दो कहानी संग्रह है, और एक प्रेम कथा है उनकी जो प्रकाशित होने वाली है जल्द ही, और मीडिया लेखन, फिल्म विमर्श, साहित्य पर 12 पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया है, और फीचर फिल्म भी उन्होंने बनाई है, उसकी पटकथाएं भी लिखी है इन्होंने, 5 धारावाहिक लेखन इन्होंने किया है, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण किया है, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है, SNDT महिला विश्वविद्यालय का महर्षि कर्वे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से उन्हें नवाजा जा चुका है, और अखिल भारतीय कथाक्रम कहानी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अभी वो हिंदी विभाग मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय में अध्यक्ष हैं, तो आपका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्रोफेसर रविंद्र जी, आइए अपने उद्गार व्यक्त कीजिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, और सबसे पहले विविध भारती का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया। सृजन भारती द्वारा आयोजित आज के इस शानदार कवि सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। सभी कवि जिन्होंने कविताएं सुनाई, बहुत ही अच्छी कविताएं थी। मैं पहले भारतीय वायुसेना में था, 12 साल 2 महीने 20 दिन, और उसके बाद मैं गोवा विश्वविद्यालय में 5 साल रहा, फिर 1 वर्ष पुणे विश्वविद्यालय में रहा, उसके बाद SNDT महिला विश्वविद्यालय में 2004 से आया, और फिर मैं अभी नानावटी कॉलेज में पिछले 17-18 साल से हूँ। तो ये तो मेरी यात्रा है। मित्रों, कविता मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन की गीत संगीत और रोज की चीजों में जो प्रेम है, दर्द है, और जो हमारी भावनाएं हैं, उनमें कविता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु मिश्र की एक कविता है, 4 लाइनें हैं कि सिर्फ आक्रोश ही न कविता है, गीत संगीत ही न कविता है, जो स्वयं भूत और भविष्यत है, पंक्ति वह काल जयी कविता है। तो काल जयी कविता स्वयं भूत होती है, जिसके बारे में कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो आप सब इस चीज को जान चुके हैं, यहाँ पर लिखा है कला ही जीवन है। मित्रों, भारतीय वांग्मय में कलाएं तो आपको पता ही है कि 64 कलाएं होती, और उन कलाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ कलाएं हैं वे हैं 5, जिनमें काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला और चित्रकला, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कला का स्थान काव्य कला यानी साहित्य को ही दिया गया है। तो इस काव्य कला का आनंद लेने के लिए, उसके लिए भी बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। ये आनंद की जो परम अवस्था होती है, जो साहित्य से, कलाओं के आस्वादन से प्राप्त होती है। शायद आप सब जानते ही होंगे कि आचार्य मम्मट, जो संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है इसी काव्य के आस्वादन के लिए, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे श्वेत्र क्षते सद्यः पर निवृत्ते कांता सम्मितयो उपदेश युजे। इसमें सब कुछ तो है, लेकिन सबसे मुख्य दो बातें हैं, कांता सम्मित उपदेश और परम आनंद की प्राप्ति। तो ये साहित्य हमें परम आनंद देता है और कांता सम्मित उपदेश भी देता है। परम आनंद तो आप समझ सकते हैं कि जो अनिर्वचनीय है, जो ब्रह्म के आनंद की तरह प्राप्त होता है, जिसके लिए कहा गया है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और हृदय की इसी मुक्तावस्था की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, तो जब हम काव्य का, साहित्य का, कलाओं का आस्वादन करते हैं तो परम आनंद की स्थिति होती है। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बगल में कौन बैठा है, हमने क्या पहना है, हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, हम किस मौसम में बैठे हैं। वो एक परम आनंद की अनिर्वचनीय सुख की स्थिति होती है, और कलाएं ये सुख हमें देती हैं। भले ही वो हास्य हो, क्रोध हो, वीर रस हो, या कोई भी रस का परिपाक हो, लेकिन आनंद का जो सर्वश्रेष्ठ है, हमें ये कविताएं और कलाएं देती हैं। मित्रों, इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग याद रखें कि जो साहित्य और कलाएं हैं, वे हमें जीवन जीने के लिए, एक अच्छा

0: जीवन दूसरों को देने के लिए उस आनंद उन मानवीय भावों को अनुभव करने के लिए आवश्यक है, और इस तरह के जो कार्यक्रम है वे हमें यह सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति सद्भाव सहृदयता से रहें और उसके साथ जो मानवीय भाव हैं उनको साझा भी करते रहें। मानवीय भावों को साझा इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हम कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खी और पक्षियों से जानवरों से सबसे श्रेष्ठ इसीलिए हैं क्योंकि हम इन भावनाओं का, इन भाषा और साहित्य की इन कलाओं का आस्वादन पूरे मन से कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने आज इस सृजन भारती में ये जो साहित्य की सरिता में अवगाहन किया है, हम जो इसमें डूबे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विविध भारती को बहुत धन्यवाद देते हैं, और अंत में सच्चे मन से इन सभी कवियों को बहुत धन्यवाद देते हैं। कविता का आनंद तो हम सबने लिया ही है, हास्य हो व्यंग्य हो, लेकिन जो उदात्तता इनकी कविताओं में है, जो जीवन की श्रेष्ठता है, और हमने जिस आनंद का इस समय अवगाहन किया है, उसका आस्वादन लिया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं।
1: दोस्तों, हिंदी पखवाड़े पर ये था कवि सम्मेलन और कवियों ने अपनी अपनी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी इन कवियों की कविताएं और ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, विविध भारती हिंदी सर्विस है और हिंदी से प्रसारित तमाम कार्यक्रमों को सुन सुनकर लोगों ने अपनी हिंदी का विकास किया है, अपनी हिंदी समृद्ध की है। बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं जो अहिंदी भाषी हैं, इन्होंने विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन सुनकर अपनी हिंदी सुधारी है और बहुत सारे श्रोताओं ने विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनकर हिंदी सीखी है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के तमाम श्रोता भी विविध भारती से जुड़े हैं, तो आप यूं ही जुड़े रहिए और विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए।
2: दोस्तों, विविधा कार्यक्रम में अभी आपने सुना सृजन भारती के तहत आयोजित किया गया कार्यक्रम काव्य तरंग। ये एक कवि गोष्ठी थी जिसमें शामिल थे सुभाष काबरा, देवमणि पांडे, आस्करण अटल और दमयंती दीपा। इस कवि गोष्ठी का संचालन ममता सिंह ने किया और विविध भारती के स्टूडियो में इस कवि गोष्ठी को आपके लिए रिकॉर्ड किया किरण बंग, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक और भावना सिंदल ने। विविधा कार्यक्रम के लिए इस कवि गोष्ठी को संपादित किया मनीषा सिंह ने और विविधा कार्यक्रम को आपके लिए विविध भारती की ओर से प्रस्तुत करती हैं तेजश्री कामले।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। श्री मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक की यात्रा भी करेंगे। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अंबा समुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी जलकिंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को भ्रामक बताया है जिसमें एक कथित उपनिरीक्षक ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया उपनिरीक्षक दिल्ली पुलिस में नहीं है। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि मानवाधिकार कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया

0: समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
5: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
6: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
7: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

गंगा की लहरें, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत चित्रगुप्त का, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना लगान फिल्म से, ये गाना है उदित नारायण, वैशाली, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं।

लगान फिल्म का ये गाना आपने सुना उदित नारायण, वैशाली, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत ए आर रहमान का। यादों की

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम को लेकर। लाइफ पार्टनर इस फिल्म का गाना सुनिधि चौहान और कीर्ति सरगठिया की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल संगीत है प्रीतम का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रामलीला इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाजों में, सिद्धार्थ गरिमा का लिखा हुआ गाना, संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रंगे पर उड़ आवी खुशियों संगेला।
3: काई पोछे इस फिल्म का गाना श्रुति पाठक और दिव्य कुमार की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है छोटी बहन, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें, शैलेंद्र के बोर, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिल ही दिल में इस फिल्म का गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, महबूब के बोल संगीत है ए आर रहमान का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती
4: मई जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर।

जोहर महमूद इन हांगकांग। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में, कमर जलालाबादी के बोल संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना सुहाग फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सूर्य धड़कन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार का भरोसा दिलाया है और उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर के शक्तिपीठों, देवी मंदिरों और घरों में कलश स्थापना की जा रही है। देवी मंदिरों को आकर्षक रोशनी और चुनरी से सजाया गया है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन आज माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जा रही है। माँ शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और नई शुरुआत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर माँ राजराजेश्वरी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने माँ जगदम्बा से प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। विभिन्न स्थानों पर मेले भर रहे हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पंडाल लगाए गए हैं, जहां गरबा और डांडिया का आयोजन होगा। इसके साथ ही माता के जगरातों की भी आज रात से शुरुआत होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिन बालिकाओं के लिए लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष की थीम बाल विवाह समाप्त करें और बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करें रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों को बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटियां समाज की प्रगति और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की नींव हैं। उन्होंने बेटियों के सपनों को पंख देने और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लेने की अपील की। आज महाराजा अग्रसेन जयंती भी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन सामाजिक सद्भाव के अग्रदूत थे। श्री मोदी ने कहा कि उनके विचार भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से समाज में समानता, सेवा और परोपकार की भावना को मजबूत करने वाले महाराज अग्रसेन की जयंती पर उन्हें नमन किया है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े आयोजन हो रहे हैं, साथ ही शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। विभिन्न जिलों में शिक्षा, कला, संस्कृति और सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वृद्धजन के प्रतिभा सम्मान समारोह रखे गए हैं। इसके अलावा महिला मंडलों की ओर से मेले लगाए गए हैं, जिनमें विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जा रही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ T108 के चेहरे के पास चोट के निशान दिखाई दिए जाने के बाद वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उपवन संरक्षक मानस सिंह ने बताया कि यह चोट किसी अन्य नर बाघ के साथ क्षेत्रीय वर्चस्व को लिए हुए संघर्ष के दौरान हो सकती है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की ओर से बाघ T108 की गतिविधियों और स्वास्थ्य की लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है। कुछ स्थानों पर दिन के समय तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं। भीलवाड़ा और बाड़मेर में सूरज के तीखे तेवर बने हुए हैं। इस बीच आज सुबह श्रीगंगानगर जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज 6 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में बादल छाए रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। रांची में खेले गए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार

0: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
5: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
6: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
7: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद मेहरा पर फिल्माया गया बेमिसाल फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज की इबारत में कोई साधारण पंक्तियां नहीं लिखी गई है, बल्कि इसमें दिल के एक पूरे सफर का निचोड़ है, जिसमें तस्वीर की खूबसूरती से शुरू होकर मन को छूने वाली मासूमियत है। बिंदिया की चमक में बसे प्यार का इकरार, ख्वाबों की मीठी उड़ान और दोस्ती यारी की अटूट कसम तक सब कुछ सिमटा हुआ है। फिर उसी में जुदाई का दर्द भी है कि तेरे बिना जीना कैसा। तो कभी कभी उठता वो गहरा सवाल भी कि क्या सोचा हुआ सच में होता है, और इसी उलझन के बीच वो अनजाना सा एहसास जब इंसान हौले हौले किसी हसीन चीज का तलबगार बन जाता है, तड़प, इंतजार और आखिर में अपनी पहचान की तलाश। सच कहें तो आज की इबारत एक आशिक, एक दोस्त और एक सोचने वाले इंसान की पूरी कहानी कह जाती है। जी हाँ, आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, तो उनको शुभकामनाएं देते हुए उन्हीं की फिल्म के गाने हम आपको सुनवाएंगे, और या यूं कहें कि सुनवा रहे हैं। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि जिनकी फिल्मों ने मात्र मनोरंजन ही नहीं किया, समाज को एक दिशा भी दी है। उनका भी शुरू का सफर बड़ा आसान नहीं रहा है, लेकिन वे संघर्ष करते रहे और प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर उनके जीवन में एक तूफान सरीखी आई, जिसने फ्लॉप हीरो का ठप्पा हटा दिया और वे रातों रात एक स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। उनकी फिल्मों का दर्शकों को इंतजार रहता था और सिनेमा घरों में लगने वाली फिल्मों के टिकट एडवांस में बिक चुके होते थे। उस महानायक पर हमें गर्व है। और आज कुछ एक दो सवाल हैं हमारे, वैसे तो आपने बहुत सारी बातें लिख दी हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं, कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया और उसकी क्या खासियत थी, ये आप हमें लिख

भेज सकते हैं, और बहुत सारे उनके डायलॉग हैं जिसमें से कुछ तो हमारे श्रोताओं ने लिख के हमें भेज दिए हैं। और भी कोई डायलॉग आपको याद आ रहे हो जो आपको बहुत पसंद आए हो, तो फिल्म के नाम के साथ उस डायलॉग को हमें लिख करके भेज सकते हैं। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं। इस गाने ने सचमुच सभी के मन को छुआ, याराना फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, अनजान के बोल, राजेश रोशन का संगीत। अमिताभ बच्चन के साथ कौन सी अभिनेत्री दिखाई दे रही है ये आप बताइए।

0: मन को।
1: अमिताभ बच्चन के साथ जो अभिनेत्री इसमें दिखाई देती हैं वो है नीतू सिंह। आपके जवाब हम तक पहुंचे, बहुत धन्यवाद। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये कश्मीर है ये जो गीत हमने सुना, हाय हाय ये गीत सुनकर तो ठंड लगने लग गई, अब तो भाई रजाई निकालो। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेमिसाल फिल्म का सदाबहार गीत, ये कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये आपने सुना है आर डी बर्मन द्वारा रचित और आनंद बख्शी द्वारा लिखित एक बहुत ही खूबसूरत ये रचना है और इसमें कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मानवीय भावना और रिश्तों की गहराई को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दाग जब दामन की जगह दिल में लगी हो तो कभी कभी हर तस्वीर में दिलरुबा ही नजर आती है, हर किरदार का तलबकार युवा आक्रोश में गुस्सेल विद्रोही दहाड़, व्यवस्था विरुद्ध विद्रोही तेवर, कभी कभी कभी विदूषक तो कभी दिल की तन्हाइयों में एकाकी जूझता एकमात्र लंबी अवधि का सुपर स्टार अमिताभ बच्चन आधारित ये जो सफर है ये हमें पसंद आया। अभिमान फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एस डी बर्मन का।

लीजिए, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे डायलॉग हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि अमर अकबर एंथनी इस फिल्म में एंथनी गोंसाल्विस के मजेदार अंदाज और हास्यपूर्ण संवाद आज भी लोकप्रिय है। एक साथी लिख रहे हैं नमक हलाल फिल्म का डायलॉग, आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश। एक

लिखते हैं, त्रिशूल फिल्म के लिए मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और एक साथी लिख रहे हैं, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। एक साथी ने शोले फिल्म के लिए लिखा है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये फिल्म का मशहूर गीत है जिसे जय और वीरू की दोस्ती के लिए याद किया जाता है। और एक साथी ने जंजीर फिल्म के लिए लिखा है, जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। और एक साथी ने अग्निपथ फिल्म का डायलॉग लिख करके भेजा है, विजय विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम है मेरा। डॉन फिल्म के लिए, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, ये बात लिखी है। और शराबी फिल्म का एक डायलॉग उन्होंने लिख करके भेजा है कि मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी वरना ना हो। और शहनशाह फिल्म के लिए लिखा है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है, धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनते हैं, सिलसिला फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, संगीत शिव हरिका। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, मोहब्बतें फिल्म का ये डायलॉग हमारे एक साथी ने लिख करके भेजा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, पीटर ये ताला मैं तेरी जेब से ही चाबी निकाल कर खोलूंगा, ये डायलॉग उन्होंने लिख के भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शक्ति मूवी जो है अमिताभ जी की, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे परिवार की कहानी लगती है और मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं, मेरे बेटे और पति का संबंध दिलीप कुमार और अमिताभ जी जैसे रहे हैं और मैंने ये मूवी उनकी कई बार देखी है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कहते हैं ना कि जिसे आप प्यार करो तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, बस दर्द को कितना प्यार था कविता, आप किसी भी रोल में अदा करें लोग उन्हें पसंद करते थे, मुझे भी उनकी बहुत सारी फिल्में पसंद हैं। उनके किरदार में एक फिल्म है जुर्माना जो मेरे दिल के बेहद करीब है, फिल्म में जब इंदर का अहंकार टूटता है और वह अपनी गलती स्वीकार करता है, नायक को यह घमंड था कि वह अपनी दौलत और पैसे की ताकत से किसी भी इंसान के जज्बात और रिश्ते को खरीद सकता है, तो इस तरह की जो कहानी है ये उन्हें बहुत पसंद आई। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिनेमा घरों की टिकट खिड़कियों पर कभी लंबी कतारें लगना उनकी लोकप्रियता का सबूत था, लेकिन चार दशकों से भी अधिक समय से हर रविवार को उनके बंगले के बाहर जुटने वाली जो भीड़ है वो इस बात की गवाही देती कि रिश्ता महज अभिनेता और दर्शक का नहीं बल्कि गहरी आस्था और अपनेपन का है, और ये अमिताभ जी ने अपने सरल स्वभाव से कमाया है, ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए। एक साथी ने हमारे ये लिखा है कि आपने अभी तक नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि देना चाहिए? अगर आपने हमारा इससे पहले वाला कार्यक्रम अगर सुना होगा तो हमने नवरात्रि की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं दी हैं और बहुत सारे गीत भी नवरात्रि से संबंधित सुना है, लेकिन एक बार फिर हम आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अगला गाना शोले फिल्म से है, किशोर कुमार मन्ना डे की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायलॉग की जहां तक बात है तो उन्होंने लिख करके भेजा है कि ये क्या है, कोल्हापुरी कितना नंबर है, 9 नंबर। और एक और डायलॉग, मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पर खड़ा है, फिल्म शराबी का ये डायलॉग है। और एक और शोले का डायलॉग, अब क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, ये इन्होंने लिख करके भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, मिली फिल्म का ये जो गाना है ये किशोर कुमार का गाया हुआ और एक बेहद मधुर और भावुक गीत है जो प्रेम याद और दिल की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। जब प्रिय व्यक्ति की याद आती है तो भीतर का सुनापन संगीत में बदल जाता है और जीवन में एक अलग ही ताजगी आ जाती है, इसलिए मुझे बड़ा पसंद है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अमित जी ने अपनी इस लंबी पारी में एक से बढ़कर एक नायाब किरदार निभाए हैं, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे मुकद्दर का सिकंदर के बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं इस फिल्म से। इस फिल्म में अमित जी ने जो बेमिसाल अभिनय किया है उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अकेलेपन का दर्द, एक तरफा प्यार की कशिश, दोस्त और माँ बहन के लिए असीम प्यार, इन सभी भावनाओं को उन्होंने जिस शिद्दत के साथ बयान किया है उसके बारे में क्या कहें। इस फिल्म के गीत के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। चलिए इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का किशोर कुमार की आवाज, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

गद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें जो अभिनेत्री हैं वो हैं राखी। एक साथी लिख रहे हैं कि बागबान फिल्म मुझे बहुत पसंद है, इस परिवार की फिल्म लगती है ये, आम आदमी की, हमारी खुद की फिल्म जब भी देखने बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता। हेमा मालिनी जी और अमिताभ जी का बिछड़ना दिल को छू जाता है। और एक डायलॉग लिखा है कि जय और वीरू ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये जो शोले फिल्म में का की बात इन्होंने लिखी। और लिखा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये भी एक डायलॉग है शायद, वो उन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी से मैं स्वयं और हम सभी ये प्रेरणा ले सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र कभी भी उस व्यक्ति के काम में बाधा नहीं बन सकती है, अगर उसमें इच्छा शक्ति है, समर्पण है, काबिलियत है, समय के पाबंद है और मधुरभाषी है तो सफलता उसके कदम चूमती ही है। ये बात इन्होंने लिखी है। और शोले के एक डायलॉग के बारे में लिखा है कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भूंज के रख दूंगा, जेल में पिस्तौल, डिचुम डिचुम, जय तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ये इन्होंने डायलॉग लिख करके भेजा है। चलिए आपका धन्यवाद। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि भारतीय सिनेमा के महानायक जिनके लिए रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि उनका रुतबा है, जिन्होंने सिखाया है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जिनकी कड़क आवाज जब गूंजती है तो आज भी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है का रोमांच सर चढ़कर बोलता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वाभिमान से कहता है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, जिसका पूरा नाम सुनते ही उनकी विजय दीनानाथ चौहान की दमदार छवि आंखों के सामने तैर जाती है। सच उनके इस अंदाज के लिए दिल बस यही कहता है।

कि आप जी हजारों साल, ये इनकी बात है। चलिए धन्यवाद। मजबूर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाज़ का गाया हुआ फिल्म एक नज़र का ये गीत अमिताभ बच्चन और जया जी पर फिल्माया गया है, जो मेरे दिल के बेहद करीब है। इस गीत में दोनों की ही मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदारों से लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की दमदार आवाज़, संवाद बोलने का अंदाज और दशकों तक दर्शकों से जुड़ाव उनकी खास पहचान है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्यार आज भी कायम है। तो इसी के साथ हम अगला गाना शक्ति फिल्म का आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीता आर डी बर्मन का।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कालिया मूवी में जब वो कहते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, होठों पर मुस्कान आ जाती है। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के शहंशाह, सदी के महानायक और आज एक आज तक भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं। शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष रहा, जहां तक रेडियो जॉकी में उनकी आवाज की रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं पहली 10-12 फिल्मों की असफलता के बाद जब फिल्म जंजीर बनी तो भारतीय फिल्मों का को एक ऐसा एंग्री यंगमैन मिला जिसके अभिनय का जादू सारे जहान में छा गया। दीवार, डॉन, त्रिशूल, अमर अकबर, एंथनी, लावारिस और भी कई ऐसी फिल्में हैं अमिताभ बच्चन की जिसने सिने दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। और आज भी अमिताभ जी बेशक 80 बरस के ऊपर हो गए लेकिन फिल्मों और टीवी प्रोग्राम में वो सक्रिय हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, सौदागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज, गीत और संगीत है रविन्द्र जैन का।

अमिताभ बच्चन यानी अभिनय की यूनिवर्सिटी और एक नेक इंसान महान व्यक्तित्व, ये हमारे एक साथी ने लिखा है। और ये भी लिखा है कि फिल्म कोहराम में अमिताभ जी और नाना पाटेकर जी का शानदार अभिनय हमें देखने को मिला। एक साथी ने फिल्म बागबान का एक डायलॉग लिखा है कि औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है वो कल उनका भी होगा, आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। मैं कभी किसी युवा को बुजुर्गों का अपमान करते हुए देखता हूँ तो यही बात मैं बोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, स्वयं भी सभी बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ। ये साथियों ने हमारे बात लिखी। और ये भी लिखा है कि अमिताभ हमारे सदी के वे अभिनेता हैं जो किसी ख्वाब के पूरे होने की दास्तान है। उन्होंने पर्दे पर न जाने कितनी तरह के रंग बिखेरे और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी दो जिंदगी है, एक पर्दे के बाहर की और पर्दे के भीतर की, और दोनों ही तरफ उन्होंने खूब शोहरत बटोरी। अमिताभ में एक आभा है और अपने काम के प्रति गहरा समर्पण, ये दो चीजें ही हम सबका समय समय पर मन मोहती रहती है। और गजब की बात यह कि जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं उस उम्र में भी वो खूब सक्रिय है। चलिए आगे, सत्ते पे सत्ता इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, गुलशन बावरा के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रतिभा, अटूट अनुशासन और असफलताओं से सीखकर दोबारा खड़े होने की जिद इंसान को कैसे अमर बना देती है। वे भारतीय सिनेमा के सूर्य हैं जिनकी चमक का दायरा कभी कम नहीं होता। उनके संवाद, उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि साधारण से साधारण पंक्ति के भी सिनेमाई इतिहास का हिस्सा बन जाता है। और एक साथी ने ये लिखा है कि उम्र उनके चेहरे पर लकीरें खींच सकती है, वक्त उनके कदमों की रफ्तार बदल सकता है, लेकिन करोड़ों दिलों में उनके लिए जो मोहब्बत है उसे कभी कम नहीं कर सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे कई पीढ़ियों की यादों में बसी एक आवाज है, एक ऐसा जादू जो पर्दा गिरने के बाद भी खत्म नहीं होती। चलिए अगला और अंतिम गाना, डॉन फिल्म का गाना।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: दुनिया में समझा है।

नमस्कार, मैं हूं मंजू द्विवेदी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बेटी माता पिता के जीवन में रंग भरती है और घर को अलहड़ शरारतों से गुलजार करती है। उसके होने से मन को सुकून मिलता है। गहरी तकलीफ में वो हौसला बंधाती है और उसकी खिलखिलाहटें दर्द में भी हंसने का बहाना देती है। घर को सचमुच घर बनाती है बिटिया। घर में जब बेटी का जन्म होता है तो क्या उसे देखकर हम ये कहते हैं, उसकी बातों में शहद सी मिठास, उसकी सांसों में इतर की महकास, होठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे कि दहके अनार, मेरे घर आई एक नन्ही परी। क्या बेटी के जन्म लेने पर हम उतने ही खुश होते हैं जितना बेटे के जन्म लेने पर? बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। बेटियों के आने पर बाह पसार कर उनका स्वागत कीजिए।

हमारे देश में बालिका को कितने ही रूपों में पूजा जाता है। नन्ही बच्चियों को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और विवाहित बेटी को पार्वती का। हर प्रतीक, हर रूप के पीछे न जाने कितनी कथाएं और कितनी आस्थाएं हैं, पर वास्तविक जीवन में कई बार हम इस शक्ति को पहचानने में भूल कर जाते हैं। बालिका शक्ति स्वरूपा भी है और भविष्य में सृजन का आधार भी। बच्चों की परवरिश बच्चों की तरह होनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की। माता पिता के शब्द और व्यवहार बच्चियों की सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लड़की और लड़के के जन्म के बाद परिवार में दोहरी मानसिकता देखी जाती है, चाहे बात खान पान की हो, शिक्षा की हो

जहां बच्चियों को देवी तुल्य मानकर पूजने की परंपरा है, वहां यौन हिंसा जैसी बातें मन को विचलित कर देती है। बच्चियों के प्रति गंदी सोच रखना, लिंग भेद करना और उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार देना, ये बातें हमें झकझोर देती है या छलावा लगती है। बेटियां पराया धन नहीं है, उन्हें पढ़ाएं फिर देखें, वो अपनी राह खुद बना लेंगी। जब बेटियों की थालियां और बस्ते बेटों के समान सजते हैं तो अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। खेल के मैदान गवाह हैं कि जाने कितनी बार देश का मान बेटियों ने बढ़ाया है। राजनीति, कॉरपोरेट, शिक्षा, सेना, हर क्षेत्र में बेटियों ने अपनी पताका फहराई है, तो फिर हम बेटी के आगमन पर खुश क्यों नहीं होते। आइए आज के दिन हम ये प्रण लें कि रूढ़ियों को तोड़कर लड़के और लड़कियों को बिना भेदभाव के पढ़ाएं लिखाएं और करियर के अवसर दें, मुसीबत में उनका साथ दें, उनके कौशल को निखारें, उन्हें प्रशिक्षित करें और आत्मनिर्भर बनाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।

0: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
1: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपल्स पद्मा बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए, अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
0: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
2: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक हैं उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
0: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
3: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक एक नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
4: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्मम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
3: अमरीका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए

0: बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
1: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
0: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
2: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आओ प्यार करें। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है उषा खन्ना का।
4: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी परछाइयां, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में असद भोपाली का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म आया तूफान।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। चित्रलेखा इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रोशन का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना आइए अब सुनते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बेटी बेटे। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें।

0: इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: तो चलिए आज के इस मनचाही गीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला गीत सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना। आशा भोसले की आवाज, आनंद बख्शी की बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं रमन अग्रवाल लुधियाना से। और इसके अलावा फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं विवेक देशमुख, दीपक विज देशमुख और अनिरुद्ध देशमुख। आपका पत्र आया है समता कॉलोनी कठोरा रोड अमरावती महाराष्ट्र से। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने फरमाइश भेजी है। और प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश, अंजलि और पिंटू खंडाले का पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गाना है धरती फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास आई है बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी और श्रद्धानंद केशरी की, श्री रामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, पूजा, अनिकेत, शुभांगी, श्रावण और अनीता बिड़वे की, और बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, ग्राम जंजगिरी दुर्ग से मयंक कुमार मैथिल और विनय कुमार मैथिल, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। आपकी पसंद का है धरती फिल्म का ये गाना।

आपका मनचाहा अगला जो गीत है वो लता मंगेशकर और बप्पी लहिरी की आवाजों में आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है, शैली शैलेंद्र के बोल और संगीत बप्पी लहिरी का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे ने, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आजाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने, और इसके अलावा विनोद कुमार अफ्रीका वाला, इनका पत्र आया है पातड़ी जिला सुरेंद्र नगर गुजरात से, और नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना गौरव, प्रतीक्षा, शिवानी चंचल और खुशी आनंद का। आपकी पसंद का है आपकी खातिर इस फिल्म का ये गाना।

खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा बानो, नजीब खान, बाबू भाई और अशरफ खान, ग्राम बगोता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामेश्वर रैकवार, पीयूष तरुण, दीपेश दयानंद और राम मिलन रैकवार और महामाया प्रसाद ओझा। आपका पत्र अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आया है। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु पथिक, सोनाली और कृष्ण नारंग, कृष्णानगर टीवी टावर, सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का पत्र हमें मिला है। आपने फरमाइश किया है भाभी फिल्म के गाने के लिए। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है चित्रगुप्त का।

अगला जो गीत है जिसकी फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है दीवाना फिल्म का गाना। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, रणपिसनेग अकोला से शिवराज भारती, टीना, तनीषा, राज भारती, रीनाताई, रोहित और राज भारती। इसके अलावा नरोत्तम गोड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं और रथ चौक बहादुरपुर से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दड़गंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। इसके अलावा एरोड्रम थाने से इंदौर से ये पत्र आया है, रेखा, संतोष, रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की रघुवंशी का, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का। आपकी पसंद का ये गाना दीवाना फिल्म से।

0: दीवाना फिल्म का ये गाना यही था आज के मंचाय गीत कार्यक्रम का अंतिम गाना। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम सहयोग हमें मिला धनश्री साठे से और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: आज आपको सुनवाते हैं प्लास्टिक की घास, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक दीना नाथ।
4: मिस्टर शर्मा करमारकर के दफ्तर से निकलकर बिरला मंदिर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते मन में कई किस्म के विचार उठ रहे थे।
5: करमारकर साहब जरूर मेरी मदद करेगा, पर बड़ी गलती हुई। करमारकर साहब के पास जाते हुए मुझे कुछ फल वल ले जाने चाहिए थे। फल कितने महंगे हो गए हैं। कुछ भी हो, ऐसे मुश्किल वक्त में पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए।
6: ओए देख के चलो, तुरी जाना है तो तू उत्ते पहुंच जाना सी।
7: ओए केड़े पिंडो आया,
6: पता नहीं तेनू शहर विच लोकी फुटपाथ ते चलदे ने।
4: अपने ही शहर में मिस्टर शर्मा आज परदेसी लग रहे थे। थके हारे घर पहुंचे तो मिसेस शर्मा बाहर ही खड़ी थी।
8: क्यों जी, कुछ बात बनी?
5: हाँ, आज करमारकर साहब से मिला था।
8: क्या कहते हैं?
5: कहते हैं ऑल द बेस्ट।
8: इसका मतलब?
5: सब कुछ ठीक हो जाएगा।
8: हे भगवान, तेरा

0: लाख लाख शुक्र है। चलो बला काटी।
1: ये कैसे समझ लिया तुमने कि बला टली? करमारकर साहब ने सिर्फ यही तो कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
0: यानी वो खुद कुछ नहीं करेंगे?
1: कोशिश करेंगे।
0: तो आज के जमाने में ये भी कौन करता है? दोपहर को पड़ोसन आई थी, कह रही थी भटनागर साहब की भी एक बार ट्रांसफर हुई थी मगर उन्होंने रुकवा ली थी।
1: हो सकता है।
0: कह रही थी भाई साहब से कहना, उनसे सलाह मशवरा कर ले।
1: अरे तुम तो जानती हो वो शराबी कबाबी आदमी है। पिताजी कहा करते थे शराब की लत से बचने के लिए जरूरी है कि शराबी की संगत से बचो।
0: अय हाय, जरा सी सलाह लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? जाओ जाओ, मिलाओ ना दो मिनट।
1: ओहो, लेकिन वो
0: दो मिनट बात करने में क्या हर्ज है, तो अपना पड़ोसी ही ना।
1: अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ।
2: अरे आइए आइए शर्मा जी।
1: नमस्ते
2: नमस्ते नमस्ते। अरे साहब धन्यभाग्य हमारे, आप हमारे घर पधारे।
1: अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप,
2: इतने करीब रहकर भी कभी आए नहीं हैं।
1: आप तो जानते ही हैं दिन भर दफ्तर में ही निकल जाता है, काम इतना है कि घर पर भी लाना पड़ता है।
2: हाँ आप बैठिए।
1: हाँ बस मैं ठीक हूँ ठीक हूँ।
2: और सुनाइए।
1: वो बस ऐसा था कि
2: पहले ये बताइए कि क्या लेंगे आप?
1: नहीं,
2: पानी है सोडा?
1: नहीं नहीं मैं नहीं लेता, ये मैं नहीं लेता।
2: मैं भी नहीं, आई डोंट ड्रिंक।
1: वो बात ये है मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था, योर एडवाइस।
2: आई डोंट ड्रिंक।
1: हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, दरअसल हुआ क्या कि अचानक
2: यू नो मिस्टर शर्मा आई डोंट ड्रिंक।
1: हाँ हाँ
2: आप इसे अपना ही घर समझ।
1: जी हाँ जी हाँ, मैं अपना ही घर समझ कर आया हूँ। क्या बताऊँ, बहुत विपता आन पड़ी है, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
2: बहुत बुरी बात, मैंने बस सब छोड़ दिया है। आई डोंट ड्रिंक।
1: सुना है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि?
2: हाँ क्या हुआ?
1: सुना है आपके भी ट्रांसफर का कुछ चक्कर चला था।
2: चक्कर? घनघोर चक्कर, बट आई डोंट ड्रिंक।
1: मैं वो ट्रांसफर की बात कर रहा था।
2: ट्रांसफर करना किसी को घर से उजाड़ना, बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की।
1: फिर आपने क्या किया?
2: बहुत कोशिश की उन्होंने।
1: फिर आपने क्या किया?
2: मैंने
1: हाँ हाँ आपने क्या किया?
2: मैं ऊपर गया।
1: हाँ
2: और कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी।
1: फिर
2: मैंने उनसे कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी जाए।
1: तो आपकी ट्रांसफर रोक दी गई?
2: नहीं।
1: फिर
2: मैं और ऊपर गया।
1: अच्छा फिर
2: वहां भी न रुके?
1: तो
2: मैं और ऊपर गया।
1: और वहां? हाँ फिर वहां क्या हुआ?
2: वहां क्या होना था? I don't drink।
1: और वो लोग?
2: और वो लोग नहीं माने।
1: फिर आपने क्या किया?
2: करना क्या था, कह दिया उनसे।
1: क्या
2: कह दिया उनसे? नहीं मान दे तो कर लो ट्रांसफर। पहले इसके के ऑर्डर मेरे दफ्तर पहुंचे मैंने लीव ले ली।
1: छुट्टी ले ली? कितनी?
2: पहले एक महीने की, फिर दो महीने की, फिर तीसरे महीने की।
1: लेकिन इतनी लंबी ली?
2: मेडिकल।
1: यानी आपने ऐसे ही सर्टिफिकेट वगैरह?
2: नो मिस्टर शर्मा आई डोंट ड्रिंक।
1: जानता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट?
2: पहले तीन महीने का झूठा सर्टिफिकेट और उसके बाद का सच्चा।
1: क्या मतलब?
2: तीन महीने की छुट्टी थी, काम का कुछ था नहीं। ऐसे ही कभी कभार जरा सा शौक कर लेता था। वैसे यू नो आई डोंट ड्रिंक। बस तीसरे महीने लीवर, यू नो मिस्टर शर्मा लीवर।
1: हाँ हाँ जिगर जिगर।
2: बस बोल गया, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, छूटे सर्टिफिकेट की जरूरत भी खत्म हो गई।
1: हाँ और आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स?
2: जब दफ्तर ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑर्डर सर्व कैसे करेंगे? सारे कहते थे ट्रांसफर रुक नहीं सकती, अब रुकी है ना साल भर से।

0: हाँ जी मिला है, क्या मशवरा दिया उन्होंने?
1: शराब पियो, अपना जिगर खराब करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ। सरकारी ट्रांसफर तो अपने आप रुक जाएगा, इस दुनिया से ट्रांसफर भले ही हो जाए।
2: मैंने तो आपको पहले ही कहा था पिताजी, ये सब एक्शन बेकार है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, बिना ढोल बजाए कोई नहीं सुनता।
1: तो क्या करूं फिर?
2: मेरी मानिए तो यूनियन लीडर से मिलिए।
1: यूनियन? मैंने तो आज तक किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया।
2: यही यही यही तो गलती की है आपने, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी मानिए, कल सुबह यूनियन के लीडर से मिलिए, जो काम ऑफिसर्स नहीं कर सके ये मिनटों में कर लेते हैं।
1: लेकिन हमारी यूनियन का लीडर तो शायद घनश्याम है।

0: जो कोई भी हो उसके घर जाकर उसे फौरन मिलिए।
1: ये कैसे हो सकता है, वो तो क्लास फोर है।
0: और बस बस यही तो कमजोरी है हम लोगों में। हम लोग क्लासों के चक्कर में फंसकर बट गए। क्लास वन क्लास टू से नहीं मिलता, क्लास टू क्लास फोर से बात नहीं करना चाहता, और इसी बात का फायदा उठाकर वो आप पर वार करते हैं, इंसानों को उंगलियों पर न चाहते हैं।
2: ठीक ही तो कहता है किशन, उस नीच को भूल के जहाँ से भी मदद मिलती हो ले लेनी चाहिए, जरूर मिल जाए जाकर सुबह उससे।
3: अच्छा अगर तुम लोग कहते हो तो मिल आऊंगा। हाँ लेने आ गया क्या?
2: वो बेचारा भी इसी चक्कर में किसी से मिलने गया है।
3: और उषा?
2: उषा उसने तो कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, ना कुछ खाया है ना पिया है।
3: इस ट्रांसफर से उसे इतना सदमा हुआ।
2: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके तो आंसू भी नहीं थमते।
4: अरे बस बस उषा धीरज रखो, क्यों रो रो कर अपना मन हलकान कर रही हो?
5: ना जाने तुम किस पत्थर के बने हो, मैं तो ये सोच कर कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं बस होश ही गवा बैठी हूँ। पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है और तुम्हारी सूरत डूबती नजर आती है।
4: मौत से पहले मन में कहरों का काम है, जब जुदा होने का वक्त आएगा तब जुदाई की आग में जलकर जी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास हो, फिर अभी से रोना धोना क्यों?
5: तुम मत लो, होते ही बेवफा हो, बस सिर्फ इस पल के जीने को जीना समझते हो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन पिताजी के इस ट्रांसफर ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए।
4: घबराओ नहीं उषा, भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा और तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने से बच जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सच्चे प्रेमियों की आहो पुकार में बड़ी शक्ति होती है। आओ हम और तुम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो दो दिलों को टूटने से बचा ले और इस ट्रांसफर को रुकवा दे।
5: राकेश भगवान हमारी सुन लेंगे।
4: अगर प्यार हमारा सच्चा है तो
5: मेरा तो बिल्कुल सच्चा है। हा?
4: और मेरे प्रेम पर कोई संदेह है तुम्हें?
5: संदेह ना करूं तो और क्या करूं? हम लोग इतनी विपता में फंसे, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का खतरा है और तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहते हो।
4: हाँ हाँ उसकी दो वजह है, एक भगवान की शक्ति अपरंपार है और दूसरे उसके सिवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ जो इस ट्रांसफर को रुकवा सकूं।
5: मुझे पहले पता होता तो मैं ये भूल कभी ना करती।
4: कैसी भूल उषी?
5: किसी कवि की बजाय किसी बड़े आदमी के बेटे से प्रेम कर।
4: हाँ तो अभी क्या बिगड़ा है, जाओ ढूंढ लो कोई।
5: तुम जानते हो ना कोई शरीफ लड़की बार बार प्रेम नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो।
4: उषा चुप करो, चुप कर जाओ मेरी प्यारी, मेरी जान से दुलारी अब चुप कर जा। जुदाई के वक्त तो रोना ही रोना है, कुछ आंसू उस वक्त के लिए मैं बचा के रखू। मैं वचन देता हूँ अगर तुम आगरे चली गई तो मैं संडे के संडे तुमसे मिलने वहां आया करूंगा।
5: आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मुझे यकीन है मेरे जाते ही तुम मुझे भूल जाओगे।
4: उषा अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ
5: तो
4: तुम भी मुझे हमेशा के लिए भुला देना।
5: मैंने तुमसे प्रेम भूलने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए किया है। सुनो मुझे एक तरकीब समझ में आई है।
4: क्या?
5: हम शादी कर ले।
4: ये कैसे हो सकता है?
5: बारात लाकर बाजे बजाकर।
4: नहीं मेरा मतलब है मेरे माँ बाप तैयार हूँ, तुम्हारे माँ बाप माने तो।
5: मैं कह दूंगी अपने पिताजी से, या तो अपनी ट्रांसफर रुकवाए या दिल्ली छोड़ने से पहले मेरी शादी तुम्हारे साथ करते जाए। बस मैंने फैसला कर लिया है।
2: सुना आपकी बेटी क्या कह रही है?
3: क्या बात है?
2: कहती है अगर ट्रांसफर न रुकी तो वो यहाँ किसी से शादी कर लेगी।
3: लेकिन मैंने तो अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं की।
2: राम जाने क्या उल जलूल बक रही है।
3: हे भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी, जरा सा संकट आया तो सारा परिवार ही मेरी जान का दुश्मन हो रहा है।
0: इस छछुंदर की अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप जल्दी से जाइए घनश्याम जी से मिलिए।
3: घनश्याम जी?
0: ओफो पिताजी समझा कीजिए, लीडर यूनियन का हो या देश का उसके साथ जी लगाया ही जाता है।
3: जी
0: जी
6: आज 19 जून है और सुबह सवेरे ही मिस्टर शर्मा चले हैं यूनियन लीडर घनश्याम जी से मिलने।

0: आइए आइए बड़े बाबू, धन्य भाग हमारे, आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आपने कष्ट क्यों किया, सेवक को बुला भेजा होता।
1: अरे तुमने मुझे पहचान लिया घनश्याम जी?
0: क्या बात करते हो बड़े बाबू, 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग आपके ही दफ्तर में तो थी। क्यों?
1: मुझे तो याद है, पर बहुत वक्त गुजर गया था इसलिए मैंने सोचा कि शायद।
0: क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? अरे सुनती हो, जरा देख तो कौन आया है, जरा शरबत वरबत तो लेके।
1: नहीं, नहीं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
0: हाँ?
1: मुझे जरा जल्दी वापस भी जाना है। हाँ, वो मैं अपने एक निजी काम से आया था।
0: हुक्म दें।
1: वो ऐसा है कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
0: ट्रांसफर? और आपकी? राम राम राम, ये किस दुष्ट का काम है?
1: ट्रांसफर जिस किसी ने भी किया है वो खुद ही भुगतेगा। हाँ, तो बात इतनी सी है कि किसी तरह अगर ये ट्रांसफर रुक जाए तो।
0: किसी तरह से क्या बड़े बाबू, हर तरह से ये ट्रांसफर रुक नहीं होगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं आज ही ऊपर जाता हूँ और ये ट्रांसफर रुकवाता हूँ। अगर सीधी तरह नहीं माने तो परसों से स्ट्राइक, फिर नहीं माने तो हंगर स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक।
2: क्यों खड़ा है?
1: कुछ नहीं, वो
2: इस जुलूस के साथ है?
1: नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ।
2: तो भैया जाओ जाओ अपने काम पर जाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो?
1: हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। क्यों भाई साहब, ये मिस्टर घनश्याम जी का क्वार्टर?
3: वो सामने जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: कहिए। कहिए क्या बात है
1: जी? वो घनश्याम जी का निवास।
0: ठीक है बोलिए।
1: उनसे मिलना है।
0: अपॉइंटमेंट लिया है?
1: नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया।
0: फिर मुश्किल है, किसी और रोज आना।
1: लेकिन काम बहुत जरूरी था।
0: बिना जरूरी काम के तो यहाँ कोई आता नहीं। घनश्याम जी इस वक्त एक उपमंत्री जी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद 2 MP उनसे मिलने के इंतजार में, और फिर वह दूसरी यूएन के सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं।
1: कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा।
0: आपका नाम?
1: HP शर्मा।
0: ठीक है, बाहर लान पे बैठ जाइए, मौका मिला तो बुला लूंगा।
1: थैंक यू। सुनिए, यहाँ एक गिलास पानी मिलेगा?
0: इधर पीछे नल है।
1: थैंक यू।
0: मिस्टर शर्मा अंदर आइए।
1: थैंक यू। नमस्कार घनश्याम जी।
4: आइए रतनलाल जी, कहिए।
1: जी मैं HP शर्मा।
4: हाँ, काम बताइए।
1: घनश्याम जी बहुत अनर्थ हुआ है मेरे।
4: वही तो पूछ रहा हूँ
1: जी। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं 17 जून को सुबह 10:29 पर, जब मैं दफ्तर में।
4: साल में कितनी बार होती है ऐसी ट्रांसफर?
1: 25 साल में पहली बार, पूरे 25 साल बाद।
4: तो फिर अनर्थ कैसा?
1: लेकिन जब इतने साल नहीं किया तो अब क्यों?
4: भाई वो तो सरकार की मर्जी है।
1: लेकिन हमारी मर्जी भी तो उन्हें पूछनी चाहिए थी, अगर आप चाहें तो।
4: देखो रतनलाल
1: जी, HP शर्मा हूँ। HP शर्मा, देखिए 15 साल पहले आपकी पोस्टिंग मेरे ही डिपार्टमेंट।
4: ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा।
1: लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मैं लेकर नहीं लाया हूँ
4: जी। बड़े अजीब आदमी है आप भी, रिप्रेजेंटेशन साथ तक नहीं लाए?
1: मैंने सोचा आपसे जबानी।
4: अरे साहब, इतनी बड़ी यूनियन का पूरा बोझ है मेरे कंधों पर, जरा सोचिए जुबानी में क्या क्या याद रख सकता हूँ।
1: मैं अभी लिख लाता हूँ।
4: उधर बाहर बाबू को दे दीजिए। जी सुनती हो?
1: नहीं नहीं, पानी वानी का कष्ट न करें मैं।
4: ओहो, हमारी यूनिफॉर्म भिजवा दो, दफ्तर को देर हो रही है।
5: जिस दौड़ धूप में 17, 18 और 19 जून गुजरे, उसी दौड़ धूप में 20 जून भी गुजर गई, लेकिन शर्मा जी को अपनी समस्या का अभी तक कोई हल नजर नहीं आया। दिन भर शर्मा जी इस दफ्तर से उस दफ्तर की खाक छानते रहे। उषा शर्मा राकेश का हाथ पकड़ पकड़ कर शादी के लिए मनाती रही, शादी न हुई तो अपनी जान दे देने की धमकी देती रही। उधर कृष्ण कुमार सिगरेट पे सिगरेट फूंक सारी दुनिया फूंक डालने की तरकीबें सोचता रहा। मिसेस शर्मा हर तरह से मिस्टर शर्मा को यकीन दिलाने लगी कि ये मामला अब इंसान के बस से बाहर हो चुका है, इसे अब या तो सिर्फ भगवान या भगवान का कोई पहुंचा हुआ भगत ही हल कर सकता है, यानी नक्षत्र बाबा को बुलवाकर यज्ञ करवाया जाए। विनय हर शाम मिस्टर शर्मा को अपने दोस्त के डैडी से मिलने के लिए तैयार करता रहा।
6: आइए आइए मिस्टर शर्मा, मैं तो कई दिनों से आपके आने की राह देख रहा था। वो विनय ने बताया था मुझे कि
1: आना तो था, बस
6: ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे आजकल आपके मिनिस्टर कौन है?
1: जी वो मिनिस्टर तो, लेकिन ऑर्डर्स तो किसी अफसर ने।
6: नो नो नो, मैं ये अफसरों अफसरों को मुंह बिल्कुल नहीं लगाता। यू नो आई कीप ओनली टॉप कॉन्टेक्ट्स।
1: जी
6: आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे जरा तमाम डिटेल्स लिखकर दे दीजिएगा, मैं आज ही आदमी काम पर लगाता हूँ। यू नो अंग्रेजों का जमाना इस लिहाज से बहुत अच्छा था, रिश्वत देकर सब काम हो जाते थे। लेकिन अब आजकल तो ये सब चलता नहीं है, बस कॉन्टेक्ट की बात है।
1: जी
6: कॉन्टेक्ट मैं करूंगा, आप सिर्फ डिटेल्स दे दीजिएगा। बाकी जो हमारे आदमी इधर उधर जाएंगे उनके खर्चे वगैरह के लिए, वो आप ऐसा कीजिए कि अभी कोई 5,000 रुपए छोड़ जाइए, बाकी खर्चा मैं कर लूंगा, बाद में आता रहेगा।
1: 5,000?
6: हाँ बस मेरा ख्याल है कि इतना ही खर्चा और आएगा।
1: वो तो
6: क्या किया जाए,
1: वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना
6: पैसा। अरे शर्मा जी ये कोई खर्चा थोड़े ही है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। इस सीट पर रहेंगे तो कई 5,000 आ जाएंगे।
1: ना ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है ये।
6: तो फिर ट्रांसफर से परेशान क्यों है?
1: मुझे मैं अपने घर से बेघर हो जाना नहीं चाहता। देखिए ना मेरा सारा घर बर्बाद हो रहा है, सारा परिवार बिखर जाएगा।
6: अम्बक ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे आपकी मर्जी है। बात यह है शर्मा जी कि मेरा बिजनेस ही पब्लिक रिलेशंस का है। आपका ये काम 1,500 में हो सकता होता तो ना मांगता, लेकिन खर्चा तो 10,000 हो सकता है। अब इतना पैसा मैं भी कहां से, आप भी सोचिए।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस में होता तो इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 20,000 भी खर्च कर डालता, लेकिन क्या करूं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं कि 5,000 खर्च कर सकूं।
6: ओह आई सी, अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके लिए ठंडा मंगवाऊं?
1: नहीं नहीं बस शुक्रिया, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा।
6: आपका अपना ही घर है, वैसे कभी कोई काम हो तो बिना झिझक चले आइएगा। कॉन्टेक्ट मांगने में मुझसे बेहतर आपको कोई ना मिलेगा।
1: नमस्कार।
6: नमस्कार।
7: नक्षत्र बाबा कह रहे थे बड़ा ही अच्छा मुहूर्त निकला है यज्ञ का।
1: यज्ञ तो ठीक है पर पीछे ये हलवाई वगैरह।
7: 201 ब्राह्मणों का भोज करवाना है यज्ञ के बाद।
1: 201 ब्राह्मणों का?
7: हलवा पूरी समेत कुल 7 पकवान पकेंगे। वो तो कह रहे थे वनस्पति में बनवा लो, पर मेरा मन नहीं माना, देवताओं का यज्ञ है, यहाँ कंजूसी कैसी। मैंने देसी घी के भी कनस्तर मंगवा लिए।
1: मगर इतना पैसा
7: तो कौन सा अभी दे देना है, जब तनख्वाह आएगी हिसाब चुका देंगे।
8: पिताजी कोई आपसे मिलने आए?
9: अरे भाई जिजमान आओ आओ, पूर्ण आहुति का समय हो गया है।
1: जो भी हो से बैठाओ, मैं यज्ञ करवा दूँ।
7: नक्षत्र बाबा मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप भी यज्ञ में कोई कमी ना छोड़ें, ये ग्रह तो किसी तरह टलना ही चाहिए।
9: कैसी बातें करती हो देवी, नक्षत्र बाबा के यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाते।
7: बाबा ग्रह टल जाएंगे ना।
9: हाँ भाई, अन्य महात्मा संत ग्रहों से प्रार्थना कर अपने जिजमानों के काम निकलवाते हैं, लेकिन नक्षत्र बाबा अपने योग बल से ग्रहों के ऑर्बिट बदल डालते हैं।
10: ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब समझती है ना देवी?
9: मैं समझता हूँ महाराज।
10: तो ये भी समझ ले हर प्रसाद की तेरी जगह आने वाले दुष्ट के नक्षत्र बहुत बलवान हो रहे थे, हमने अभी अभी अपनी तपस्या के योग बल से देखा।
1: सच बाबा?
10: हाँ, देवी को बताया था हमने कि कर 1.5 तोले सोने का दान।
1: 1.5 तोला सोना?
10: देवी के दान करते ही अपने यज्ञ बल से हमने दुष्ट के ग्रहों के ऑर्बिट ऊपर नीचे कर डाले।
1: राजवंती 1.5 तोला सोने का दान?
7: ये वक्त क्या सोने का मुंह देखने का है। बाबा अब तो ट्रांसफर रुक जाएगी ना?
10: अवश्य रुक जाएगा, अवश्य रुक जाएगा।
1: सच कह रहे हैं आप?
10: अरे ग्रहों के ऑर्बिट बदलते ही वो दुष्ट अपनी बुद्धि खो बैठेगा, फिर रास्ता खो बैठेगा, और फिर भी अगर उसने इधर आने की हिम्मत की तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोलो, जब चार्ज लेने वाला ही नहीं आएगा तो चार्ज देने वाला कहाँ जाएगा।
1: धन्य हो बाबा, धन्य हो।
11: माजी माजी माजी,
12: क्या बात है,
7: ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो?
11: माँ जी, पूरे 200 ब्राह्मण तो जीन चुके हैं, परंतु 201वां ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और मुहूर्त निकलता जा रहा है।
7: हाय भगवान, ये कैसा अपशकुन।

0: अब क्या होगा?
1: मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?
2: पिताजी, ये आपसे मिलने आए थे।
3: ओह, आप क्या
1: 100% ब्राह्मण चंद्रकांत यादव?
0: तेरी महिमा अपरंपार है भगवान, क्या समय पर ब्राह्मण भेजा है। जाओ बेटा, ले जाओ इन्हें और आदर सम्मान के साथ भोज करवाओ।
2: आइए चंद्रकांत जी।
0: देखा आपने, आज का दिन कितना शुभ है, हर कार्य अपने आप संपन्न हो रहा है। एक ब्राह्मण कम हो गया तो मानो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर मेरे घर में आए।
3: चंद्रकांत, चंद्रकांत यानी सीके यादव? नहीं, ये चंद्रकांत
0: क्या ब्राह्मण नहीं?
3: सीके यादव है
0: तो क्या ब्राह्मण?
3: हमारे लिए भगवान नहीं, यमदूत है। यमदूत?
0: क्या कह रहे हैं आप?
3: ये हमारे लिए यमदूत है, ये वही है, वही है।
1: नक्षत्र बाबा तो कहते थे कि छिन्न भिन्न हो जाएगा, रास्ता भूल जाएगा। अरे ये दुष्ट तो साक्षात घर में आधम का और भोजन भी खा गया।
0: ये क्या कह रहे हैं आप?
1: यही है वो चंद्रकांत यादव, यानी सी के यादव, जिसने कल मुझसे चार्ज ले मुझे यहाँ से रिलीव करना है। बस लाजवंती, अब राम नाम ही बोलो, अंतकाल आ गया।
0: राम, कैसा अंधेर है। अरे कोई नक्षत्र बाबा को तो बुला के लाओ जल्दी।
3: नक्षत्र बाबा तो जीम कर कभी के जा भी चुके।
0: आइए आइए, अय्या का भोजन दक्षिणा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया।
2: अब रोने धोने से क्या फायदा माँ?
1: बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा। है? ये क्या हुआ, आप लोग इस कदर उदास क्यों हैं?
0: अब हम तो चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं।
1: लेकिन हुआ क्या है मिस्टर शर्मा?
2: खा पी कर कितना भोला बनता, पहले मालूम हो जाता कि तुम कौन हो तो हलवे पूरी के बजाय किसी और तरह से तुम्हारी खातिर करते।
1: लेकिन मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है?
2: तो सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो?
1: आप तो जानते हैं मिस्टर शर्मा, मैं इंदौर से आया हूँ और कल मुझे आपसे चार्ज लेना है।
0: तुम सचमुच आ गए हो?
1: क्या मुझे नहीं आना चाहिए था?
4: कहाँ के रहने वाले हो?
1: इंदौर का।
4: और तुम्हारे पिताजी?
1: इंदौर के।
4: और तुम्हारे दादा?
1: दादा, पड़दादा और लकड़ दादा सभी इंदौर के।
4: फिर भी तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए?
1: लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, जहाँ भी ट्रांसफर होगा जाऊँगा।
4: इसलिए कि तुम लोगों का अपनी धरती अपनी सभ्यता से कोई लगाव नहीं है। अगर जरा भी मान सम्मान वाले होते तो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से पहले अपने प्राण दे देते।
0: और यमदूत की तरह यहाँ के हमारा घर बार ना उजाड़ देते।
1: लेकिन मैंने किसका घर बार उजाड़ा है?
0: किसका नहीं उजाड़ा है पिताजी, अब क्या होगा?
1: जाने का समय आ गया है बेटा।
2: सब तरकीबें नाकाम हुई, कुछ भी न वफा ने काम किया।
0: जाने से पहले मेरे हाथ तो पीले करते जाइए, आप ना हुए तो कन्यादान कैसे होगा पिताजी?
2: फिक्र ना करो उषा, बहन दान का कर्तव्य मैं निभा दूंगा।
1: बट पिताजी, आई कांट गो टू आगा विद यू।
4: ठीक ही कहते हो बेटा, इस संसार में कौन किसके साथ गया है।
1: दिल्ली से आगरा 100-125 मील का फासला भी नहीं शर्मा जी, इस मामूली से ट्रांसफर से आप इस कदर परेशान हैं?
4: सारा परिवार तबाह हो गया है, घर से बेघर हो गया हूँ और तुम इसे मामूली सा ट्रांसफर कहते हो? तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अपनी सभ्यता, अपनी धरती, अपने घर से कोई लगाव नहीं। तुम लोग अपनी धरती माँ से अपना संबंध तोड़ चुके हो।
1: शायद आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आज चौथाई इंच की जड़ों वाली दूब बनकर धरती से चिपके रहने का युग नहीं, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में रहने के लिए जब हमने सूती कपड़े छोड़ प्लास्टिक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं शर्मा जी, तो अपना जीवन प्लास्टिक की घास होना चाहिए, यहां उखड़े वहां लगे, सदा हरी भरी।
3: प्लास्टिक की घास कहां मिलती है पिताजी?
4: चंद्रकांत जैसे बेवकूफों के सर पर।
5: 22 जून, साल का सबसे लंबा दिन चढ़ चुका था। सुबह के 6 बजे थे। लोधी रोड के क्वार्टर नंबर F2 15/614 के सामने एक 3-व्हीलर खड़ा था, जिसमें मुख्तसर सा सामान रखा जा रहा था। HP शर्मा सिर झुकाए बाहर निकले। सारा परिवार गुमसुम उन्हें नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना होते हुए देख रहा था। लाचार बेबस शर्मा जी ने बड़ी हसरत से क्वार्टर पर लगी अपनी छोटी सी नेम प्लेट की तरफ देखा और 3-व्हीलर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए।

0: प्लास्टिक की घास, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: प्रोग्रेशन आपका रहा है, आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
4: जी,
3: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि उत्तम जगदीश की जोड़ी कैसे बनी थी।
5: ये भी तो एक हिस्ट्री है।
3: ये भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ से म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा शुरू होती है और मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू आती है।
5: ओ जी, ऐसा है कि आपने एक फिल्म, आपको याद होगी, शिरडी के साईं बाबा।
3: जी हाँ,
5: उसमें दो गाने जो हैं आज भी चल रहे हैं। ये दो गाने जो हैं, साईं बाबा।

0: उनका शायद जो पांडुरंग दीक्षित थे जो उनका नाम है,
1: जी जी
0: लेकिन गाने ये दोनों जगदीश खन्ना के हैं और ये दोनों गाने मेरे अरेंज किए हुए हैं।
1: अरे क्या बात है,
0: क्योंकि जगदीश आया था मेरे पास दो गाने अरेंज करने आए, मनोज साहब फिल्म बना रहे हैं दो गाने मुझे अरेंज में, जैसे दूसरे मुझे हट रहे थे ये भी आ गया, तो मैंने इनके दो गाने अरेंज किए, दो गाने हिट हो गए, वो ऐसे हिट हुए कि आज तक चल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये फिल्म उनकी हिट हो गई, मनोज साहब की, मनोज साहब की क्रांति हिट हो गई थी बहुत बड़ी, क्रांति उनकी बहुत चली, क्रांति के बाद ही वांटेड टू स्टार्ट न्यू फिल्म।
1: जी,
0: उस न्यू फिल्म में उनका माइंड चल गया कि छोटे भाई को हीरो बनाया जाए और अपने साले को डायरेक्टर बनाया जाए, तो उन्होंने प्लान किया कि नया म्यूजिटर लेंगे, तो म्यूजिटर कौन, जगदीश।
1: अच्छा, जगदीश तब तक क्या कर रहे थे?
0: जगदीश उनके घर में टीचर थे बच्चों के,
1: ओ
0: म्यूजिक टीचर थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो उनके साथ बैठ के वो काम करते रहते थे, जैसे ये गाने बना लिए, जैसे और गाने बना लिए।
1: जी,
0: तो मनोज जी को पता था कि अच्छा कंपोजर है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि ये दोनों गाने जगदीश के बनाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जगदीश उत्तम को बुला के ले,
1: मनोज जी ने कहा।
0: हाँ, तो जगदीश को पता नहीं चला कि क्यों बुला रहे, तो मैं आया, मैं कहा जी बाबा उत्तम मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जगदीश म्यूजिक दे रहा है, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो तुम जगदीश के साथ काम करो, मैंने कहा मैं तो कर ही रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, जगदीश खन्ना उत्तम सिंह,
1: अच्छा
0: म्यूजिक एक्टर, मैंने कहा पा पा मत बड़े भाई, मैंने कहा पा यू हैव टू गिव मी टाइम, क्यों, मैंने कहा नहीं मुझे आप टाइम दीजिए सोचने का, अच्छा ले लो, तो मैं बहुत बिजी था, मेरा काम सुबह शाम काम था मेरा, तो 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, हर चौथे दिन जगदीश आ जाए, मनोज साहब बुला रहे हैं, मैंने कहा यार देख रहे हो कैसे काम कर रहा हूँ मैं, सब काम चल रहा है, महीना बीत गया, वो महीने में कम से कम 6-7 दफा 8 दफा ये आ गया जगदीश, तो एक दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो डैडी के पास बैठा मैं, मैंने कहा डैडी ऐसी ऐसी ऑफर आई है, क्या ऑफर है, मैंने कहा ऐसे ऐसे वो पिक्चर बना रहे हैं VIP,
1: मनोज जी का बैनर VIP,
0: राज कपूर VIP मतलब
1: जी
0: इंडस्ट्री के टॉप बैनर,
1: जी
0: इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो चाह रहे हैं कि मैं म्यूजिक एक्टर बनूं लेकिन जगदीश खन्ना के साथ बनूं, जगदीश खन्ना ट्यून बनाएगा और मैं अरेंजमेंट करूंगा, मैंने ये बात मनोज, मैंने कहा मनोज जी मैं तो अरेंजर हूँ आप मुझे क्यों म्यूजिक एक्टर बना रहे हैं, बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी म्यूजिक एक्टर हैं, लक्ष्मी जी ट्यून बनाते हैं और प्यारेलाल जी अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे ही तुम जगदीश के साथ जगदीश का ट्यून बनाएगा और तुम अपना जो काम करते हो वो करो, लेकिन तुम दोनों का नाम आए,

0: तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए आपने बोला क्यों नहीं? बोलते नहीं, ऐसा कभी मौका ही नहीं आया, आज मौका आया तो बोल रहा हूँ तुमको कि मैं चाहता हूँ तो कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो,
1: ये पिताजी की बात है।
0: पिताजी की बात। तो मैं कहा हाँ बोलता हूँ, हाँ बोल दो। फिर मैं गया मनोज जी के पास 1.5 महीने के बाद,
1: जी,
0: 1.5 महीने के बाद जाके मैंने बोला कि मैं करता हूँ। तो पहला गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ विंटर बाबू का, तू रख ले नाम, रख ले नाम, मुकद्दर सिकंदर होता है हाँ,
1: हाँ
0: वक्त सिकंदर नहीं होता, ऐसा कुछ गाना है राधा
1: हाँ
0: जी का और महेंद्र कपूर का।
1: हाँ
0: उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शायद 100 के ऊपर म्यूजिशियन था और 30-40 कोरस था।
1: ओहो,
0: हमने सुबह 9 बजे शुरू किया और 5 बजे तक गाना खत्म हुआ। लता जी, महेंद्र जी चले गए और हम लोग कहा रात को 2 बजे वो गाना खत्म हुआ।
1: क्या बात है।
0: हम कुछ भी रख ले नाम उसका, इंसान का मुकद्दर होता है, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, हाँ वक्त सिकंदर होता है। ये गाना

0: इस फिल्म के दो तीन गाने बड़े हिट हुए थे,
1: बड़े हिट हुए,
0: जिसमें से कब तलक शम्मा जली,
1: तलक शम्मा जली, ये पूरी कंपोजिशन
0: थोड़ा हमारे लिए गाइए ना सर ये गाना।
1: तो हमने पेंटर बाबू शुरू की, तो पहला गाना
0: वो किया,
1: वो रिकॉर्ड किया के वक्त सिकंदर होता है
0: जी।
1: उसके बाद कतिल सफाई जी का गाना लेके आई है मनोज साहब, और मुझे जगदीश ने गाना सुनाया
0: जी।
1: मैं और ये है गजल
0: बिल्कुल,
1: और इसको
0: गाने की शक्ल
1: गीत में गाना देना।

0: कितना मुश्किल है।
1: क्या बात है, मतलब गजल को लेके आपने उस वहां ले गए और फिर पूरा वो एक ब्रेक आता है, सारा
0: ब्रेक आता है, हाँ, है
1: फिर आता है,
0: ब्रेक आता है फिर आता है, और फिर इसके अंतरे, और फिर इसमें, और बहुत बड़ा गाना था, चार अंतरों का गाना था।
1: जी जी
0: मैंने कहा मनोज साहब चार शेर है, एक शेर कम करें ना, तुम
1: कुछ हटेगा
0: लाजवाब शेर है,
1: जी,
0: इनको कम नहीं कर सकते,
1: और अदायगी भी कमाल थी,
0: कमाल
1: महेंद्र
0: थी।
1: कपूर,
0: और फिर
1: लता
0: देखिए
1: जी,
0: फिर अपना हमने पूरे चार के चार अंतरे रखे,
1: जी
0: चारों के चारों म्यूजिक देखिए कितना डिफरेंट है,
1: हाँ
0: कहीं क्लैप बज रही है, कहीं चुटकियां बज रही है, कहीं घुंघरू बज रहा है, कहीं सारंगी बज रही है, कहीं वायलिन बज रहे हैं, कहीं लता जी का आलाप है।
1: हाँ
0: विद म्यूजिशियन वन टेक है ये गाना,
1: क्या बात है,
0: 6 साढ़े 6 7 मिनट का गाना है,
1: जी जी जी
0: और आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत म्यूजिशियन है इसमें, तो
1: हाँ
0: खाली मेरे कहने से नहीं, आप गाना सुनो आपको लगेगा कि यस म्यूजिशियन बहुत है।
1: जी जी जी

0: यहां से एक संगीतकार की जर्नी शुरू हुई।
1: बिल्कुल, और ये तय कैसे हुआ कि नाम जगदीश उत्तम होगा या उत्तम जगदीश होगा?
0: वो उन्होंने कर दिया अपने आप,
1: मनोज जी ने कर दिया उत्तम जगदीश,
0: उत्तम सिंह जगदीश करना, बाद में उत्तम जगदीश हो गया वो।
1: अच्छा,
0: शॉर्ट। अच्छा। बहुत हलचल मच गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये गाना बाहर गया है कब तक शम्मा जली
1: जी,
0: तब कोई बहुत बड़ी डांसर थी उस टाइम, उन्होंने बोला क्या गाना है, बड़े मिजर्टर ही होते हैं।
1: ओहो,
0: उनको लगा कि ये शायद किसी और बड़े मिजर्टर या एलपी का गाना या किसी और का गाना।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने कहा ये नए मिजर्टर है, ऐसा गाना नए मिजर्टर, मिजर्टर नहीं थे लेकिन पीछे अरेंजर तो पुराना था ना
1: जी,
0: अरेंजर को तो सालों साल बीत गए थे अरेंजमेंट करते हुए। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बात फैलाई गई।
1: क्या?
0: हमारे लिए फैलाई गई ये बात कि कंपोजर तो बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं।
1: ओ, मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़चन पैदा करनी है।
0: महंगे बहुत है, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह शुरू होती है, रात को 2 बजे खत्म होती है।
1: जी जी,
0: महंगे बहुत है। मेरे को तो इन चीजों का कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ा, किसी ने महंगा बोला किसी ने कुछ बोला, हम अपना काम करते चले गए और आज भी काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मनोज जी वॉज वेरी हैप्पी विद म्यूजिक, और म्यूजिक बहुत हिट हुआ था इसका।
1: इसका एक और गाना मैं याद करना चाहता हूँ, जब याद की बदली छाती,
0: जब याद की बदली छाती
1: तो आंख मेरी भर आती है।
0: तो मुझे उन्होंने गाना सुनाया जब याद की बदली छाती है, इतना का वाह वाह वाह क्या बात है, क्योंकि उन दिनों में उनके गाने फिल्मों में एक सैड गाना होते ही था, और वो बरसात का गाना सैड गाना। तो जब जगदीश ने सुनाया मुझे गाना, मैं कहा जगी बहुत अच्छा तुम्हारा कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऐसी थी, जब याद की

0: इतने मुखड़ा है
1: जी,
0: बाकी अंतरे हैं, मुखड़ा इतना ही है
1: बिल्कुल।
0: और इसमें वायलिन सोलो आप सुनेंगे वो भी मेरी बजाई हुई है,
1: बहुत शानदार, एकदम गाढ़ा वायलिन,
0: गाढ़ा वायलिन। और इस गाने को इतना अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया था, तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को ये गाना सुनाएं।
1: जरूर, बिल्कुल सुनते हैं।

0: एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है उत्तम जगदीश की जोड़ी की, वो है रविंद्र पीपट की फिल्म वारिस।
1: वारिस, यस, ये 1986 की फिल्म है।
0: जी जी
1: 84 में ये फिल्म मुझे क्यों मिली थी, क्योंकि इन लोगों की, इस ग्रुप की, पीपट के ग्रुप की एक फिल्म आई थी चंद परदेसी पंजाबी।
0: हाँ,
1: सुपर, पंजाब की बहुत बड़ी
0: सुपर हिट फिल्म थी,
1: जैसे नानक नाम जहाज,
0: जी,
1: चंद परदेसी, ये उस कैटेगरी की। उसका काम सारा अरेंजमेंट भी मैंने किया था, सुरेंद्र कोहली का म्यूजिक था और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था।
0: अच्छा,
1: उसमें बकायदा आपको नाम मिलेगा उत्तम सिंह
0: जी जी
1: बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो वहां से वो ग्रुप जो है वो मेरे पहचान में आ गया और वो मुझे पसंद करने लग पड़ा
0: जी।
1: तो उन्होंने वारिस शुरू की, तो वारिस के लिए मेरे पास उन्होंने आए थे।
0: और ये पूरी पंजाबी पृष्ठभूमि की,
1: पूरी पंजाबी, हाँ,
0: स्मिता पाटिल और राजबब्बर,
1: राजबब्बर की फिल्म थी वो, और उसके गाने आज भी चल रहे हैं।
0: इसमें आपने एक बड़ा कमाल किया था, एक व्यक्ति को गायक बना दिया था,
1: मनमोहन सिंह
0: जी, जो कि कैमरामैन थे।
1: कैमरामैन थे, यस,
0: ये बताइए।
1: कैमरामैन थे, क्या हुआ कि ये गाना जो है ना, दीदी का, लता जी का गाना
0: जी,
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी, कितना ऊपर है और कितनी ईज लग रहा है।
0: जी जी जी जी,
1: क्या लोग थे,
0: क्या बात है।
1: तो ये मैं गाना सुना रहा था, ये ऐसा था कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ कि हम लोग कुछ बैठ के काम कर रहे थे, दीदी का मैसेज आया
0: जी, लता
1: कल, हाँ, कल सुबह स्टूडियो खाली है, मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, तुम चाहो तो गाना कर सकते हो। क्योंकि मैं इस गाने के लिए एक महीने से उनके पीछे पड़ा हुआ था। सामने से मैसेज आया कि गाना कर लो, तो गाना सिर्फ मुखड़ा बना था बस,
0: सिर्फ इतना, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी।
1: फिर ये उनको अपना बुलाया, अपना वर्मा मलिक जी को
0: जी,
1: ताकि आदमी लेके, फोन तो हुआ नहीं करते, फोन तो मोबाइल थे नहीं, बुलाया उनको, बैठे, उन्होंने गाना बनाया।
2: अभी आप विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचल से बोल रहे हैं। दिन के 4:30 में आए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: लागू हो रही है, और वो है जिको बेहतर ढंग आपा है जिको इन्हें चला सका और समझ सका। यूँ काई काई है कि ज्ञान पहलो है कि ड्रोन की रेंज है जिको दूसरा जिका भी उपकरण है बीरी तुलना में इरी रेंज है जिको ज़्यादा है। दूसरो किसाना ने है जिको कम टाइम में और कम मेहनत लागी, उर्वरक और कीटनाशक को छिड़काव में भी है जिको कम मेहनत लागी और खर्चों भी है जिको कम आए। क्योंकि देखो कि भाया खर्चों है जिको कई चीज़ लावा भी में इतो खर्चों को नहीं लागे, पर ज्ञान भी छिड़काव के मायने है बिन लावा बयान भी में खर्च घणो लाग जाओ दूसरो खर्चो। तो इस वास्ते है जिको ड्रोन है जिको कि कम टाइम लागी, मेहनत कम और खर्चों भी कम आए। तीसरो इर उपयोग है जिको पौधा के विकास हो, कीटा के खरपतवार हो और अन्य खतरा की निगरानी मायने भी आप उपयोग में ले सका। चौथो उत्पादन को है जिको पूर्व अनुमान लगाउन में भी है जिको वो आपने बता देवे। इर मायने का ये कि देखो आप एक जगह बैठ रहे ड्रोन चला रहे आप है जिको पूरा खेत की निगरानी रख सका। नई नई तकनीक आवे भी है जिको कि आप के कृषि के क्षेत्र में घनी सुधार हो रहा है और उच्च उत्पादकता है तो आपा ने जिको नई नई तकनीकी अपनावनी ही पड़ी। वो काम क्या करिया करे, आमतौर पर ड्रोन है जिको एक नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस और कई सेंसर लागेड़ा हुए, इन मायने उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा हुए, प्रोग्राम करण योग्य नियंत्रक हुए और स्वायत्त ड्रोन वास्ते उपकरण शामिल रिया करे। अधिकांश किसान है जिको वर्तमान के मायने है जिको कृषि प्रबंधन के वास्ते है जिको परिचारक और मार्गदर्शक के रूप में है जिको इरो उपयोग क्रिया करे। इर मायने कई चरण है जहाँ क्षेत्र का विश्लेषण वो है जिको परीक्षण करियो जावे। इर मायने के अपांग है जिको खेत के मायने कटू कट तक का अपांग है जिको निंगे राखनी है। पहला चरण मायने एक सीमा स्थापित कर देवे कि भाई इतनी लेर इतनी दूर तक आपने इन्हें मायने इन्हें अपांग जिको ड्रोन है बिने घुमावनो है, और अंत के मायने इमें तकनीकी जीपीएस जानकारी है जिको ड्रोन के मायने विगेशन सिस्टम अपलोड भी कर सका। इर अलावा है जिको स्वायत्त ड्रोन को उपयोग करना, इर मायने जिको मानव रहित हवाई वाहन है और एक स्वतंत्र है वो है जिको आवश्यक डेटा एकत्रित कर और सब पहले आपांकन है जिको पहुंचा देवे। और आपने ध्यान भी पड़ जावे कि भाई आपने है जिको के आप खेत के मायने कट है जिको बडवार कम है, कट कम है, कट है जिको डाव डांडा घुसण की आपके है जिको संभावना है, तो वो काई करे कि आपके चारू मेर आपने एक जगह बैठा बैठा भी ड्रोन ने आप घुमार और आप है जिको के देख सका। नहीं तो कई हुए आप चारू मेर खेत के फेरो लगावा जितने टाइम घणो लागे, जितने अन्नू देख रहा हुआ जितने दूजोड़ा का नहीं डाव डांडा बढ़ जावे, तो इर वास्ते ड्रोन है जिको आप एक जगह बैठ चारू मेर खेत की है जिको वो निगरानी राख लेवे। और देखो कि आप एक जगह बैठा पण वो है जिको ड्रोन है जिको चारू मेर है जिको निगरानी राखे भी। हूँ देखो कि आप है जिको कि आप जिकी मेहनत है बा बच जावे, और आप है जिको के घरे बैठा बैठा ढाणी में बैठा बैठा ही निंग राख ला कि भाई फलानी ठोड़ू है जिको ढाव डांडा भड़े है, तो बट आप जार पर सीधा बट ही जार और बट आप है जिको भी ने ढाव डांडा आवे बटू रोक दा। इर अलावा है जिको कि आप खेत के मायने कट है जिको के फसल कमजोर है, कट है जिको कीट लग गया है, तो वो है जिको कैमरा के मायने फोटो खींच लेवे वीडियो बना लेवे, तो भी आपने ध्यान पड़ जावे कि भाई ई एरिया के मायने है जिको आपके बडवार है जिको कम है, तो आप सीधा पहली बट्टी ने जा रहे थोड़ो को ध्यान विशेष रखा। यूँ है जिको के लाभ घने है कि ज्ञान आपके है जिको फसल स्वास्थ्य की निगरानी को ठा पड़ जावे, कीटनाशकों को छिड़काव हो जावे, बीजा को अंकुरण कट सही हुई और कट कोनी हुई बीरो भी ध्यान पड़ जावे, और सब बढ़िया बात है कि इनमें मजूरी कम लागे और खर्चो भी कम लागे। क्योंकि मारे किसान भाई है जिको दिन रात मेहनत करे जाने कटी ई आपके है जिको नगद जी आवे और रुपया है जिको थांठा है कि कितना दोरा कमाई जे, तो ए रुपया है जिको आप यूं काम करा तो आपके रुपया की बचत हुए। आप बात चीता और ही करा सुना काम री और बात।
1: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
2: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
1: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: तो कामरी बात आप कर रहे हैं, कामरी बात और भी सुनी। और अब आप ज्ञान बात कर रहे हैं ड्रोन की। इसके अलावा भी आपा ने जिको खेती के मायने है वो तो होगी नई तकनीकी। और ज्ञान पुराने आपा का जिका वडेरा करता है वर्मी कंपोस्ट, यानी कि देसी खाद है जिको बिना सड़ार गड़ार है जिको खेत के मायने डालता। बिसू देखो कि आपा के खेत की उपज है वा भी बढ़िया होती, खेत की मिट्टी है वा भी सही रहती, और जिको धान है वो निरोग हो। तो पर अबार है जिको के किसान भाई है जिको के देखा देखी में घना चाले, और बे है जिको पड़ोसी छिड़काव करियो बयान को छिड़काव खुद ही करन डूब जाओ। पर आपा ने जिको आ ध्यान रखना चाहिए कि आपा के खेत के मायने है जिको कि बे पोषक तत्व की कमी है या कोनी। बा आपा ने पहली मिट्टी पानी की जांच कराए ला तो भी सुखाई है कि आपा को जिको फिजूल खर्ची है बा रुक जाए और आपा के बचत हो जाए। तो इर सारू आपा ने वो ध्यान रखना चाहिए कि भाई पड़ोसी के देखा देखी नहीं करनो, आपा के खेत के मायने किसा पोषक तत्व कम है बीर अनुसार आपा ने जिको खाद बीज नेगणो छे। और अपन इर अलावा भी जान आप बात करी कि भाई आपा का बड्डे रहे जिको देसी जैविक जिकान कहे बे आपा के प्रयोग में लेता, तो अपन ने भी है जिको के वर्मी कंपोस्ट है जिको काम में लेनी चाहिए। अपा अगर जे देसी खाद खेत के मायने नेकदा नहीं तो खेत है जिको 2-3 साल तक नहीं हो रहे। पर अपा जी रासायनिक नेका तो वो खाली भी एक फसल वास्ते ही वो सही रिया करे, बाकी है जिको धीरे धीरे अपा के जिकी मिट्टी है भी उपजाऊ क्षमता कम कर देवे, और जिको धान हुए वो भी कमजोर हुए निरोगो कौन रहे वो आए जिको अपा के नुकसान ही करी, और जिको चारो है बिको वे आपा का ढाव डांडा खाई और वे दूध के रूप में आपा का नहीं आए। कुल मिलार जो भी चीज आपा है जिको खेत के मायने रासायनिक छिड़काव पैदा कर बा घूम फिर आपा का नहीं आनी है। तो इस वास्ते आपा ने है जिको आपा के वर्मी कंपोस्ट है जिको काम में लेनो चाहिए, जिका आपा देसी केंचुआ खेत के मायने है जिको पहली घने ही आवता, क्योंकि आपा है जिको बड़द आपा है जिको चलावता हल बोआवता। अब है जिको ट्रैक्टर हो गया तो भी ट्रैक्टर हुए जिको आधा तो बे है जिको केंचुआ मर जावे। रिया किया है जिको का आपा रासायनिक छिड़काव करा भी रह जावे। तो आपा ने जिको देसी केंचुआ खेत के मायने है जिको आपा के भेड़ा कर, और या पचे आपा ने जिको देसी केंचुआ की जिको खाद है जिकी आपा वर्मी कंपोस्ट के वहाँ बिना आपा ने बनार और आपा ने है जिको खेत के मायने राड़नी छे। और आज है देखो कि नवरात्र है तो आपा क्यों ना माता जी रो भजन सुना। किसान भाई उड़ीक राखे कि भाई राकेश भाई आया है, कई लाया है तो थांग सब वास्ते ले रहे हूँ माता जी रो ओ भजन।
5: ओ जागी जागी जागी रे

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सीपी ग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम,
2: ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। सीपी ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है
3: और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीपी ग्राम्स, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉगिन करें सीपी ग्राम्स।
4: तो भैया ने माता जी रो भजन जरूर दाय आयो। और देखो भैया, मने तो आज गांव गांव तरह जाऊँ ने टाइम मिलियो को नहीं, तो मारा कोई भई गया है ब्यांक बे जी को बंतल करी बात थाए तो करूँ पूगती। लो सुनो,
5: आज एक किसान भाई मिलिया जो कहूँ अतः करा। राम राम सा।
6: राम राम सा। राम राम सा।
5: कई नाम आप रो?
6: मारो नाम छेलू सिंह।
5: छेलू सिंह जी, गाँव
6: जा कहीं
5: जा खाणी गाँव रह रहे उन्नाला हो तो कहीं डाणिया में रहो? गाँव में
6: डाणिया में।
5: डाणिया में रहो? ढाणिया में पहले ही रहता हाक अब
6: शुरुआत में गांव में रहता, पर बस ढाणिया गांव में ठंडी हो जाए।

0: पोइ गया डाणियाम।
1: पत डाणियाम गया पा। हाँ। कोई फायदो डाणी में रहने रो?
0: घणो ही फायदो। धन पशु और हर तरह खेती हूँ
1: भाई। धन पशु हो रहे वे
0: हो रहे आदमी भी हो रहे किसान कोई भी हो जो भाई रे बुरी मात्र मुसर को नहीं हो रहा
1: खुली हवा
0: खुली
1: खेती कैडी वे
0: खेती तो आप बिरा नहीं वे ठीक ही वे
1: बरसात हूँ
0: बरसात
1: तो हमके कहीं बरसात हुई
0: बरसात थोड़ी बहुत हुई है बार लार सी वही हूँ तो खेतियाँ कौन करे हो अब
1: भाई थोड़ी हुई
0: आगत
1: थोड़ी बरसात हुई कोई फायदा हुई हो?
0: फायदे तो ठीक है एक भर्ती आ गई जटे बाजारी पे टैंकर ला गया बटे 3-4 से काम अर्गी लोग ने
1: भाई तालाब में पानी आयो
0: आयो
1: तो तालाब और पानी कहीं पीऊण ने काम आवे?
0: पीऊ ने बिल्कुल
1: कितना महीना तक तालाब में पानी रहे?
0: चौकी बरसात भरी जा नाडी जाना तो 6-7 महीने तक नहीं टको नहीं है महीने 2 महीने गर्मिया मौसम जो नेरल आवी
1: तो कहीं बरसात टाइम में भरी जाए?
0: बरसात के टाइम नाड़ी तो भरी जाए टांका में भी आवे पानी
1: तालाब री भी कहीं सार संभाल रखनी पड़े?
0: जोरदार एकदम गांव पूरे ने राखनी पड़े
1: ओ की कर
0: गांव री उगी जावे अगोर री जो बुई है हिणियो है खींपड़ो है बोल्डी है जाड़का है सब बढ़ जावे
1: भाई तालाब रो जो को लंबो चौड़ो बारे रो अगोर है
0: अगोर है बीरो बया सपे भी जावे
1: बिन साफ सुथरो राखनो
0: हाँ
1: पड़े।
0: राखनी पड़े बीरी बाद में नाडी मिट्टी वे तो चंदो कर पर आबे भी गांव रो भी कडावे
1: मिट्टी भी कढ़ानी पड़े तो पानी पस तालाब में साफ आवे
0: एकदम साफ
1: एकदम से आप आवे पस जहाँ पशु और आवे जने बरसात जगह टाइम पानी भरी जावे बी टाइम में भी कोई सफाई रहे भाई
0: रेवे
1: बी टाइम आदमी रहे
0: आदमी रेवे राख देव गांव रा
1: जो को रुखाली राखे
0: रुकोड़े दा के पोटा नाग दे बारे जियो कोई टिंग टाबन बन को देन मा
1: भाई पानी है जो साफ सुथरो
0: से
1: रहे।
0: सुतरे को टैंकर भरे तो गूंट गाड़े जब घटे है कौन सा टैंकर भरत बिन मा को देन देन टायर
1: ओ
0: लाइन वहां पर लंबी लाइन बारे भरो
1: भाई टैंकर है जो बारे भरे पानी साफ रह
0: श्याप
1: जावे।
0: रेवे
1: तो चौमासेरी बरसात खेती केड़ी केड़ी वे?
0: खेती तो मैं यहाँ देखो मूंग उजे हुए मोट भी उजे हुए गंवार भी हुए तिल भी हुए और बाजरी भी हुए
1: भाई ये खेतिया हुए
0: ये खेती हुए
1: हमें जोरदार फसल किसी वे फसल?
0: अब सब बढ़िया था हमने तट यहाँ आया कि पहला बाजरी नहीं माने अभी उनसे क्या पता आजकल लोग मूंग और तिल और उनसे भवाली बाउंड हो गया
1: भाई आजकल कई नकदी फसलां जकी है
0: हाँ बस 5 ही ब्याह होते
1: वे पावन लाग गया।
0: बस
1: तो खेती रमान जहाँ देखा आपा के भाई बिरखा हुए जन खेती करो?
0: बिल्कुल
1: खेती अब देखो पहले तो छेलू सिंह जी आपा देखो ऊंटा में ऊंती हीर बलदा
0: उन्ती
1: में ऊंती हीर आजकल हमें
0: अब तो वह ट्रैक्टर हुए मशीनों
1: ट्रैक्टर हूँ खेती हुए
0: बस
1: तो ट्रैक्टर राखो घर रोई
0: हाँ है ट्रैक्टर
1: कितने एक साल हूँ
0: 15-20 साल 15-20 साल
1: 15-20 साल हूँ राखो ट्रैक्टर ही बात करा छेलू सिंह जी तो मशीनरी चाहे किसी वो जैसे देखो खास कर खेती में काम आवे तो खेती में काम तो देखो बिरका हुए हूँ आवे पर जितने पचे 8 दिन
0: आठ दिन वहाँ छोड़ दो बने बस और हम कहीं हाल हाल हमारा रंग चीजें
1: भाई
0: भाई
1: हार हम्बाल 8 दिन रखी उड़ी बत्ती
0: बताइए वही लूँ ऊपर रख दो हम सीजन दा बिरानी वाली है बाकी तो कहीं है को नहीं
1: और सीजन को नहीं
0: वहाँ 12 महीनों पाता जोड़ना पड़े जीते मानो वही लूँ ऊपर बाटा मात रख दो हाल
1: ओ
0: हमाल करो और बरसात होगी जो महीनों पहले आप गरीस दरीस करना है एकदम टका टक्कर परार पसीदा
1: भाई
0: जोड़ता है
1: बिरखाऊ पहली है जो को तैयारी करूँ
0: तैयारी
1: राखनी
0: आप ही जागनी
1: एर
0: पड़ेगी
1: 8 दिन बिना हार हम्बाल राखनी
0: देख देखभाल
1: मान
0: करनी पड़े
1: लो स्टार्ट कर कटी जानो पड़े जने कई बातों को ध्यान रखना पड़े।
0: ट्रैक्टर ने ट्रैक्टर ने स्टार्ट करा मरवाना हो तो पहले कपड़ों मारना चाहिए ऑयल पानी देखना चाहिए एर
1: कई
0: साफ
1: बार
0: सुथरा
1: सैलू सिंह जी आप देखा हाँ कि मार्ग में बहुत है जो है कि इंजन गर्म हो गयो और ट्रैक्टर पर रुक गयो और एडी मुसीबत आवे
0: देखो देखभाल करे जन तावे कौन नहीं आता भाई
1: भाई देखभाल नहीं करे जन ऐसी समस्या
0: ऐसी
1: आवे।
0: समस्या आवे देखभाल नहीं करे जन आवे अरे देखभाल करे जन आवे कौन
1: भाई पानी भी पूरा रहनो ऑयल पर बदलनी बात करा तो कितने टाइम बदली टाइम?
0: देखो 2 ढोल 500 लीटर डीजल बाल पर ऑयल चेंज कराऊं तो इंजन बढ़िया रहे
1: भाई 500 लीटर है जो को
0: डीजल
1: डीजल बाल
0: बाल
1: दियो
0: यार आप चेंज कराऊं तो इंजन बढ़िया रहे टेट सुरक्षित रहे एकदम
1: सुरक्षित रहे
0: हाँ
1: इंजन एकदम सही सलामत रहे।
0: सही सलामत रहे
1: आ तो सा जोरदार बात है। और खेती रहा जगह कई तरह रहा औजार है ट्रैक्टर लारे पास कहीं कहीं खेती में औजार चाहिए?
0: अब खेती में तो कल्टी सही जे तो यही सही जे रोई सही जे प्लाऊ भी सही जे
1: ओ
0: तोता कल्टी अवे बा भी सही जे सीड लावे हम मते बीज नाले आज का सुबह ही सही जे
1: तो ये
0: यार
1: तो घनी तरह रहा हुआ न्यू
0: घना तरह तमें जहाँ अलग अलग फैसिलिटी होगी यार होरा पोगी हो पहला तो आदमी बीज था बीज
1: भाई पहला तो जो कल्टी आउती
0: हाँ
1: कल्टी माते आदमी बैठ बीज तो
0: बैठ बीज था दू
1: एर हमें
0: हम तो मते यार बीज गाल दो और टेम दे कर बैठ जो हुजो कुदरा के
1: ओ जकी बाका शिडल
0: सीडल
1: बीज मते बीजी जे
0: मते ही खाद बीज नहीं वे तो बीज बीज नो वे तो जो भी

0: बी में पच कहीं हीर को पड़ जावे।
1: बीम देखो वो तो मैं भी चलाउन माते ड्रोर माते जाने जना तो सही पड़ गया
0: ओ
1: यार कोई नू ड्रोर वे जना 5 किलो नागनो बर 10 किलो हीर का दे
0: ओ आ भी हो जाए
1: आ भी हो जाए
0: भाई जानकारी जरूरी
1: बीम
0: पच कोई चिन्ह करी उड़ो वे
1: हुए भाई एक नम जीरे माते बादरी पानी चीजे
0: हां
1: ये थोड़ी जाडी बाद आगत में होयो आपा तो जीरे मात नहीं पानी एक नंबर में पानी चीजे बाद एक नंबर लागड़ो है अगला अलग अलग नंबर 8 नंबर ताई है
0: ओहो
1: यार मोट बना हुआ अपने तो 5 माते 6 माते 20 बा दो मूंग बना हुआ तो 7 माते 8 माते बा दो
0: गवार भी नरा नरा है जो कुछ चिन्ह है
1: चिन्ह है
0: यार नरा नरा भी बीज पड़े
1: बस
0: तो ये हिसाब वो तो सा जोरदार काम है और जो हैरा है तबिया है आधे दिन बारी हिफाजत की कर राखनी
1: आधे दिन ही है मैंने ऑयल सोप रख दो अपना बाटा मत खड़ा कर दिया रख दिया एक बात है पास सीजन आओ जगह पहला अपना ग्रीस दरीस कर पर महीनों बरसा दूं पहला या भाई हम अपना बरसा दूं जी 10 दिन है 5 दिन है तो अपना जोड़ता ही वादना पारे दिक्कत को आवे
0: भाई पहले सही सलामत रखी उड़ा वह
1: जना
0: जन मेरी पे उम्र भी ज्यादा
1: ओ बिल्कुल भाई 10 साल तो 15 साल
0: ओ भाई तो फर्क रही
1: हाल
0: सार
1: मालूम
0: संभाल रखी
1: बिल्कुल रहे
0: और जहाँ अणुता तावड़िया तपे गर्मी है तो इस टाइम रे माने जो देखो आपाने तो गर्मी लागे पशुआ नहीं लागे मशीनरी में कहीं छाया चाहिए
1: बिल्कुल सही जे छाया वेदन उम्र बढ़े सोको रे फूट रे एक बात है हर तरह कलर उड़े को नहीं अच्छा बलने का व्हीकल बहुत बढ़िया तावड़ी देखो के कोई चीज हो ना सी बे
0: ना सुबह जन थे भी ट्रैक्टर ने राखण ने कोई चिया करी उड़ी
1: हां है सब को करी उड़े बिर मा ट्रैक्टर ट्रॉली टैंकर
0: ओ ऐसी जहां है जो बिर मा राखो अब दूजा भाई जका भी खेती रा साधन राखे है बन आप काई कहना चाहो के भाई की कर सार संभाल राखनी
1: भाई हाल मालिया बढ़िया राखे हाल माल देना आगे यार खर्चो को ने होए और भी यार 5 साल तो भाई 10 साल या 10 साल तो 15 साल जाए बारे राखे आप जहां जरा बहुत पता है साहब हुई कोई उन कलर उड़ जाए या बीर मा कोई ग्रीस ग्रीस करी उड़े तो बतावड़े पल गल निकल जावे
0: और टायर माते असर पड़े
1: बिल्कुल पड़े तावड़ी नाश बे टायर
0: टायर भी खराब हो
1: खराब हो
0: भाई कई बातें है जो कोई पद्धत राखने बत्ती हाल है
1: हां हाल माल राखने बत्ती हाल है
0: तो जका भाई सुन रिया है वाने जका खेती रा औजार रखे है वाने भी है जो को सार संभाल
1: राखनी चाहिए
0: और मैं बिरखा हूं पहली है जो को और कई हावचेती राखो जके हूं बिरखा हूं तई है जो को जुताई करन लाग जाऊं
1: अब तो यहाँ राखनी पड़ी के पहला तो हमें पंपड़ मार डीजल डॉलर नेड़ो मिल जाए तो हमें तो हाथो इष्टो तो डीजल डॉलर है होल लीटर करो सब 200 करो सब 300 करो के बेड़ा घर की खेती थोड़ी करा
0: भाई तेल भी टाइम मत सही
1: जाए सही जी तेल भी
0: बात तो कई बार देखो के रिपेयरिंग मांगे हर चीज जकी है मशीनरी तैयार करनी पड़े बा भी कई बार देखा के बिरखा पहले है जो ट्रैक्टर ले ले भाई जावे मिस्त्रियां करने
1: हम थोड़ी बहुत मिस्टेक वेदन पे पहला कड़ा ले भाई सीजन दुख दे नहीं जब पहला आप कोई रिलीफ ठहरे कोई रे इंजन है गर्मी लावे तो भी रेडर सफाई करावे रेडर कोई लीक हो तो सही करावे कोई छोटो मोटो और भी काम है तो करा भाई अपना सीजन में जोड़ता ही खोटी नहीं
0: भाई जकी भी खामी है मशीनरी माने भाई कर... सीजन पहले तैयार करा लेनी
1: करानी पड़े
0: आप करना मतलब वो है
1: बिल्कुल
0: जके हूं कहीं है कि बिरखा हूं ताई
1: जोतता ही वे
0: जोतता ही वे पच जो ए औजार जका है अरे न्यारी न्यारी पच रेटा में बेवे का एक ही
1: देखो बे तो अलग अलग भाई रेट में कल्टी अलग भाई हेरो अलग भाई तवी अलग भाई अलग अलग पलटू लाग जा खाद नीचे दब जा धान उगे खाद रे मा जावे धान बढ़िया रहे एक हर तरह जमीन पलटू लाग जाए कचरो फूस जो भी है जो बीर मा गड़ जाए
0: भाई गहरी जुताई हुए
1: तो ही है
0: जने जमीन भी पलटी जावे
1: पलटी जावे
0: और खाद और है बा भी जमीन में जा
1: जमीन जो तुम बागर जाओ ऊपर रेत आ जाए ना
0: गल जावे खाद ए कई फायदा है जने लोग है जो तभी ज्यादा
1: तभी ज्यादा कटा
0: ए कई बार पहले अपन देखता आगे बे शूट करने कई कई दिन अपन किसान भाई जाऊं ता बेटा हम है नहीं
1: अब नहीं
0: तो कई कारण हुयो
1: अब कारण तो कहीं हुआ है यहाँ के जहाँ मतलब हमें होरा पूजियो अगली काम करना चाहे कौन लोग
0: होरा रहना चाहे
1: बस बिल्कुल आबाद और बाकी पहला लोग 10-10 दिन तक हुड़ करता कणा देता रेत जली यार धान तकड़ो अब वाह हिणिया ने तो लोग बाले
0: भाई हमें यूं देख लेवे के जुताई तो ट्रैक्टर हूं जे
1: बे ट्रैक्टर हूं जी ने ट्रैक्टर दोटी जी रवा
0: दोटी जी जण है जो मेहनत कम कर रिया
1: बिल्कुल
0: मेहनत करने रा फायदा
1: पहला तो मेहनत फायदा बना अब तो ट्रैक्टर हूं जी ने फायदा काई वा देख ले के घंटो लाग जी 1.5 घंटो लाग गई 1500 रुपए लाग गया 1000 रुपए घंटे पे 1500 रुपए लाग गए 1.5 घंटो लाग गई 2 घंटे लाग गए जना देखे उटीज घेणियार बाद मकी हो के
0: भाई इतनी मेहनत है जको ए कौन करी
1: हां कौन करी बाडीर बेला करना
0: भाई आलसी हो गया
1: आलसी हो गया
0: पहला जितनी मेहनत कौन
1: कौन
0: पहला तो देखो एड़ तावड़ी में है जको अपन किसान भाई काम करता हमें करे कि नहीं
1: अब नहीं करे अब तो 9 बजे बाद में खेत में

0: कई कारण
1: अब कारण तो हो रहा पग्यू कौन रहे कूलर पंखा चालने।
0: तो कहीं कमजोरी आई है,
1: कमजोरी तो वजी थी,
0: वे जीते भाई मेहनत करता हाजन मजबूत रहता
1: मजबूत रहता शरीर सही रहे तो
0: पसीनो ही घणो ही ऊंतो।
1: घणो ही भींजे था पूरा।
0: ओहो, और हमें पता है ठंडी हवा ज्यादा लेवे जन कहीं आलसी।
1: अब तो आलसी है, ठंडी हवा ली है, बारी की है, कहाँ बढ़ती लागी, कहाँ और की हुई, कहाँ भी हूँ, पहले दही जे कौन के मंदिर मास कौन कर हारे करा मन
0: भाई ज्यादा ठंडी हवा ले जने ज्यादा आलसी हो जाए,
1: आलसी जी
0: इन मतलब मेहनत करनी है जो जरूरी है।
1: जरूरी है शरीर लिए सही।
0: तो वासा छेलू सिंह जी आपका विचार बताया हो आपने जी।
2: तो छेल सिंह जी बड़े इट्ठा विठा भी बात करी कि आपन है जिको कृषि उपकरण है बे, आपन है जिको एन वक्त पर नहीं संभालना चाहिए जे, बे है जिको आपन है टेमो टेम है जिको बयानो ध्यान रखनो चाहिए जे, क्योंकि एन वक्त पर आपा जे चीज़ ने संभाला और बीमाइन कोई गड़बड़ हो जावे तो पच आपा की जिकी कोई भी काम करन जावा भी ने है जिको कितनी परेशानी आपा ने सामनो करना पड़े। तो इस वास्ते आपा ने कोई भी चाहे कृषि उपकरण हो चाहे घर की भी कोई चीज़ हो, बिन आपा ने है जिको जद भी खराब हुए तो भी ने आपा ने तुरंत ठीक करा देना चाहिए। इरे सागे आपा का जिका कृषि उपकरण है बयाने टेमो टेम आपा ने जिको बार बताया जान ऑयल है, ग्रीस है, हवा है और ब्यांग आपा का जिका कृषि उपकरण है ब्यांग वास्ते छाया है बे आपा ने राखनी छे। जब भी सुकाई है कि आपा का जिका उपकरण है ब्यांग की उम्र है जिको बढ़ जाए। अब घड़ी का ना जो जाने घड़ी कहे राकेश भाई खेती बाड़ी रहो तेवड़े टाइम अटे हुए पूरो, तो आप राकेश भाई ने दिराओ सीख करा। राम राम।

खेती बाड़ी ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवावाणी।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी अपनी आरजे साथी नेहा नारायण सोनी और आप सुन रहे हैं युवाओं का अपना कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों, जिंदगी के हर दिन में आपके साथ एक नई कहानी लेकर आती है। कभी कोई नई सीख मिलती है तो कभी कोई नया अनुभव, और कभी कोई एक ऐसा पल जिसे हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। तो क्यों ना आज के दिन को भी कुछ अच्छी बातों और सकारात्मक सोच के साथ खास बनाया जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, और उसके बाद बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में, शक्ति और सम्मान का संदेश देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बालिका दिवस पर। तो आज हम बात करेंगे ऐसे दो अवसरों की जिनमें कहीं ना कहीं शक्ति, सम्मान और नई शुरुआत का संदेश छिपा है। एक तरफ है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और दूसरी तरफ है हमारे देश में शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि। दोस्तों, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जरा सोचिए, हमारे आसपास कितनी बेटियां अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखती है। कोई पढ़कर डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक, कोई खिलाड़ी, तो कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है। जरूरत है तो बस उन्हें सही अवसर और परिवार का विश्वास देने की। और दोस्तों, अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि की। तो नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा की पूजा शुरू होती है। इन 9 दिनों में हम माँ के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। घरों और मंदिरों में पूजा, भजन और उत्सव का माहौल देखने को मिलता है। दोस्तों, इस पर हम और चर्चा करेंगे और हम और बातें करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये धमाकेदार गाना।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ साथ शारदीय नवरात्र की भी शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा की पूजा होती है। इन 9 दिनों में हम

आगे बढ़ती है तो सिर्फ उसका नहीं पूरे समाज का भविष्य आगे बढ़ता है। दोस्तों, इसी के साथ हम चर्चा करेंगे कि बेटियों की शिक्षा और उनके समान अधिकारों पर। तो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक बेटी के सपनों को सिर्फ इसलिए रोक दिया जाए कि वह बेटी है, तो हम सिर्फ एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य का रास्ता रोक रहे हैं। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, शिक्षा हो, चाहे खेल हो, विज्ञान हो, प्रशासन हो या व्यवसाय, बेटियां लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, इस सफर की शुरुआत सबसे पहले शिक्षा से होती है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं सीखती बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत बनाती है। इसीलिए बेटियों को स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई जारी रखना और उनके पसंद का करियर चुनने के लिए प्रोत्साहित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। और भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
0: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: दोस्तों, इस गाने से पहले हमने बात की कि बेटियों की शिक्षा और उनके समान अधिकारों पर। तो आज की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, विज्ञान हो, प्रशासन हो या व्यवसाय, बेटियां लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, इस सफर की शुरुआत सबसे पहले शिक्षा से होती है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं सीखती, बल्कि अपने पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत बनाती है। इसलिए बेटियों को स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई जारी रखना और उनके पसंद का करियर उन्हें चुनने देने के लिए प्रोत्साहित करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। और बात सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है साथियों, बेटियों को समान अधिकार और समान अवसर मिलना भी उतना ही जरूरी है। घर में उनकी राय को महत्व देना, उनके सपनों का सम्मान करना और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। दोस्तों, समानता का मतलब किसी को किसी से बेहतर या कमतर बनाना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का बराबर अवसर देना है। तो आइए हम मिलकर ऐसा माहौल बनाएं जहां किसी बेटी को यह ना कहना पड़े कि मैं लड़की हूं इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, बल्कि वह पूरे आत्मविश्वास से कह सके मैं बेटी हूं और मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूं। दोस्तों, अब बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की, यानी कि स्टेज का डर दूर करने के कुछ आसान उपायों के। तो दोस्तों, क्या आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ है कि मंच पर जाकर बोलने की बारी आई तो अचानक दिल की धड़कनें तेज हो गई, हाथ पैर कांपने लगे और समझ ही नहीं आया कि शुरुआत कैसे करें? अगर हाँ तो बिल्कुल परेशान मत होइए, स्टेज का डर बहुत सामान्य है और थोड़ी सी प्रैक्टिस से इसे काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। इसके आसान उपाय मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनेंगे ये गीत।

0: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
1: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
0: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्टेज का डर हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। जब हमें अपने विषय की अच्छी जानकारी होती है तो हम आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। इसलिए मंच पर जाने से पहले अपने विषय को अच्छी तरह समझिए और मुख्य बिंदुओं की तैयारी कर लीजिए। आईने के सामने अभ्यास करें। शुरुआत में खुद से बात करना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये काफ़ी मददगार है। आईने के सामने बोलिए और अपनी आवाज़, हाव भाव और बोलने की गति पर ध्यान दीजिए। अगला है, छोटी शुरुआत कीजिए। अगर आपको बहुत लोगों के सामने बोलने में डर लगता है तो सीधे मंच, बड़े मंच से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। पहले परिवार या दोस्तों के सामने बोलिए और धीरे धीरे श्रोताओं की संख्या बढ़ाइए। अगला है, सांस पर ध्यान दीजिए। मंच पर जाने से पहले कुछ गहरी और सामान्य सांसें लीजिए। इससे खुद को शांत रखने और अपनी बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। अगला है, गलती से घबराइए मत। दोस्तों, याद रखिए, गलती होना असफलता नहीं है। अगर बोलते समय कोई शब्द भूल जाए तो एक पल रुकिए, मुस्कुराइए और फिर अपनी बात आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, अगली बार मंच आपके सामने हो तो डरने के बजाय खुद से कहिए, मुझे परफेक्ट नहीं, बस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखनी है। यहाँ लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।

दोस्तों, इसी गाने के साथ मैं नेहा नारायण सोनी लेती हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

युवाणी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 5:30 हुए हैं। समय है कार्यक्रम बालवाड़ी का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बालवाड़ी।

यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। जी हाँ, जय हिंद बच्चों, मैं हूँ आपकी रईसा दीदी, लेकर आई हूँ रोचक जानकारियों से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम बालवाड़ी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 11 अक्टूबर है और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन लड़कियों के अधिकारों को, उनकी शिक्षा के महत्व को याद दिलाता है। बच्चों, साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की और पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को ये दिन मनाया गया। इसका उद्देश्य था पूरी दुनिया का ध्यान लड़कियों की समस्याओं पर लाना। कहा जाता है कि एक लड़के को पढ़ाने से एक व्यक्ति पढ़ता है, पर एक लड़की को पढ़ाने से पूरा परिवार पढ़ता है। लड़की, शिक्षा और सम्मान किसी भी देश की प्रगति की पहली सीढ़ी है। बच्चों, जिस समाज में लड़कियों को पढ़ाने का और सम्मान का अवसर मिलता है, वही समाज आगे बढ़ता है। अब बात आती है बच्चों, आखिर लड़कियों की शिक्षा क्यों जरूरी है? पहले लोग सोचते थे कि लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत, उन्हें तो घर ही संभालना है। ये सोच बिल्कुल गलत है। दरअसल बच्चों, एक शिक्षित लड़की कल एक शिक्षित माँ बनती है। वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देती है। पढ़ लिख कर लड़की नौकरी कर सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आज लड़कियां डॉक्टर, टीचर, वैज्ञानिक, पायलट, प्रधानमंत्री सब बन रही हैं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम, पीटी उषा, किरण बेदी सबका सबसे बड़ा उदाहरण है। लड़की को शिक्षित करना उसका

सम्मान करना कोई एहसास नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। जिस घर में किताबें लड़कों के साथ साथ लड़कियों के हाथ में भी होती हैं और जहां लड़कियों की बात को इज्जत से सुना जाता है, वही घर असली मंदिर है। तो इस प्रकार से बच्चों, एक लड़की को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करने जैसा है। शिक्षित बालिका आत्मनिर्भर बनती है, अपने फैसले खुद ले पाती है और देश के विकास में योगदान देती है। आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम हर बालिका को पढ़ने का अवसर जरूर देंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो बच्चों, ये चर्चा हुई 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। अब सुनते हैं लगान फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म का ये गीत। प्यारे बच्चों, आज हम आपको अंतरिक्ष की अनोखी कहानी सुनाते हैं। एक दिन अंतरिक्ष में ग्रहों की बैठक हुई। सब ग्रह आपस में लड़ने लगे, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। ऐसे में सबसे पहले सूरज दादा बोले, चुप, सब बारी बारी से बताओ तुम्हारी क्या खासियत है। ऐसे में सबसे पहले बुध ग्रह बोला, मैं सबसे छोटा हूँ पर सबसे तेज भागता हूँ। मैं सूरज का सबसे करीबी हूँ, इसलिए मेरे यहाँ दिन में 400 डिग्री गर्मी और रात में -180 डिग्री की ठंड होती है। फिर बारी आई शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह। शुक्र ग्रह बोला, लोग मुझे सुबह का तारा समझते हैं, मैं सबसे ज़्यादा चमकता हूँ पर मुझ पर इतने बादल हैं कि मैं हमेशा खोलता हूँ, मैं उल्टा घूमता हूँ। फिर बात आती है नीला ग्रह यानी हमारी पृथ्वी की। तो पृथ्वी बोली, मैं ही इकलौती हूँ जहाँ जीवन है, पानी है, पेड़ हैं, मेरे पास एक प्यारा सा बच्चा है चांद। फिर बात आती है लाल योद्धा यानी मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह बोला, मैं लाल हूँ क्योंकि मुझ पर जंग लगी हुई है, वैज्ञानिकों को लगता है कल इंसान मेरे ऊपर ही घर बनाएंगे। तभी एंट्री होती है बॉस की यानी बृहस्पति की। तभी गरज कर बृहस्पति बोला, बच्चों चुप, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती हैं, मेरा एक तूफान 300 सालों से चल रहा है। फिर बात आई अंगूठी वाला राजा यानी शनि ग्रह की। शनि बोला, और मैं सबसे सुंदर, मेरे चारों तरफ बर्फ और पत्थर की चमकती अंगूठियां हैं। फिर आया यूरेनस लेटा हुआ ग्रह। यूरेनस बोला, मैं तो लेट कर घूमता हूँ जैसे लुढ़क रहा हूँ। तभी तूफानी नीला नेपच्यून ग्रह बोला, और मैं सबसे दूर, सबसे तेज हवा वाला, मेरी हवा 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तभी सूरज दादा हंसे और बोले, देखा, तुम में से कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गर्म, कोई ठंडा, पर तुम सब मिलकर ही तो मेरा सौर मंडल परिवार बनाते हो। तब से सब ग्रहों ने लड़ना बंद किया और फिर अपने अपने कक्ष में खुशी खुशी घूमने

लगे। तो कैसी लगी बच्चों? बच्चों, अंतरिक्ष की अनोखी कहानी जिसका राजा है सूरज, जो धरती से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूरज के अंदर 13 लाख धरती समा सकती है। सूरज की रोशनी को भी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो बच्चों, ये हुई अंतरिक्ष की कहानी। प्यारे बच्चों, अब हम आपको एक छोटी सी लड़की आरवी की कहानी सुनाएंगे। जयपुर के पास एक छोटे से गांव फागी में रहती थी आरवी। घर में 2 कमरे, एक आंगन और आंगन में टूटा टेलीस्कोप। वो टेलीस्कोप उसके दादाजी ने दिया था, जो उसके लिए मेले से लेकर आए थे। लेंस धुंधला था, पर उसमें चांद बहुत बड़ा दिखता था। आरवी को उसी चांद से प्यार हो गया, पर गांव के लोगों को इस प्यार से दिक्कत थी। पहली बाधा, कक्षा 8 के बाद स्कूल खत्म। लड़कियों का स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। पिताजी बोले, बस बहुत पढ़ लिया, अब घर के काम संभालो। दूसरी बाधा, फीस। विज्ञान में सबसे ज्यादा नंबर लाने के बाद भी फिर उसके टीचर ने कहा कि साइंस के लिए आपको शहर जाना पड़ेगा, कोचिंग लगेगी, पर पैसे कहाँ से लाए? आरवी ने उसी धुंधले टेलीस्कोप को ठीक करके गांव के बच्चों को रात में तारे दिखाने शुरू किए, 10 रुपये प्रति बच्चा। उसने अपने इसी से अपनी कॉपियां, अपनी किताबें, सब सामान खरीदा। अब तीसरी बाधा, सबसे बड़ी बाधा उसके सामने आई थी, रिश्ता। यानी कक्षा 12 में आते ही चाचा रिश्ता ले आए। लड़का सरकारी नौकरी में है, इससे अच्छा क्या मिलेगा? आरवी उस रात कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ मुझे 1 साल दे दो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो मैं खुद हाँ कह दूंगी। माँ ने पिता को समझाया। उस 1 साल में बच्चों, आरवी ने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की। दिन में खेत में, रात को लालटेन के नीचे पढ़ाई की। उसके पास फोन नहीं था तो वह हर हफ्ते शहर के साइबर कैफे में जाती, वहां इसरो के बारे में वीडियो देखती, नोट्स लिखती। बच्चों, उसने दिन रात मेहनत की और आज आरवी वैज्ञानिक तो नहीं, अभी जूनियर रिसर्च फेलो है। उसने अपनी माँ को फोन पर बताया, माँ अगले महीने हमारा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट चांद पर जा रहा है, चंद्रयान के साथ। बच्चों, आरवी ने कभी चांद को छुआ नहीं, पर उसने चांद तक जाने का रास्ता बना लिया था, तमाम बाधाओं के बाद भी, क्योंकि उसने पढ़ना नहीं छोड़ा था। तो प्यारे बच्चों, आरवी की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लाइफ में कितनी ही डिफिकल्टीज आ जाए, लेकिन हमें हिम्मत और कड़ी मेहनत से इसका सामना करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती है। तो बच्चों, ये कहानी थी आरवी की, जिसने मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल किया था। अब रुक करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे क्रिश फिल्म का ये गीत। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की। बच्चों, उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम था। लोग उन्हें प्यार से मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति कहते थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। परिवार बहुत गरीब था। उनके पिता जैनुल आबेदीन नाविक थे, मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। बचपन में पैसों की बहुत तंगी थी। कलाम सुबह 4 बजे उठकर गणित की ट्यूशन लेने जाते, फिर अखबार बांटने जाते ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। रामेश्वरम के पास ट्रेन नहीं रुकती थी तो अखबार फेंकने के लिए चलती ट्रेन में दौड़कर अखबार फेंकते। बच्चों, वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे, खासकर गणित में। स्कूल पढ़ाई रामेश्वरम में पूरी की, फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उनका सपना था फाइटर पायलट बनने का, पर वो 8 लोगों में 9वें स्थान पर रह गए, उनका चयन नहीं हुआ। फिर उन्होंने चेन्नई के MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फीस के लिए उनकी बहन ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। अगर उनके वैज्ञानिक जीवन की हम बात करें बच्चों, तो पहले DRDO से 1958 में उन्होंने शुरुआत की। पहले उन्होंने रक्षा अनुसंधान संगठन में काम किया, फिर 1963 में वो इसरो में आए। यहाँ उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया। 1980 में इसी रॉकेट से रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष भेजा गया। ये भारत की बहुत बड़ी जीत थी। फिर DRDO में इंदिरा गांधी ने उन्होंने वापस बुलाया, मिसाइल बनाने की उन्हें जिम्मेदारी दी। उन्होंने 5 बड़ी मिसाइलें बनाई, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग नाम से मिसाइलें बनाई थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो राजस्थान के पोखरण में जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, उसके मुख्य हीरो कलाम ही थे। बच्चों, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति बने और सबसे अलग राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भवन के सारे दरवाजे बच्चों और छात्रों के लिए खोल दिए गए थे। रोज सैकड़ों बच्चे उनसे मिलते थे। उन्होंने कहा था, सपना वो नहीं जो सोते हुए देखो, सपना तो वो है जो तुम्हें सोने ही ना दे। अगर उनके पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो 1981 में उन्हें पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया गया। बच्चों, उन्होंने किताबें लिखना और बच्चों को पढ़ाना सबसे ज्यादा उन्हें पसंद था। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर किताब लिखी। 27 जुलाई 2015 को वो शिलोंग के IIM में छात्रों को लेक्चरर दे रहे थे। लेक्चरर देते हुए ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उसी मंच पर उनका निधन हो गया। जैसे वो जिए वैसे ही गए, पढ़ाते पढ़ाते। तो बच्चों, उनकी जिंदगी से हमें 3 सीख मिलती है। गरीबी तुम्हारी सोच को गरीब नहीं बना सकती। असफलता पहली बार आए तो हार मत मानो। बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा आदमी बनो। तो बच्चों, ये जानकारी हुई APJ अब्दुल कलाम के बारे में। अब सुनते हैं ये गीत।

इसी के साथ समय हो गया है बच्चों आपको गुड बाय कहने का, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो अब कहते हैं अलविदा बच्चों, रखिएगा अपना ख्याल, जय हिंद।

बालवाड़ी ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से यह यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वड़ा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर विमोल अकुईजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद विमोल अकुईजम की सेवाएं समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूता

0: आवास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTGEM पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सवेरे अचानक आई बाढ़ से अनेक पुल और घर बह गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षि कश्यप को हराया। उधर मिस्र में उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। लद्दाख पुलिस बाइक रैली टीम गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गई है। रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री अभ्यास इंद्र 2026 में शामिल होने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। श्रोताओं, शाम के 6:05 हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर का चिरमिर चैनल। श्रोताओं, शाम के 6:20 हुए हैं, आज सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
6: ओ सुतर जानो सूखे भरी।

राम ने अवसरा कोई गए इस लोक भजन के साथ ही माटी के अवसर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। अभी शाम के 6:28 में हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रोशनास कराना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, भारत की प्रगति समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों का परिचायक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शारदीय नवरात्र पर प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, दुर्गा पूजा और गरबा के आयोजनों की धूम। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में आईआईटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क और रेल परिवहन, बंदरगाह अवसंरचना, पेट्रोलियम और वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाएं शामिल है। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक उपलब्धियों और आधुनिक बुनियादी ढांचे से ताकत मिलती है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडापलानी हिस्से का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी की। श्री मोदी ने आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर देश को समर्पित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय का फैसला ऐसे वक्त आया है जब नई दिल्ली में कुछ युवा संगठनों और छात्रों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है। इधर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार चल रही हैं। देश में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को जोड़ने के लिए और इनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट सहित कई थीम आधारित सर्किट विकसित किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना भी शुरू की। आइए जानते हैं इसके बारे में।
2: मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश में आध्यात्मिक बौद्ध कृष्ण रामायण तीर्थंकर जैसे चिन्हित धीम आधारित पर्यटन क्षेत्रों के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना का विकास करना था। इसके अलावा मंत्रालय ने 2014-15 में ही चिन्हित तीर्थ स्थलों और विरासत स्थलों पर एकीकृत विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा पुनरुद्वार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान भी शुरू किया था। केंद्र सरकार ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता, वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास के तहत 40 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन पर्यटन सर्किटों में राजस्थान के जिन स्थलों को शामिल किया गया है उनमें जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर, सीकर के खाटू श्याम जी और राजसमंद का नाथ द्वारा मंदिर भी शामिल है। आध्यात्मिक सर्किट के तहत सालासर बालाजी, सामूत के बालाजी, विराट नगर में बीजक जैनसिया और अंबिका मंदिर, भरतपुर का कामा क्षेत्र, धौलपुर का मचकुंड और दौसा के मेहंदीपुर बालाजी तथा चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर का विकास भी किया जा रहा है। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल से देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। समाचार कक्ष से मैं दीपेंद्र सिंह खंगारू।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हुए। इस बार तिथि वृद्धि के चलते नवरात्र 10 दिन के रहेंगे। शुभ मुहूर्त में घरों और मंदिरों में घट स्थापना की गई। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ दुर्गा पूजा के आयोजन भी विधिवत रूप से शुरू हुए। आज पहले दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। उत्तर भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में शामिल बीकानेर के देशनोक करणी माता मंदिर, करौली में कैला देवी, सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा और राजधानी जयपुर की शिला माता मंदिर सहित प्रदेश की सभी छोटे बड़े दुर्गा मंदिरों में विशेष आयोजन रखे गए हैं। कई जगह मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि पश्चिमी क्षेत्र के प्रसिद्ध नागणेची माता मंदिर में पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं बांसवाड़ा के त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तगणों का आना जारी है।
3: बांसवाड़ा जिले भर के देवी मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजाया संवारा गया है, तो वहीं वागड़ अंचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी माता के दरबार में आज सुबह भव्य मंगला आरती की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु माता रानी के जयकारों के साथ आरती में सम्मिलित हुए। दोपहर में विधि विधान के साथ मंदिर में घट स्थापना की गई। पहले दिन माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा और मेले की रौनक भी शुरू हो गई, तो वहीं गरबों का भी आयोजन शुरू हो गया है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा।
0: अलवर के बाला किला रोड स्थित प्राचीन करणी माता मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले इस मंदिर में वन विभाग की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नवरात्र के साथ ही प्रदेश भर में गरबा के आयोजन भी शुरू हो गए हैं। गुजरात से लगते राज्य के जिलों के साथ ही राजधानी जयपुर में भी विभिन्न संगठनों की ओर से गरबा महोत्सव रखे गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर आमजन की खुशहाली के लिए कामना की। अरावली के संरक्षण और विकास में संतुलन बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी आज डूंगरपुर पहुंची। कमेटी के सदस्यों ने हितधारकों के साथ संवाद किया और वन जल

0: संरक्षण, आजीविका और खनिज गतिविधियों पर चर्चा की। कमेटी ने पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों और विकास संभावनाओं पर भी बात की। कमेटी में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री देहरादून की महानिदेशक कंचन देवी सहित वन और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल थे। आज प्रसिद्ध समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता नानाजी देशमुख की जयंती है। भारत रत्न से सम्मानित नानाजी देशमुख ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और वंचितों की सशक्तिकरण के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया। राष्ट्र सेवा में असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2019 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिंतक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी जयंती है। जयप्रकाश नारायण ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दोनों महापुरुषों की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नानाजी देशमुख का दृष्टिकोण समावेशी और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता रहेगा। लोकनायक को श्रद्धांजलि देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक जीवन, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और जन सशक्तिकरण के प्रति जयप्रकाश नारायण की अटूट प्रतिबद्धता आज भी राष्ट्र के लिए प्रेरणा बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज राज्यभर के में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत ब्यावर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें बालिका शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इस दौरान बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और बालिकाओं को सम्मान तथा शिक्षा के समान अवसर दिलाने की शपथ भी दिलाई गई। धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए महिला पुलिस कमांडो द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा, सोशल मीडिया पर व्यवहार और कई अन्य जानकारियां दी गई। सिरोही में भी कई कार्यक्रम हुए। भरतपुर में आयोजित जागरूकता रैली में स्कूलों की छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारत आज इंदौर में वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच होलकर स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले रांची में खेले गए दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत पर 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 139वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, भारत की प्रगति समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों का परिचायक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शारदीय नवरात्र पर प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, दुर्गा पूजा और गरबा के आयोजनों की धूम। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में पंच, सरपंच और जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनावी सरगर्मियां और दांव पेच शुरू हो गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले नगर निकाय चुनाव में लोगों ने निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान किया और अपने पसंद की सरकार बनाई। जिले में जोश कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर स्वास्थ्य भवन स्थित कार्यालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भरत राम मीणा तथा जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीके वर्मा सहित माय भारत युवा और एनसीसी के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को निक्षय शपथ दिलाई गई। साथ ही जोश कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया गया। अधिकारियों ने टीबी उन्मूलन के लिए युवाओं और आमजन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशों के अनुसार विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा परतापुर स्थित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बांसवाड़ा में सही खान पान स्वस्थ राजस्थान अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय टीम ने विभिन्न विद्यालयों का दौरा कर विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बच्चों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की प्रारंभिक जांच, पौष्टिक खानपान और स्वच्छता संबंधी आदतों के बारे में जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत विद्यार्थियों को स्वस्थ टिफिन, पौष्टिक नाश्ता, श्री अन्न और मोटे अनाज के फायदे बताए गए। वन्य जीव सप्ताह के तहत वन विभाग की ओर से बांसवाड़ा के श्यामपुरा वानिकी उद्यान में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के सरकारी और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री के उपयोग और बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर परिषद बांसवाड़ा की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। इस दौरान 15 प्रतिष्ठानों से कुल 200 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई और कुल 14,800 रुपए के चालान की वसूली की गई। जिले में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने की दिशा में कसारवाड़ी सौर सिंचाई परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इस परियोजना के माध्यम से 525 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे क्षेत्र के किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सज्जनगढ़ तहसील में अनास नदी पर कसारवाड़ी एनिकट और सौर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर काम किया जा रहा है। परियोजना के तहत 67 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर फव्वारा पद्धति से पानी खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही बिजली खपत कम करने के उद्देश्य से 700 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से HPV टीकाकरण को लेकर जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भापौर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 26 बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई गई। पिछले दिनों समाज कल्याण सप्ताह के तहत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वृद्धजनों के सम्मान के साथ उनके अनुभव और समाज में योगदान पर चर्चा की गई। शारदीय नवरात्र पर्व परंपरानुसार आज से शुरू हुआ। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में मंगला आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दोपहर को मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ किया गया। गांव से शहर तक विभिन्न देवी मंदिरों को भव्य और शानदार रंग बिरंगी रोशनी से सजाया संवारा गया है। मंदिर के प्रांगण में गरबा आयोजन के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी के साथ बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है सिंझा भगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपयों बतीरी विकास परियोजनाओं रो लोकार्पण और नींव धरी। कयो भारतीय प्रगति समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक कामयाबियों रो परिचायक है। सर्वोच्च न्यायालय अहलकारा ने शांतिपूर्ण तरीकाओं भेड़ाव्या लोगों की गैरकानूनी हिरासत रोकण, सामान्य आवाजाही और बेरोकटोक इंटरनेट तय करण रा निर्देश दिया। शारदीय नवरात्रा माथे प्रदेश भर में धार्मिक उमाव, दुर्गा पूजा और गरबारा आयोजनारी धूम और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस माथे आज राज्य भर में न्यारा न्यारा कार्यक्रम हुआ। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई रा आईआईटी मद्रास माए विया कार्यक्रम माए 13,000 करोड़ रुपयों 32 विकास परियोजनाओं रो लोकार्पण करियो और नींव धरी। इन माए सड़क और रेल परिवहन, बंदरगाह अवसंरचना, पेट्रोलियम और वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं भेली है। प्रधानमंत्री

0: ने अबे आखिर माय खास समाचार आप एक और फिर सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई माय 13,000 करोड़ रुपयों बत्तीरी विकास परियोजनावा रो लोकार्पण करियो और नींव धरी। कयो भारत री प्रगति समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक कामयाबियां रो परिचायक है। सर्वोच्च न्यायालय एहलकारा ने शांतिपूर्ण तरीकाओं भेड़ा व्या लोगों की गैरकानूनी हिरासत रोकण सामान्य आवाजाही और बेरोकटोक इंटरनेट तय करने रा निर्देश दिया। शारदीय नवरात्रा माथे प्रदेश भर में धार्मिक उमाव दुर्गा पूजा और गरबा रा आयोजन री धूम और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस माथे आज राज्य भर में न्यारा न्यारा कार्यक्रम दिया। नरेंद्र साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आज सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती, प्रायोजक सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
2: ये पापा ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ,
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाएं,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
1: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: ग्राम भारती सुनबाड़ा सगला श्रोतावन है करसा भाई भेणा ने और दूर दराज गांव डाणी में चौपाल सुनती सगली सखी सहेलिया ने मधुनाय की ओर सु जय माता दी। और आपने सागे है आज नरपत भाई, तो नरपत भाई आपने भी जय माता दी।
3: सारा ग्राम वासियां ने नरपत सिंह री राम राम और मधु बहन आपने भी राम राम।
2: और आज जो छे शारदीय नवरात्रा यानी कि पहलो नवरात्रा को दिन है, घट स्थापना चालू काणी हो रही है और पूरा वातावरण का मायने भक्ति की सुगंध आपने महसूस हो रही है। मंदिरा का मायने, घरा का मायने माता रानी का जयकारा गूंज रहा है। हर घर आंगन में पूजा हो रही है और हर हिवड़ा का मायने माँ का स्वागत की जो उमंगा है ना वह हिलोरा ले रही है। तो नवरात्रा का पावन पर्व की सगला श्रोताओं ने आपा देवा हार्दिक शुभकामनावा कि माँ की चरणा में शीश झुकावा, मन में श्रद्धारा दीप जड़ावा, माँ की कृपा अपने सबके सागे रेवे, दूर हो जीवन का कष्ट सारा।
3: बिल्कुल सही बताए थे, शारदीय नवरात्रा जदी थे जय माता जी कर रहे हो।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि शारदीय नवरात्रा बार आपने जो आस्था भक्ति शक्ति का प्रतीक छे, ये आपने देश में बड़े धूमधाम से आप मनाओ भी चाह। अपनी यह धार्मिक त्योहार कौन है, यह भारतीय संस्कृति भी चे, परंपरा भी चे और सामाजिक एकता को भी प्रतीक चे, जिम आपने धैर्य कठिनाइया और विश्वास के साथ में नारी को सम्मान करा, सत्य धर्म के मार्ग पर चला, बुराई को त्याग करा, ये सारी आपने जो परंपरा चे बी का अकॉर्डिंग अपन कार्य करना चे।
2: अरे परंपरा ने निभावा आगे चला और अपना जो विशेषज्ञ है बस आप ओलखाण भी करावा और जानकारी भी दिलावा।
3: ठीक है सर, दिलाओ सा।
0: सुने सुनाएं,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
1: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भागीरथ राम, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सेवर से आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। राई सरसों के बीज उत्पादन तकनीकी एवं शस्य क्रियाओं की जानकारी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज आप हमें जानकारी देंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर भागीरथ राम जी, हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत, नमस्कार।
4: बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, मेरा सभी को नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, वैसे तो राई सरसों के बीजों की जानकारी सबको होती है, मगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो राई सरसों के बीज क्या है और बीज और अनाज में क्या अंतर है?
4: किसान भाइयों, सामान्य भाषा में बीज पौधे का वह भाग है जिसे बोने पर एक नए पौधे को जन्म देता है। वनस्पति विज्ञान में बीज का अर्थ परिपक्व बीजाणु से है जिसमें स्थित भ्रूण, भ्रूण पोषक तथा बीज पत्रों से संरक्षित या उपस्थित भोजन लेकर प्रारंभिक वृद्धि करता है तथा नए पौधों को जन्म देता है। बीज एक जीवित रचना है जिसमें भ्रूणीय पौधों उत्कों की विभिन्न परतों से ढका हुआ रहता है, सुषुप्त अवस्था में रहता है, जो अनुकूल वातावरणीय परिस्थिति जैसे नमी, तापमान, वायु, प्रकाश की सुलभता से मृदा के संपर्क में आने से पौधा विकसित होता है। और वास्तव में बीज एक सूक्ष्म पौधा है। और बीज और अनाज के बारे में जैसे मैडम ने कहा, तो बीज और अनाज जो है अलग अलग तरह से काम में लेते हैं, अलग अलग इसमें कई तरह की भिन्नताएं हैं। तो सबसे पहली इसमें जो डिफरेंस है, बीज हमेशा जीवित अवस्था में रहता है तथा हवा, नमी और प्रकाश के प्रति जागरूक रहता है, जबकि अनाज या तो जीवित अवस्था में या मृत दोनों अवस्था में हो सकता है तथा हवा, नमी, प्रकाश के प्रति जागरूक होना आवश्यक नहीं है। बीज खाने के रूप में काम में लिया जाता है, परंतु उपचारित बीज को खाने में काम में नहीं लिया जा सकता, जबकि अनाज जो है वो केवल खाने के में काम में लिया जाता तथा उपचारित नहीं कर सकते। बीज में आनुवंशिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता एवं भौतिक शुद्धता आदि पाई जाती है, जबकि अनाज में इनका होना आवश्यक नहीं है। बीज सामान्यतः अच्छी अंकुरण क्षमता के लिए स्वस्थ बीज का होना अति आवश्यक है, जबकि अनाज में इसमें असामान्य और कमजोर होना जरूरी नहीं है और अंकुरण क्षमता का जरूरत बिल्कुल नहीं है। बीज के जीवन के अच्छे भंडारण, उच्चतम तापमान, आर्द्रता का होना अत्यंत आवश्यक है, जबकि अनाज में इसके लिए इसका सामान्यतः होना जरूरी नहीं है। और बीज को बनाने के लिए बीज प्रौद्योगिकी विज्ञान और कृषि वैज्ञानिकों के निरीक्षण से देखभाल के रूप में इसको बनाया जाता है, जबकि अनाज सामान्यतः इसमें इसकी जरूरत नहीं होती। बीज उत्पादन में बीज अधिनियम का ध्यान में रखा जाता है और जबकि अनाज में इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी फसल के उत्पादन की विधि प्रमुखतः उस फसल के परागण की विधि पर निर्भर करती है। राई सरसों वर्ग में स्वयं परागण और पर परागण दोनों ही वर्गों की फसलें सम्मिलित हैं, जिसमें राई, जिसको हम लाहा बोलते हैं, जो कि इस वर्ग की प्रधान फसल है, उसमें हमेशा स्वयं परागण तथा तोरिया, जो कि कम समय में पक्के तैयार होता है, उसमें पर परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। अतः इन दोनों वर्गों में बीज उत्पादन की दृष्टि से अलग अलग विधियां विकसित की गई है।
2: डॉक्टर साहब, बीज और अनाज का जो अंतर आपने इतनी गहराई से और विस्तारित रूप में आपने बताया है, उम्मीद है कि सभी किसानों को ये समझ में आया होगा कि अनाज और बीज में क्या अंतर है। श्रेष्ठ बीजों की जब हम बात करते हैं तो राई और सरसों के उत्तम बीजों की कौन कौन सी श्रेणियां हैं और बीज उत्पादन तकनीक क्या है, किस तरीके से हमारे किसान भाई इसे अपनाएं?
4: किसान भाइयों, उत्तम बीज 4 श्रेणियों में बांटा गया है और इसकी उत्पादन तकनीकी जो है वो अलग अलग होती है। अलग अलग बीज की अलग अलग इसकी सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है। तो सबसे नंबर वन हम बात करते हैं प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड, जो उच्च आनुवंशिक शुद्धता एवं समरूपता वाला बीज जो संबंधित फसल के पादप प्रजनन की देखरेख में न्यूक्लियस सीड से तैयार किया जाता है और इस बीज की थैली व कट्टे पर सुनहरी रंग का टैग लगा रहता है। और दूसरे नंबर का बीज है फाउंडेशन सीड, आधारित बीज प्रजनक बीज से उत्पन्न किया जाता है। इसे बीज निगम संस्थाओं के प्रक्षेत्रों पर आइसोलेशन डिस्टेंस व अन्य सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उगाया जाता है और इस प्रकार की बीज की थैली पर कट्टे पर सफेद रंग का टैग लगा रहता है। फिर तीसरे नंबर की श्रेणी में प्रमाणित बीज आता है। प्रमाणित बीज आधारित बीज से तैयार किया जाता है और इसे आधारित बीज से

0: मानकों के अनुसार होना चाहिए। बीज की अंकुरण क्षमता है वो 85% से अधिक होनी चाहिए। बीज की जीवन क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। बीज सुडोल आकार का रंग आकृति में समान होना चाहिए और बीज की जो रोगाणु और कीटाणु रहित होना चाहिए। बीज हमेशा डोरमेंसी अवस्था में नहीं होना चाहिए। बीज अधिक उपज हाई यील्डिंग सीड होना चाहिए। बीज विपरीत दशाओं के प्रति रोगरोधी क्षमता रखने वाला होना चाहिए और बीज पूर्ण रूप से जो उसकी मैच्योरिटी पीरियड है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए, एक तरह से यूनिफॉर्म मैच्योर होना चाहिए। और बीज उत्पादन तकनीकी जैसे हम चर्चा करते हैं तो बीज का स्रोत का नियंत्रण का सबसे पहले किसान भाई ध्यान देवें, तो बीज उत्पादन के दौरान ये आवश्यक है कि बीज उपयुक्त स्रोत से लिया जाना चाहिए जिससे शुद्धता के साथ साथ उसकी वंशावली वर्ग का ज्ञात रहे। और दूसरी प्रमुख बात है खेत का चुनाव कैसे करें, तो ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें पिछले 3 वर्षों से रई सरसों की फसल नहीं ली गई हो, और यदि फसल ली है तो ऐसी किस्म लेवे जिसका आप सीड प्रोडक्शन पहले से ले रहे हैं या सीड प्रोडक्शन या उस खेती जो है उसी वेरायटी की होनी चाहिए। तीसरी प्रमुख बात है रई सरसों की अन्य खेतों की दूरी, खासतौर से जो आइसोलेशन डिस्टेंस है इसका बहुत बड़ा महत्व है रई सरसों के बीज उत्पादन में। तो खेत के चुनाव समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि बीज उत्पादन वाला जो रई सरसों का खेत है वो अन्य रई सरसों के खेतों से एक निश्चित दूरी पर होना अत्यावश्यक है, और उत्पादन के खेतों की दूसरी दूरी निर्धारित करने के लिए परागण की प्रक्रिया पर विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अगर सेल्फ पोलिनेटेड है, जैसे अगर आधारी सीड अगर फाउंडेशन सीड अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो उस केस में आपको 100 मीटर की दूरी एक खेत से दूसरे खेत की दूरी रखनी चाहिए, और प्रमाणित बीज के केस के अंदर आप कम से कम 50 मीटर की दूरी रखें, और ब्रीडर सीड के केस में आप कम से कम 200 मीटर की दूरी रखें। चौथी इसमें खास बात है रोगिंग, जो बीज फसल क्षेत्र से समय समय पर अन्य किस्मों के बीज को निकालते रहना चाहिए जिसमें परागण रोगों के प्रसार से बीज खराब ना हो पाए। ऐसे पौधों को जड़ों से उखाड़कर कहीं दूर ले जाकर गड्ढे में दबा देना चाहिए, और ऐसे पौधों की ऊंचाई रंग आकार आदि के आधार पर पहचाना जा सकता है और रोगिंग के माध्यम में आपसे उसको हटा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसी भी फसल की हम खेती करें, अगर हमारे खेत में या हमारी फसल में कीट रोग व्याधियां आ गई है तो इसका सीधा असर हमारी पैदावार में हमारे उत्पादन पर पड़ता है। तो बात हम राई सरसों की कर रहे हैं, तो राई सरसों में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं या ऐसी कौन कौन सी व्याधियां हैं जिससे हमारी फसलों पर प्रभाव होता है? राई सरसों में हम कीटों का और व्याधियों का कैसे नियंत्रण करें ये भी आप बताएं।
0: मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बीमारी हमारे राजस्थान के कंडीशन में आती है सफेद रोली रोग, जो सरसों की एक गंभीर समस्या है, जो पत्ती व स्टेक हेड के द्वारा एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है। इसमें पत्ती के बाहरी भागों में जड़ के अलावा पौधों पर भूरे रंग के धब्बे माइसिलियम की वृद्धि हो जाती है जिसमें पत्ती के निचले हिस्से पर सफेद या क्रीमी येलो कलर के पस्टूल डेवलप हो जाते हैं, और ये फरवरी माह में दिखाई देने लग जाते हैं जिसमें जो टॉप ब्रांचेज हैं उसमें सबसे ज्यादा होते हैं, जो जिनके जो जो इन्फेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस है वो स्टेक हेड में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो फूल जो है वो स्टराइल रह जाते हैं और दाने छोटे रह जाते हैं। दूसरी प्रमुख बीमारी है अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट तभी आती है जैसे हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो जाती है, तो इस बीमारी से पौधे की पत्ती के नीचे हिस्से पर व तने पर कंसेंट्रिक रिंग बन जाती है, और ज्यादा इसका इन्फेक्शन होने के समय फली पर धब्बे पड़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप बीज की उपज कम रहती है और कहीं ना कहीं उसके जर्मिनेशन परसेंटेज कम रहती है। तीसरी प्रमुख बीमारी है किसान भाइयों बैक्टीरियल ब्लाइट। इस बीमारी से पत्ती के निचले हिस्से पर वी शेप के घाव पड़ जाते हैं, और ये खास तौर से अर्ली स्टेज में सबसे ज्यादा होती है। जैसे आप फसल की बुआई करते हैं तो उस टाइम इसकी प्रकोप ज्यादा संभावना रहती है, यानी पौधा बिल्कुल छोटा होता है उस समय इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है और पौधे की पत्तियां जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। फिर चौथी प्रमुख बीमारी है तना गलन, स्क्लेरोटिनिया स्टेम रोट। इस बीमारी के लक्षण खासतौर से स्टंटिंग ग्रोथ रहती है, और समय से पहले ही पौधा जो है वो विल्टिंग के माध्यम से पौधा खड़ा खड़ा ही सूख जाता है, परिणाम स्वरूप तने में ग्रेस व्हाइट और जो ब्लैक स्प्रिगल टाइप के स्कोलोशिया डेवलप हो जाते हैं जो तने के पिट में जमा हो जाते हैं और पौधा सूख के गिर जाता है। फिर इसकी उसके सुरक्षित क्या क्या उपाय हैं, तो मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो खासतौर से सबसे प्रमुख बात है गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें जिसके माध्यम से जो सॉइल बॉन्ड जो पैथोजन है और खरपतवार है वो आपके मर सकते हैं। और सरसों की बुआई खास तौर से

0: आप 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में करें, जिससे सरसों की बीमारियां कम से कम आएगी। सरसों की बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। सरसों की फसल जब 60 दिन की हो उस समय पौधे के नीचे वाले नीचे की जो पत्तियां हैं 50 दिन पे उसमें आप वैसे उसको तोड़ देवें, जिससे बीमारी नहीं फैलेगी और पैदावार भी अच्छी होगी। फिर इसमें प्रमुख बात है कि पौधे की बीमारी वाले जो स्टेक हेड है, खासतौर से जो वाइट रस्ट के अंदर और डाउनी मिल्ड्यू में, उनको आप तोड़ के नष्ट कर देवें। और सरसों की बुआई से पहले सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। सीड ट्रीटमेंट खासतौर से मेटल एक्सेल का एप्रोन 35SD का 6 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आप सीड ट्रीटमेंट करें तो निश्चित रूप से आपकी कम से कम बीमारियां होगी। और फसल के 50 से 70 दिन के होने पर आप मैंकोजेब 75WP एट द रेट ऑफ 0.2% के हिसाब से आप जो इसका स्प्रे करें, छिड़काव करें, जिससे सफ़ेद रोली रोग और बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप बिल्कुल नहीं होगा। और अगर संभव हो तो सरसों की फसल के बाद में क्रॉप रोटेशन गेहूं या जौ का करें, जिससे आपको रोगों का प्रकोप कम से कम होगा। और सरसों में 2 सिंचाई से ज़्यादा नहीं देवें और पानी बिल्कुल हल्का देवें, पतला देवें और पानी कम से कम देवें, जिससे तना गलन की बीमारी जो है वो कम से कम होगी। और सरसों की बुआई जो है वो 3 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर गहरी करें। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल सुरक्षा की जो समस्या है वो कम से कम रहेगी।
1: बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। राई सरसों की बीमारियों से निजात पाने के साथ साथ आपने उन्नत विधि भी बताई, किस तरीके से हम उन्नत विधि अपनाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, फसल कोई भी हो उसका जो बाजार मूल्य है उसकी गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित होता है। अब जब बात राई सरसों की है तो राई सरसों के बीज की गुणवत्ता कैसे हम नियंत्रित रखें और इसका शस्य क्रियाओं के साथ क्या संबंध है, तो शस्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं?
0: किसान भाइयों, बीज उत्पादन प्रोग्राम में ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमेशा बीज की गुणवत्ता को हमेशा बनाए रखना जरूरी है। और बीज की फसल की बुआई की से लेकर विपणन तक संतुलन तक सभी कारकों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको बीज की अच्छी क्वालिटी के लिए आपको अच्छे हमेशा बिल्कुल वैसे दिमाग में रखना पड़ेगा। तो सबसे प्रमुख बात है बीज उत्पादन के दौरान तो गुणवत्ता नियंत्रण आप कैसे करें, तो बीज मान्यता प्राप्त संस्थान से ही लें। खेत के चयन समय ऐसे करना चाहिए जिसमें पिछले 3 वर्षों में फसल नहीं ली गई हो। आइसोलेशन डिस्टेंस का आपको ध्यान में रखना है। फसल सुरक्षा का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अवांछनीय पौधों को जैसे मैंने पहले चर्चा की थी आपको निकालना है। कटाई के समय जो मैच्योरिटी पीरियड पे आपको वैसे ढंग से कटाई करनी है। और बीज उत्पादन के जो सामान्य सिद्धांत हैं, खासतौर से बुआई के समय जो तोरिया की बुआई आप खासतौर से सितंबर में के द्वितीय पखवाड़े में कर सकते हैं और सरसों की बुआई जो अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी मैंने आपको पहले बताया 45 सेंटीमीटर पर रखें। और उर्वरक जो फर्टिलाइजर है वो आप 80, 40 और 60, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के प्रति हेक्टर के हिसाब से मात्रा से जो रिकमेंडेड डोज है वही देवें। और बीज उत्पादन हेतु 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जिंक सल्फेट का प्रयोग जरूर करें। सल्फर प्रदान करने हेतु जो 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से सल्फर प्रयोग आप कर सकते हैं, जो जिप्सम के द्वारा आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें 12% सल्फर पाई जाती है। सरसों में खाद का निश्चित एक तरह से बैलेंस फर्टिलाइजर आपको देना है, ज़्यादा आपको फर्टिलाइजर नहीं देना है। और अगर मोटी मोटी अगर बात करें तो अगर 1 एकड़ में आप 100 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट देवें, 70 किलो यूरिया देवें और 1.5 किलो आप बीज देवें। यूरिया का जो आधा डोज है वो पहली सिंचाई पे देवें और आधा डोज जो है ना वो बेसल डोज आप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में अवांछनीय पौधों को निकाल सकते हैं। फसल सुरक्षा का ध्यान रखें और इसमें खासतौर से जो निरीक्षण है वो आप जरूर करवाएं। जो हमारे जो रजिस्टर्ड फार्म हैं, वैज्ञानिकों टीम से अनुभवी व्यक्तियों द्वारा फूल आने से पूर्व, फूल आने के बाद में आप उसका निरीक्षण जरूर करवाएं और उस निरीक्षण का जरूर आप सुनिश्चित करें। फिर उसके बाद में कटाई और मड़ाई जो है वो खासतौर से फसल की कटाई फलियां पीली पड़ने के साथ ही कर देनी चाहिए। और अधिक नमी अवस्था में फसल काटने से गहाई व सफाई करने में क्षति होती है और कवक व कीड़ों की प्रकोप जल्दी बढ़ सकता है, जिसमें अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रथम चारों ओर से 1 मीटर किनारे के पौधों को काटकर आप अलग से रखें, उनकी अलग से मड़ाई करें, उनका अलग से रखें। फिर उसके बाद में मड़ाई से पूर्व थ्रेसर की सफाई अवश्य करें, और घाई जो जो मशीन की जो जो कटाई करते हैं मशीन में।

0: मजदूर से पहले उसकी सफाई करें जी बिल्कुल आपको, और जिससे इससे आपको जो जो जो मैकेनिकल जो डैमेज है वो कम से कम होगा। और प्रोसेसिंग के टाइम पे ये ध्यान दें कि आप जो जो जो ग्रेडिंग मशीन है उसका जो ऊपरी छला है गोल वो 3.5 और 3.25 एमएम व्यास वाला होना चाहिए, और निचला छला जो जिसको छला बोलते हैं 0.9, 1, 1.5 और 1.4 एमएम वाला हो। और ग्रेडिंग के लिए विकसित जो किस्म है उसके प्रकार पर डिपेंड करता है, एक जो जो वेराइटी जैसे बोल्ड सीडेड हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग से ले। और इन सब बातों छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आपका जो सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्वालिटी बढ़ा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग बीजों में हमें बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं, राई सरसों बीज के क्या क्या मानक हैं?
0: किसान भाइयों, ये मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि आपको स्टैंडर्ड जो है सीड स्टैंडर्ड जो मिनिमम सीड सर्टिफिकेट से स्टैंडर्ड है वो आपको मालूम होने चाहिए। खासतौर से राई सरसों के केस में, सरसों के शुद्ध बीज जो है उसमें आधारित बीज के केस में 97% जो है वो उसकी जेनेटिक प्योरिटी रहनी चाहिए, और सर्टिफाइड सीड में 97%, और जो बाह्य पदार्थ हैं अधिकतम वो 3% तक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाउंडेशन आधारित बीज फाउंडेशन सीड में और सर्टिफाइड सीड में 3-3%, और अन्य बीज जो है वो 10-20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 किलोग्राम में आधारित बीज में, और प्रमाणित बीज में 20-20 तक हो सकते हैं, और कुल खरपतवार के बीज जो है वो 10-20 से ज्यादा नहीं हो सकते आधारित बीज में, और 20-20 से ज्यादा नहीं हो सकते प्रमाणित बीज में, और अंकुरण क्षमता जो है जर्मिनेशन परसेंटेज है वो 85% से अधिक होनी चाहिए आधारित बीज में और सर्टिफाइड सीड में, और नमी की मात्रा जो है वो 8% से ज्यादा नहीं हो आधारित बीज में और सर्टिफाइड सीड में, और नमी खासतौर से आपको ध्यान में रखनी है, और भंडारण हेतु जो जो वाष्प रहित कंटेनर है उसमें आप उसमें आप 3% के हिसाब से अगर आधारित बीज में आप इसमें जैसे कंटेनर में डालें तो 3% तक आप रखें, प्रमाणित बीज में 5% तक, और बीज संसाधन जो कटाई के समय बीजों की नमी प्रतिशत मात्रा आदि सभी का बिल्कुल ध्यान में रखें, इन सब बातों का ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से आपकी जो जो सीड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी, और फिर उसमें बराबंदी आप कर सकते हैं।
1: डॉक्टर भागीरथ राम, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सेवर से आज आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में अपने कीमती समय से समय निकालकर आए हैं, राई सरसों के बीज उत्पादन तकनीकी एवं शस्य क्रियाओं की जानकारियां आज आपने हमारे श्रोताओं को और किसान भाई बहनों को दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
2: सुने सुनाए,
3: पीत कांति लाएं,
2: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
3: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
2: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
3: सरसों उपजे शानदार,
2: सरसों खेती का उपचार
3: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
2: खेत पौधे और बीजोपचार,
3: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
2: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
3: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
2: और प्रदेश की खुशहाली का
3: तब होगा सपना साकार।
4: बहुत ही चौकी जानकारी दिलाया डॉक्टर भागीरथ राम जी से, तो मधु बहन आपको गुण गुण धन्यवाद, और डॉक्टर साहब ठाकुर भी, तो आपा कोरो कोरो धन्यवाद। कुंदे सुना दे एक चौको सो गीत।
5: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
6: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
5: वो कैसे?
6: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
5: कॉल 1800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।

0: सुने सुनाए,
1: पीत कांति लाए,
0: उन्नत तकनीकें अपनाए,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाए।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार,
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
1: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: तो बहुत बढ़िया जानकारी अपना कार्यक्रम में आज डॉक्टर भागीरथ राम जी दिया, और देखो आपा जानकारी भी ले लिया और माता जी को भजन भी सुन लिया, क्योंकि आज घट स्थापना छे और हर घर घर में माता रानी को जो छे जयकारो आज गूंज रहे छे। तो ई जयकारा के साथ ही आज घड़ी की सुइयां जो है वह इशारो करिए कि कार्यक्रम ग्राम भारती को टाइम अठे पूरा होते जा रहे हो। तो अगला कार्यक्रम जो की खेती बाड़ी में आपा ओजू मिल छा अपना करसा भाई बहना के साथ गए, तो ग्राम भारती में दियो आ गया मधु नायक ने
3: और नरपत सिंह ने
2: चाला और करा
3: राम राम सा।
0: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक थे सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर।

0: सुनाएं,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
1: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 पे हैं। आए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं महेंद्र कपूर, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम क्रांति, गीतकार हैं मनोज कुमार और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

चिरमी चैनल के संग आप सुन रहे हैं फिल्म संगीता ये सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम तुमसे अच्छा कौन है, संगीत शंकर जयकिशन का, शब्द रचना हसरत जयपुरी की।

मोहम्मद अजीज की आवाज में। फिल्म का नाम मृत्युदाता। शब्द रचना समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का।

फिल्म मृत्युदाता का एक गीत जिसमें विनोद राठौड़, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ थी। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं। आए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो कुर्बान, लोकगीतों का फरमाइसी फोन इन कार्यक्रम।

0: એ ભાઈ ગોરવિંદ ફોગામ શૂન્ય શેંગ ભોયાને બોયાને ચોપરિયાને છોટાને મોઢાને ઉર્ધાને બેડતાને જીમતાને હેગલાને આપરી કોકેરી ઓર હોગી
1: એ લૂણ કીરી ઓર ગણાન ગણા
0: રોમ રોમ શા એ ભાઈ
1: કઈ કો કાકા
0: આજ જો દેખ દિન ગીતો શું આવનો એ ભાઈ
1: હા કાકા આજ આંતરરાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ હે
0: હા તું બાલિકા હો તો તુમારે દિવસ હે આજ જો
1: હા કાકા હર વર્ષ 11 ઓક્ટોબર કો મનાયા જાતા હે
0: અજ્યા તો તુમ બતાવો મેરે કો કી બાલિકા કે લિયે ક્યા ક્યા કરના ચીજતા હે પરિવાર કો સમાજ કો બતાવો
1: हाँ बालिका को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए अभी ने चौकी पढ़ाने लिखाने चाहिए काका
0: आज या चौका पढ़ेगा चौका लिखेगा तो आगे बढ़ेगा बालिका
1: हाँ तो हमारे समाज की शक्ति है बालिका
0: अरे भाई तू यही तो बहुत मोटी बात कह दी देख बेटा के महिला के बिना पुरुष का कोई वजूद नहीं है
1: हाँ काका
0: ये महिला होती है वो पुरुष का साथ देती तभी पुरुष आगे जाता है
1: हाँ सही काका
0: ये जो बालिका है जो पढ़ेगी लिखेगी देश के नाम रोशन करती है
1: हाँ काका अपन देखे ना हर क्षेत्र में आगे बढ़े अबार कई खेला में कितना गोल्ड मेडल लई बया
0: अरे भैया लई बे क्रिकेट और खेलिया भैया चौकार के भाई बजावे बेटे बेटे टबरिया के भाई काका देखो भाई ठोकी चौको में गयो
1: भैया जो को इजाज चलावे काका पायलट बनोड़ी है सब कामा में भैया आगे है
0: ए भैया आगे ये देख हमारे देश के राष्ट्रपति जी ए, वो महिला है हाँ। और हमारे देखो देश के अंदर कितनी महिलाएं किस किस ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे पद पर जाती है
1: हाँ काका आ, सब चीजें देख रहा अपा ने भेदभाव खत्म करना अपने सबरी जिम्मेदारी है
0: बिल्कुल बालिका है तो घर की रोशनी है
1: पण काका शिक्षित बालिका ने भाई देश को भविष्य बनावे ली
0: हाँ जो भाई ने पढ़ो लिखो और हाथ जोड़ के काका कहता है कि आज के दिन संकल्प ले वो कि हम भाइयों को पढ़ेंगे और आप अब काम करो वो फोन करता है पिन पिन अदिन लाओ
1: आई लो काका
0: आई लो
2: हाँ दादाजी राम राम
0: ए रोम रोम शाही रोम रोम शाही ऑफ्रोनियम वीडियो कोकिनीर गांव वीडियो
2: मारो गांव घोगड़ा है सर बीकानेर हाईवे पर है और संत नवला राम जी संता रो बेटो बोलू छोटे अर्जुन काका जी कहीं करा काका जी अब तो मेरे सीजन साल है नवरात्रि में न्यू रो पर हर साल मेरो लागे है भूसनी बाबा रे
0: आज
2: को त्याया चाल है मंदिर माते और हर साल वो मेलो लाग
0: ए जो की बात है शाबाश देखो आज यू नोर था लाग गया
2: हाँ सर
0: ए नोर तो खुरियो कोई आज यू
2: हाँ हाँ नवरात्रि चले तो वाला जी रोक गया भजन सुना दो
0: ए जरूर सुना हो शारे लूनी भाई यू
1: काई को काका
0: ए अर्जुन भाई के तो हम नोरता रह गया है हम नोरता का भजन सुनेंगे पहले भाई से बात करेंगे तुम बोलो हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: राम राम सा
2: राम राम सा
1: टबरिया कहीं करे
2: टबरिया बैठ गए कहीं करे स्कूल जा है
1: बदमाश है तो कौन करे
2: ना ना
1: आज कहीं होने वाला प्रोग्राम में
2: आज प्रोग्राम में माता जी रो भजन सुना दो

0: राम राम काका।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, आप रो न्याओ वीडियो को के।
0: प्रियंका बोलूं, गट्टू।
1: ए प्रियंका भाई, गट्टू में कोई करो
0: पढ़ाई करूं काका।
1: ए गीती मारी बेचा
0: आ तुम बोलो।
1: ओ जोका अपनो जोका अली को माई दारा बिजवार के नाम पूछा करो बेचा। ए ए भाई ए आज नोर दार आई है, तू नोर दूर आई आजो की बात ये भाई, ये नोरदारा को ए शरीर को मजबूत बनो। आज देख भाई, धारो दिन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है।
0: हाँ
1: तो भाई ने आशीष है काके रो लुण के
2: काका।
1: ए प्रियंका भाई रो फोन है, तुम हद ही कर लो आज जाओ।
2: प्रियंका भाई यो
0: लुण भाई, राम राम।
2: राम राम, राम राम। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस री हार्दिक शुभकामनाएं।
0: शुभकामना।
2: और काई काम धंधा करे भाई?
0: पढ़ाई करूँ।
2: कितनी पढ़े?
0: आठवीं में।
2: भाई पढ़ लिख कर काई बना ली तू?
0: मास्टर।
2: कितनी बहना होते?
0: चार।
2: चार में पढ़ो? बढ़िया बढ़िया भाई, काको कलडा राजी हुए बाया पढ़े ना। बड़ा जन कलडा ही राजी हुए के बाया अगली पढ़े जन आपर बाया पढ़े जन देश आगे बढ़े। आपनो समाज विकास हुए, देश को विकास हुए।
0: भाई कहीं पढ़ो कहीं?
2: हाँ तो गणी पढ़ू काको, आका गणा करे। थारे बाया बे था छोटी एक मोटी?
0: दो मेरे बड़ी है एक छोटी है।
2: अच्छा यहाँ बताओ दूध दे उनाला किसा किसा पशु हुए?
0: गाय भैंस बकरी।
2: वाह भाई, आज कहीं होने ली प्रियंका?
0: माता जी वजन सुना दियो
2: काका। आयो
1: बेटा।
2: प्रियंका भाई के गट्टू तो जान दो माता जी को।
1: ए, मैं अगरबत्ती खाऊ जो मन बेटी।
2: ओला।

0: हाँ काका, राम राम।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, आप रो न्याओ भिजियो को के नीर गाँव भिजियो।
0: नाम ममता है, गाँव घोड़ारण।
1: आओ हो ममता भाई, घोड़ारण में कोई करो
0: पढ़ाई?
1: ए कितनी पढ़े मारी बेजा?
0: दसवीं।
1: ओ जोका अपनो जोका अली को मोई तरार भिजवार का नाम ऊंचा करो बेजा। ए भाई आज देख अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तू झोंकी पड़ी हो?
0: आओ
1: ए जोका को एक सवाल करे उसका जवाब बनाओ।
0: पूछो।
1: ए आड़ी चालू ठेडी चालू चालू कमर कसी इन आड़ी रो अर्थ बताओ। ममता भाई रुपयो काका देवे दस
0: झाड़ू।
1: ए लुणगे
2: कई को काका?
1: ए भाई धारे को नहीं आवे
2: भाई होशियार काका। हेलो ममता भाई कितनी पढ़ो?
0: दसवीं।
2: अरे वो आपका बोर्ड परीक्षा एजेंट की हल्ला ही पढ़ो ना। कितना घंटा पढ़ लो?
0: दो तीन घंटा।
2: सही है सर। बार काके थाने क्यों के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस री शुभकामनाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय
0: बालिका थाने भी।
2: हाँ थाने मने नगलान होनाला ने लड़कियां अधिकारों के लिए वो दिन मनाया जावे। उद्देश्य है की आप बालिका ने समान अवसर देनो है, लड़की ने शिक्षा को अधिकार है, लड़कियां आपा बाया बहना आज की आपा समाज की शक्ति। हाँ और प्रोग्राम केड़ो लागे भाई?
0: बहुत चौक लागे।
2: आज कई होने ली?
0: माता जी रो भजन।
3: जगदीश राम गांव जिंदा।
1: ओ हो जगदीश भाई जिंदाश में कोई करो?
3: वो खेती बाड़ी वाला काम करा काका जी।
1: अरे वाह शेवा, खेती बाड़ी निवेड़ ली हम तो
3: निवड़ी है।
1: अरे वाह शेवा, आए जिम ना लो यो कहीं हो?
3: हाँ हो को काका जी।
1: आए जो की बात जी बीरा और राम जी जिम ना लो कर दे जिन और कहीं चीज हो?
3: हाँ जी।
1: और बच्चों प्रोग्राम कैसे लागे थाने हो?
3: बहुत बढ़िया लागे जी।
1: एक लीटर भगड़ा नहीं हुनो?
3: हाँ सारा नहीं हुनो ना सरकार ने।
1: अरे वाह शेवा जो की बात है। ए आज नोरता लाग गया, नोर दो रही हो गई?
3: हाँ नोरता कोई भजन बनाना माता जी को।
1: ए जरूर सुनाओ शाह, मारी बोतिया उड़ी नोर दो रहा कुड़ी थोड़ी ना हम जो नहीं आके काका हो दिरो हो दिरो खाई करो मैं।
3: खाई दिरा हो बे आज नौतरा नौरात्र लाऊंगा।
1: ए लूनी भाई बात कर लो भाई को तो मंगा ले।
2: हेलो
3: लोने भाई राम राम।
2: राम राम सा, राम राम सा भाई जी हो?
3: हाँ जी।
2: अरे मारे यार काकी रे नोर तो रखुड़ो है काकी की होते जो आते हैं कर देते ना आता मारते हैं की लाया काके न कुं काका दिराई दो। आ हद्दा तो कहीं काकड़िया मती रहो जी पिता मंजर खाईला अब केला और सेवा दिरा ना तुपड़ी ना।
3: हाँ केला दिरा ना पड़ी हो काकड़िया मती रहो
2: आयस कौन ही होने हद्दा नोर तो हो रखने में काकड़िया मती रहो जना।
3: हाँ
2: एक

0: बताओ आज बता।
1: पानी से बना हुआ उजड़े रंग का होता है और खाने का स्वाद बढ़ाता है, कई होता है।
0: ओए मच्छी रोन तू लो
1: कक्का मतिरा या कौन वीरन मतिरा की हर यावे
2: ए मैं भाई ने कह दी थोड़ा लून गाल ले
1: जगदीश भाई जी।
0: हाँ जी।
1: ओ तो नमक होता है लून।
0: हाँ नमक नमक हो।
1: हाँ आज कहीं होना ला
0: माता जी को
1: कक्का भेजो।
2: ए वो गरीब बेटी खाऊ जो मारी बेटी
1: ओए लो।

0: हेलो काका जी, राम राम।
1: ए राम राम शाही अपरोन्याओ भिजो खोके नीर गांव भिजियो।
0: मारो नाम तो गणपत सिंह है, सोइंत्रा शेरगढ़ में मारो गांव है सा।
1: आओ हो कहीं काम जिंदा हुए हो?
0: काम धंधा बार काका कहीं कोनी, बैठा यहाँ खेती बाड़ी
1: अरे वाशा
0: ठहरी
1: खेती बाड़ी
0: यहाँ।
1: करते हो बेचे हो, राम जी को लिखा लाया हो या और भेजो? गर्मी परिवार में हकल किया नहीं हो?
0: सब बढ़िया है काका, मेहरबानी है आपरी, भगवान जी।
1: ए जाने प्रोग्राम कैसे योग लागे? अरे
0: प्रोग्राम बहुत बढ़िया लागे है, सुनो हर सप्ताह में 2 बार है,
1: वाशे वाशो की बात
0: संडे
1: है।
0: और बुधवार में 2 बार ही।
1: ए तो काका एक सवाल करता है, उसका जवाब देता है।
0: जरूर काका भाई, तो कोशिश करो।
1: ए तो हुनो शा,
0: हाँ साहब।
1: ए हारे रो हारो,
0: हाँ साहब।
1: हारे रो हारो बीरो डाओ कान कालो,
0: अच्छा,
1: बीरे भानजी री बुआ थाने काई लागी हो?
0: अरे काका आड़ी तो नहीं आवे, आप बता दो।
1: ए लूणी भाई यो
2: काई को काका?
1: ए तुम्हारे काका जीत गए, गणपत भाई हार गए।

0: कहीं गेवता
1: काका
0: हो।
1: इतना कहना, उड़ जाओ गणपत भाई ने, उड़ जाने की कोशिश करूं कहीं।
0: ए जो करो भाई को बोलो हेलो।
1: हेलो
2: सुनी भाई, राम राम।
1: राम राम सर, राम राम सर। काका
2: तो बहुत टेढ़ी गाड़ी पूछे, बुढ़ा फेरी अपन कते आवे भाई।
1: टेढ़ी घनी है, पुराण की अड्डे है काके कने,
2: पुराण जानू थी
1: एकदम जले पिया जाने टेढ़ी।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: काका हो।
0: हाँ भैया।
1: भाई जी के गरली हुए कहीं आओ।
0: ए बिल्कुल सही है, भीड़ नहीं होगी मुझे।
2: अरे काका जो देखो कितना अड़जान बोलियो,
1: कटी अंदाज ही नहीं लगे जेड़ो पूछो।
2: अरे अरे कदे हो तो आईडी चेंज भाई, आओ घर में ही जे।
1: घर में ही बैठा हो दन कट जानो।
2: ना ना कते घर में ही बैठा हूं।
1: आज कहीं उड़ोला?
2: आज मैं राम निवास जी रो भजन सुना दो, नवरात्रि चले है बढ़िया माता रो।
1: काका आयो।
0: आ भैया
1: भाई जी कह जो कोई सुनाओ।
0: ए वो अगरबत्ती खाऊ जाऊं तुम्हारे भैया।

நகரிரற்றே உண்டிதிராயினி. ஏஜி அப்ப சுதலி ஜோ மாறி

0: काका मैं उड़ा दू का नहीं
1: उड़ा दो
0: ए हुना भाई मैं हूँ।

0: जब्बर लाइयो तू भाई ने भोज भोगा में खवाई पुरुषा
1: भाई जी आज कहीं उड़ाला
2: भजन उड़ा दीजिए भाई जी बढ़िया
1: काका आयो
0: आ भी जाओ
1: भाई जी के भजन ही जान दो
0: ओइया मारी बेटी।

0: Hey, mana bichya, wo to bhayengi, boyengi, shibgi, bishin ko program.
1: Hello, Gorban.
0: Hey, program mein koi bhai geete, bhajne hona chahta hai, tum kahin kehta ho?
1: काका दी इतवार के दिन 12 बजे ले परार 1 बजे ते नागौर आकाशवाणी फोन करना है। नंबर है काका?
0: हां बोलो।
1: मिंडी 1582224 मिंडी 1668।
0: अरे वाह मारी बेटा। ए भाई
1: काई को काका,
0: एक ही भैया का फोन है, सुमे की कुमी में हम लेनी सीजे तो उनका पाना बांधो, तुम्हारे काका को हाका करेंगे।
1: हाँ काका, गोपाल राम जी बोसरी हुए, लक्ष्मण राम जाखड़ बेरासर हुए, संजू मोनिका सुखवासी हुए, नवीन दीपक जानी मकोड़ी हुए, दीपक दिनेश गोदर अड्डे हूँ काका।
0: निकेनो अगले दीदवार का फोन गड़गड़ी जो।
1: हाँ।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लोनी की भूमिका में थी भीखी देवी चौधरी।
0: ओ भाई यो
1: काइको काका,
0: अब बताओ आज के प्रोग्राम में तकनी की है किसका है?
1: है जितेंद्र कुमार।
0: आज के प्रोग्राम के फर्स्ट की था
1: अशोक कुमार गोयल।
0: अब हंदेश लगो मारे भैया,
1: स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। हेलो गोरबन,
0: जवाब रेखो की नीर होगी
1: लून की नीरा सीख और करते हैं
0: राम राम श्याई।

अभी आप लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबन सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। Today, the world is looking for solutions and you have the potential to provide those solutions.
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे। Because this is your time, this is your opportunity. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
1: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: We have seen certain remarks.
3: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
4: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोइजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
5: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
6: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
5: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
7: वी लिव्ड एज ए नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
8: डीकॉलोनाइजेशन।
5: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरम ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अब शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में

0: निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर की चिरमिचल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 9 बजे हैं, आज सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

0: पंकज उदास के गाए इस गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम भी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचों से बोल रहे हैं एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोतों, रात्रि के 9:15 में आए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से

0: पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है बरसात की एक रात। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अंधा कानून फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का,

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: कौन है तुम?
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
0: अगर आप दोबारा पूछेंगे कौन हो तुम, तो वो कहेंगे
1: विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन 16 घंटा चालू है।
0: सारी दुनिया को रहता है उनका इंतजार।
3: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
0: वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर क्या आपको इंग्लिश आती है?
4: लो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज।
0: लोग उनको छोरा गंगा किनारे वाला कहते हैं।
5: छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, खाई के पहन बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।
0: हमने आज ये सोचा कि हम अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने फिल्म जंजीर से एंग्री यंग मैन की अपनी पारी को शुरू किया था। हम ये भी नहीं बताएंगे कि एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में दी हैं। बल्कि हम तो आज अमिताभ बच्चन के डायलॉग दर डायलॉग, डायलॉग दर डायलॉग आपको सुनवाएंगे। ये वो डायलॉग हैं जो आपके जहन में ताजा हैं, और इनके जरिए आप अमिताभ की अभिनय यात्रा से होकर गुजरेंगे।
6: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ।
0: सबसे पहले चलते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद की तरफ। ये फिल्म साल 1971 में आई थी, और अमिताभ बच्चन की आवाज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये उनके शुरुआती दौर की फिल्म थी।
7: मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको।
0: हम इस साल की दो महत्वपूर्ण फिल्मों की बातें करेंगे। पहले अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के सामने वाला सीन, फिल्म नमक हराम।
8: विकी, किस साले ने 100 रुपए हाथ उठाया? बोलो कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध अजमाना चाहता है? राजा सामने कुत्तों कमीनो, अब हाथ उठा के दिखाओ। आओ, एक एक की खाल ना खिंचवा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं,

0: बाद आ जाइए साल 1973 की तरफ, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जहां से अमिताभ बच्चन का असली सफर शुरू होता है।
1: तुम्हारा नाम शेर खान है?
2: इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई।
1: जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
2: आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी, ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम
3: शराबी उपद्रव
2: नहीं साहब।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं।
2: मतलब का बात बोलू साहब?
0: जैसे जैसे अमिताभ बच्चन आगे की फिल्में करते गए, उनकी आवाज पहले की बजाय ज्यादा कड़क होती चली गई और संवादों की अदायगी का दम बढ़ता चला गया।
1: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
4: क्यों?
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी यश चोपड़ा की फिल्म दीवार। इसी साल अगस्त के महीने में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसमें जय और वीरू की जोड़ी थी। और जरा देखिए जय वीरू से अपनी दोस्ती किस कदर निभा रहा है और मौसी से कह रहा है,
5: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
6: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
5: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा, मौसी कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
6: हार जाता है?
5: हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
6: तो क्या जुआरी है?
5: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष।
6: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
5: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
6: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
5: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
6: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
5: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ,
6: तुम्हारे गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
5: बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
0: भला सन 1975 से आगे हम कैसे जा सकते हैं, जब तक कि हम इस खास सीन का जिक्र ना कर लें। आज इतने बरस बाद भी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को ये डायलॉग जबानी याद हैं।
1: आज खुश तो बहुत हो गया था। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म

0: बढ़ती जा रही है उसे। हम घर से बेघर हो गए। मेरा बाप जीते जी मर गया। मेरी मां सुहागिन होती हुई विधवा बनी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो।
1: इस जज्बाती सीन के बाद जरा वो सीन सुन लीजिए जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके से हमने लिया है। अमिताभ बच्चन का बिल्कुल अलग रंग जो उन्हें बड़ा एक्टर बनाता है।
2: आइए आइए प्रेमल बाबू।
0: मजाक मत कीजिए भैया, मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूं। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा।
2: क्यों,
0: क्या हुआ? अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा है, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना।
2: अरे भैया, कभी कभी दो बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं, और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी।
3: मेरे ख्याल से तुम रहने दो।
2: ओहो सुनो तो सही, मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बन के नहीं तुम बन के। और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है? मैं कह रहा हूँ कहता मैं ही हूँ, कहता मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम।
3: क्या बकरी इधर मैं लगा रखी है, सीधी तरह बात करना।
2: सीधी तरह कहां से करूं, बात तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया, मैं तो सुकुमार हूं ना, लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। हाँ। और परिमल शादीशुदा है वसुधा के लिए, हूं ना?
3: होना नहीं है ना।
2: हाँ है ना। हाँ। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार की दिल की बात कहना चाहता हूं, तो वो समझती है कि परिमल जो कंबख्त शादीशुदा है,
3: कंबख्त
2: परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है। इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे नहीं बोलूंगा।
3: तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहा है।
2: नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात।
3: नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो, और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा और लेखक ने लिखा। इसीलिए अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन ये कारनामा करते नजर आए।
4: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of the Ron Babasate.
5: My name is Anthony Gonsalves.
6: What's that?
5: Right. My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: अमिताभ बच्चन जैसा नायक दुनिया में अकेला ही होता है, फिर चाहे उसका नाम एंथनी गोंसाल्विस हो, डॉन हो या विजय। साल 1978, त्रिशूल।
7: मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूं, इसलिए कि जो काम दूसरों ने 25 बरस में किया है मुझे एक बरस में करना है। दुनिया में कम लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। मैं सोचा था पता नहीं आ पाएंगे या नहीं।
8: अगर ये जश्न तुम्हारी कामयाबी की खुशी में है तो मुझे आना ही चाहिए था, इसलिए कि तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम्हारी इस कामयाबी में मेरे उन दो टेंडर्स का भी हिस्सा है जो तुम्हें भंडारी के जरिए मिले थे।
7: मैं तो मानता हूं कि आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से। यकीन कीजिए मिस्टर आर के गुप्ता, जिंदगी में जो कुछ भी आपसे मिला वो मैं भूला नहीं हूं। वो तो एक कर्ज है जिसे एक न एक दिन मैं जरूर उतारूंगा। जरा ठीक से साफ कीजिएगा, वरना कोई देखने वाला समझेगा कि आपके हाथ किसी के खून से रंगे हैं।
8: नहीं, मैंने हाथ धो दिया है, साफ हो गया।
7: मैं तो समझता था कि ये दाग आसानी से नहीं धुलते।
8: तुमसे हाथ मिलाकर जब मैंने अपने हाथ पर खून देखा तो एक सेकंड के लिए मैं समझा मेरा अपना ही खून है। बाद में पता चला तुम सर।
1: यहां तक आते आते अमिताभ बच्चन के अभिनय का सूरज अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था। साल 1978 में एक और फिल्म आई, मुकद्दर का सिकंदर।
9: मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि

मैं भी इन लोगों की तरह एक एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था, फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला। उसे मेरी हालत पर रहम आया। प्यार से उसने मेरे सिर पे हाथ रखा, मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है। मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने, अगर आप चाह सकते।

0: और अब हम आ गए हैं सन 1981 की तरफ, जब अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक तीन महत्वपूर्ण फिल्में आईं। फिल्म कालिया,
1: जिसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके।
2: आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा, समझे?
0: इसी साल आई फिल्म नसीब।
3: ये चुटकी उधर होटल में बजाना जहाँ वेटर है, यहाँ बुलाना हो तो नाम लेके प्यार से बुलाओ।
4: अच्छा जॉन साहब, आपको हम घर छोड़ दें?
3: तुम मेरे को घर छोड़ोगे? मैं तो समझा था अपना स्टोरी होटल में खलास हो गया, पर ये तो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो बढ़ने दो, बहुत दम है स्टोरी में। बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया आपने।
4: मैंने तो खाना खाया ही नहीं उसके साथ।
3: बहुत अच्छा किया खाना नहीं खाया, ये विलन लोग के साथ तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। जितना घटिया आदमी होता है ना उतना ही घटिया इनका खाना होता है। आप देखो अपना गला देखो है कितना अच्छा है। वो खाना खाया होता ना बैठ गया होता।
4: मैंने तुम्हें यहाँ बक बक करने के लिए नहीं बिठाया।
3: अच्छा क्या, ठीक है बक बक नहीं करता है।
4: कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कहाँ जाना है।
3: अरे कमाल करता है, खुद बोलता है कि बक बक करता है फिर खुद ही बात करने को बोलता है। बैलेट पेयर जाना है।
4: अच्छा वहाँ रहते हो?
3: नहीं नहीं, वहाँ तो हर शनिचर हमारा इंतजार होता है।
4: इंतजार?
3: हाँ।
4: कौन करता है?
3: अपना महबूब।
4: महबूब?
3: हाँ अपना डार्लिंग, अपना दिल, अपना जिगर। हाँ एक घंटा मुलाकात होता है तबीयत हरी हो जाती है। अभी आप मिलेगी ना, देखना कितने प्यार से मिलते। दो किस मैं मारूंगा, दो किस वो।
4: बस बस बस,
3: एकदम सही जगह पर लाके पटका।
0: और साल 1981 में ही आई अमिताभ बच्चन की एक और महत्वपूर्ण फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला।
5: जिंदगी का सफर तय करने के लिए बस एक सहारा चाहिए। शुक्रिया उस सफर के लिए, उस मान के लिए, उस जिंदगी के लिए। चंद अल्फाज अपने नए ड्रामे से आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीं चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मैं किसी राह से गुजरूं मेरी मंजिल तू है।
6: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
0: साल 1984, अमिताभ बच्चन की एक बहुत यादगार भूमिका, फिल्म शराबी।
7: आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक, हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दियो।
8: क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं, अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको।
7: ओ हो, वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं?
9: सरकार मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ।
7: नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं हमारे सामने रहा कीजिए, ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना।
9: ये तो आपका बड़प्पन है।
7: मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती, हमारा तो कोई पन नहीं। ये देख मैदान सफर चट।
9: एक बात कहनी थी मालिक।
7: देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक होकर के हमें मालिक मत कहा करो। कहो क्या काम है?
10: सरकार, अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है।
7: वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है। हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो।
11: नथुलाल जी, आपकी तीन बेटियां हैं ना?
10: नहीं मुंशी जी, मेरी पांच बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं। जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25 हजार रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है।
7: हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए।
12: 2.5 लाख रुपया?
7: हाँ सक्सेना साहब, 50 हजार के हिसाब से हमारी पांच बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेकबुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं। कल का क्या भरोसा नथुलाल जी? मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो। क्यों चलो बट ठीक है हमने।
0: हमारे लिए ये बड़ा ही मुश्किल था कि अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्मों की संवाद आपको सुनाएं और कौन सी फिल्मों की छोड़ दें। अब अमिताभ बच्चन के इस दौर की कुछ फिल्मों के बेमिसाल डायलॉग्स। फिल्म मोहब्बतें,
13: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं। कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पे चले हैं। आज आप सबको उस कामयाब वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको इस देश के चारों कोनों से चुन चुनकर यहां लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। आज आपने इस गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दी है। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है।
0: फिल्म बागबान का ये जज्बाती कर देने वाला मोनोलॉग।
14: बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी।

0: मगर अब परसों से खामोश है।
1: फिल्म पीकू का ये संवाद, ये मस्ती।
2: ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए बाथरूम में, हो जाएगी।
3: आई नो माई सिस्टम बेटर ऑन यू।
4: आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर।
5: इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है।
6: कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं।
1: निर्माता शुजीत सरकार की फिल्म पिंक का ये संवाद, जो गली गली घर घर में गूंजा।
0: नो नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर, जिसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। माय क्लाइंट सेड नो योर ऑनर And these boys must realize, no का मतलब no होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, no means no।
1: सबसे आखिर के लिए हमने चुना है दो महानायकों का आमना सामना, सन 1982, फिल्म शक्ति।
7: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
6: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
7: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है, इसका फैसला अदालत में होगा।
6: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
7: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
6: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
7: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
6: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
7: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
8: दोस्तों, हमारी कोशिश यही रही कि भी किस तरीके से आप तक नए से नए अंदाज में प्रोग्राम पेश किए जाएं, और हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है इसके बारे में आप ही अपनी राय हमें नवाजिए, ताकि हमें भी समझ आए कि जो हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो यूनिस ने आप लोगों के लिए पेश किया, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है कि यूनिस जब मेरे पास आया ये सारे डायलॉग्स का कंसेप्ट लेके और इतने डायलॉग्स लेके, तो यकीन मानिए कि मेरे सर के ऊपर से चला गया कि अमिताभ बच्चन का कौन सा डायलॉग प्रोग्राम में लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए और किसको छोड़ दें, क्योंकि अमिताभ बच्चन की अदायगी, किरदार का अंदाज़े बयां, उनका आवाज के ऊपर अपना किस तरीके का भाव है और किस तरीके का वजन है उनका, उस सब को देखते हुए कोई भी डायलॉग छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिलहाल हमने जो कोशिश की वो कामयाब हुई कि नहीं हुई, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
1: तो अब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी के साथ अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत।
9: आज के फनकार।

अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारे प्रसारण की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में आपसे 8:51 पर पुनः भेंट होगी। तब तक दीजिए अनुमति। शुभरात्रि। जय हिंद।